मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 31वीं तिथि तदनुसार 22 सितंबर सन 2026 स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को हैं। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI में अगस्त में वार्षिक आधार पर 4.8% की संचय वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई के 5% की संशोधित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ

T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण है। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। जापानी एशियाई खेलों में आज महिला क्रिकेट की स्वर्ण पदक मुकाबले में गत विजेता भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारत ने वर्तमान में 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। जिनके नाम में भक्ति है, जिनके स्मरण में मन को शांति मिलती है, जो भक्तों के हर संकट को हरने वाले हैं, वो हैं हमारे प्रभु बजरंगबली। भक्ति और विश्वास से भरे इस पावन अवसर पर आइए अपने मन को श्री हनुमान जी की भक्ति में समर्पित करते हैं।

माँ के दरबार में जो भी श्रद्धा से आता है, माँ उसकी झोली खुशियों से और आशीर्वाद से भर देती हैं। माँ है करुणामयी, माँ है वरदायिनी। उनके चरणों में सच्ची श्रद्धा से किया गया नमन जीवन में नई आशा जगाता है। आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ माँ का स्मरण करें।

जब प्रेम सच्चा हो इंसान अपने आराध्य के रंग में पूरी तरह रंग जाता है, फिर दुनिया के रंग फीके लगने लगते हैं और बस सांवरे की भक्ति ही मन को भाती है। अपनी श्रद्धा और भावनाओं को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए आइए सुनते हैं प्यारा सा भजन।

भोर की पहली किरण के साथ जब प्रभु का नाम लिया जाता है तो मन में एक नई शांति और नई ऊर्जा का संचार होता है। सुबह का यह पावन समय हमें याद दिलाता है कि हर दिन ईश्वर की एक नई सौगात है।

0: अभी आप महेंद्र कपूर, नरेंद्र चंचल, अनुराधा पौडवाल और हरि ओम शरण के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त हुआ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242। सुनो ना।
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
2: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम, आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद के विचार।

जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वो नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है वो नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। विश्वास, विश्वास, अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। यदि तुम पुराण के 33 करोड़ देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए हुए सब देवताओं में भी विश्वास करते हो, पर यदि अपने आप में विश्वास नहीं करते, तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अपने आप में विश्वास करो, उस पर स्थिर रहो और शक्तिशाली बनो। सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और जबरदस्त इच्छा रखो। प्रयत्नशील आत्मा कहती है, मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति और इच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित पा जाओगे। ये एक बड़ी सच्चाई है, शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख, जीवन अजर अमर है। कमजोरी कभी ना हटने वाला बोझ और यंत्रणा है, कमजोरी ही मृत्यु है। संसार को बस कुछ 100 साहसी स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है। उस साहस का अभ्यास करो जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है, जिसमें जीवन के सत्य को बतलाने की हिम्मत है।

0: जो मृत्यु से नहीं कांपता, मृत्यु का स्वागत करता है और मनुष्य को बतलाता है कि वो अमर आत्मा है, समस्त विश्व में कोई उसका हनन नहीं कर सकता। तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वो विचारों से आता है, इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो, उन्हीं में से महान कार्यों का जन्म होगा। संसार की क्रूरता और पापों की बात मत करो। इसी बात पर खेद करो कि तुम अभी भी क्रूरता देखने को विवश हो। इसी का तुमको दुख होना चाहिए कि तुम सब ओर केवल पाप देखने के लिए बाध्य हो। यदि तुम संसार की सहायता करना आवश्यक समझते हो तो उसकी निंदा मत करो, उसे और अधिक कमजोर मत बनाओ। पाप, दुख सब क्या है? कुछ भी नहीं, वे कमजोरी के ही परिणाम हैं। इस प्रकार के उपदेशों से संसार दिन प्रतिदिन अधिकाधिक कमजोर बनाया जा रहा है। बाल्यकाल से ही उनके मस्तिष्क में निश्चित, दृढ़ और सहायक विचारों को प्रवेश करने दो। अपने आप को इन विचारों के प्रति उन्मुक्त रखो, ना कि कमजोर तथा अकर्मण्य बनाने वाले विचारों के प्रति। असफलता की चिंता मत करो, वे बिल्कुल स्वाभाविक हैं। वे असफलताएं जीवन के सौंदर्य हैं, उनके बिना जीवन क्या होता है? जीवन में यदि संघर्ष न रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। इसी संघर्ष में है जीवन का काव्य। संघर्ष और त्रुटियों की परवाह मत करो। मैंने किसी गाय को झूठ बोलते नहीं सुना, पर वो केवल गाय है, मनुष्य कभी नहीं। इसलिए इन असफलताओं पर ध्यान मत दो, ये छोटी छोटी फिसलने हैं। आदर्श को सामने रखकर हजार बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम हजार बार भी असफल होते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करो।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचार। विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं औषधीय फसलों की वैज्ञानिक खेती विषय पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र से दिनेश चंद्र पांडे की बातचीत।

0: भैया राजेंद्र मिश्रा, आप प्रगतिशील किसान हैं, आसेपुर सैदाबाद प्रयागराज के रहे वाले हैं और औषधि फसलन के खेती करे थी। तो हम कही थे कि भैया यहाँ घरी अगर किसान भैया अरे औषधि फसल के खेती करे चाहत हूँ तो कौने कौने औषधि फसल के खेती कर सके थी, एक बारे में बताएं।
1: औषधि पौधों की खेती आजकल दूरदर्शन से, पत्र पत्रिका से, अखबार के माध्यम से बहुत लाभदायक सुनने में भी आ रहा है और करना भी चाहिए।
0: जी
1: लेकिन हम किसान भाई लोगों से एक अनुरोध है, निवेदन है कि इसको व्यावसायिक खेती मान के करें। और इसमें फसलें तो बहुत हैं, 8,000 से ज़्यादा औषधि फसलें हैं,
0: जी जी
1: 5,000 इस समय की भी जा रही हैं। लेकिन हम प्रयागराज क्षेत्र के किसान भाई हैं, हमको पहले व्यवहारिकता यह ले लेनी है कि हमारी मिट्टी कैसी है, हमारे पास संसाधन कैसे हैं,
0: जी जी
1: और हम क्या पैदा करें जो बेच लें।
0: जी जी
1: और जब तक हम बेच नहीं पाएंगे तो कोई भी फसल पैदा करने से हमें आर्थिक लाभ होगा नहीं।
0: नहीं
1: तो वर्तमान समय में हमारे इस प्रयागराज क्षेत्र के लिए सफ़ेद मूसली, सतावर, अश्वगंधा, कस्तूरी, काल मेघ, ये सब फसलें अच्छी उपज भी दे रही हैं और अच्छा इनका बाजार दाम भी है।
0: अच्छा
1: हाँ, और हम इनके करने से पहले, अब जैसे रबी की फसल की कटाई उटाई हो गई है तो पहली बात खेत का चयन हम ही कर लें कि जो फसल बोएंगे वो ज़्यादा पानी लेगी।

0: तब पानी नहीं लेगी। जैसे धनहा खेत में, हम लोग किसान भाई हैं इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, धनहा खेत में पानी ज़्यादा लगत है, और मूसली में पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, सतावर में पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो व्यवहारिकता की ज्ञान ले लें। दूसरी बात है कि संसाधन अपना देख लें, लाभ कमाना चाह रहे हैं। तीसरा बीज का चयन,
1: जी जी
0: बीज हम लें तो किसानों से लें, और बीज कभी भी बाजार से लेने की कोशिश न करें, क्योंकि बाजार में बीज जो है वो कई साल का पुराना है या कब का है कि नहीं है, तो उस किसान से मिले जो ये खेती करता है,
1: जी जी
0: और उससे व्यवहारिक ज्ञान ले लें, और किसमें हमें प्रचुर मात्रा में लाभ है, तो उस हिसाब से अगर हम करेंगे तो निश्चित ही हम किसान भाई अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर लेंगे।
1: एक बात ही मिश्रा जी कि जैसे जो उन किसान भाई मान लीजिए सफ़ेद मूसली के खेती करे चाहत हैं, तो उनका यहाँ घरी का कर कौन कौन वो व्यवस्था करे के चाहिए जो शुरुआत करे के लिए?
0: सफ़ेद मूसली की शुरुआत करने के लिए पहली बात तो यह है कि यह ज़्यादा पानी लेने वाली फसल नहीं है,
1: जी
0: किसान भाइयों के लिए एक अच्छी बात है।
1: जी
0: दूसरी बात है, इस फसल को जानवरों से ज़्यादा नुकसान नहीं है,
1: जी
0: ना गाय भैंस जानवर बकरी कोई खाता है, ना नील गाय से नुकसान है, और ये 15 जून से इसकी खेती प्रारंभ की जाती है।
1: जी जी
0: और बीज आप लें किसान के यहाँ से, बीज लेने से पहले खेत की 2-4 बार जुताई करा दें, और इसमें औषधीय गुण बरकरार रहे इसके लिए कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी या की खाद, जो भी उपलब्ध हो वो अपने खेत के क्षमता के अनुसार डालें।
1: जी।
0: और हम निवेदन करेंगे कि आप प्रचुर बहुतायत खेतों में न करके पहले कम में करें, उसको बेच लें, फिर आगे बढ़ते चले जाएं।
1: जी जी का मतलब शुरुआत में अगर खेती करे चाहते हैं तो थोड़े खेत में कई के
0: थोड़े से करके और बेच लें, तो उन्हें अपने बाजार क्षमता पता चल जाएगी,
1: जी जी जी,
0: और लाभ और नुकसान पता चल जाएगा,
1: जी।
0: फिर अपना दायरा बढ़ाते जाएं, तो निश्चित समय में एक समय वो परंपरागत खेती से हट के व्यवसायिक खेती में अग्रसर हो जाएंगे।
1: जी जैसे आप बताए सतावर और कौन कौन
0: सतावर है, कस्तूरी है, सफेद मूसली है, अश्वगंधा है।
1: तो ये हम कहते हैं कि एक एक खेत, ये अश्वगंधा, सतावर और ये कस्तूरी के खेती करे चाहें, तो उनके लिए खेत की तैयारी में कौन सावधानी बरतें, या सफेद मूसली के लिए तैयार करे चाहें?
0: देखें, सफेद मूसली, सतावर, अश्वगंधा, कस्तूरी, कौच, काल में जितनी हैं, ये सब खेती का प्रकार यही है कि 3-4 बार गहरी जुताई की जाए, और कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद डाल दी जाए, देसी खाद जेका कहा जाता, फिर जुताई कर दी जाए। अब जैसे जैसे फसलों का, जैसे 15 जून से मूसली है, अगस्त में सतावर है, जुलाई में, अगस्त में अश्वगंधा है, फिर कस्तूरी है, तो इस हिसाब से हम खेत की जुताई करते रहें, और निराई पर ज़्यादा ध्यान दें। क्यों कि औषधि फसलों में सबसे ज़्यादा इस समय लग जा रहा है निराई, क्योंकि देसी खाद पड़ती है, और गोबर में कुछ बीज पक्षी भी नहीं पचा पाते, जानवर भी नहीं पचा पाते, वो खेतों में उगाता है,
1: जी जी जी,
0: उनको निकलवाते रहें, और इनका जानवरों से कोई नुकसान नहीं है, किसान भाई को अत्यधिक लाभ होगा, इसमें दो राय नहीं।
1: भाई हम कहते जैसे सब ये सफ़ेद मूसली के बिया किसान से मिल जाता है, उसे सतावर और कस्तूरी
0: सब किसान से मिल
1: जाएगा, सुगंधा सब मिल
0: जाएगा। जी जो किसान कर रहा है वो आपको बीज दे देगा, और यह बीज गारंटीड बीज है कि जमेगा ही।
1: जी जी, तो हम कहते हैं कि बिया बोए पड़ा था या कंद लगाए पड़ा था?
0: मूसली का कंद, सतावर का तो बीज से नर्सरी से।
1: अच्छा, सतावर के बीज से नर्सरी से फिर रोपाई,
0: पौधरोपण, और कंद से मूसली
1: कंद से,
0: अश्वगंधा बीज से,
1: अच्छा,
0: कस्तूरी बीज से।
1: जी जी जी, तो जैसे मान ले थोड़ी देर के लिए कि 1 बीघा में कोनो किसान भैया रे खेती करे चाहते हैं, तो सफ़ेद मूसली में कितनी कंद लग जाए?
0: सफ़ेद मूसली में 1.5 से 2 क्विंटल कंद लग जाए, अगर 20 बिस्सा का उनका नाप सही है,
1: जी जी,
0: तो 1.5 से 2 क्विंटल बीज लग जाए।
1: ओके, वो लगावे के
0: कंद आलू की तरह मेड़ी बनवानी है,
1: जी जी,
0: और 1.5 फीट पर कंद का रोपण एक एक पीस करते चले जाना।
1: अच्छा, ओके, जो मेड़ी है, मेड़ी से मेड़ी के कितना
0: दूरी? 2 फीट।
1: अच्छा, 2 फीट दूर पे मेड़ी में,
0: मेड़ी से मेड़ी 2 फीट, और कंद से कंद 1 फीट, और यही लगवा देना है 15 जून।
1: और ये जो सतावर बा ओका अगर 1 बीघा हम करेंगे,
0: सतावर 2 फीट,
1: अच्छा,
0: और पौध से पौध 2 फीट, और मेड़ी से मेड़ी 2 फीट,

0: और अगस्त में लगे जब बारिश कम होती है।
1: जी जी
0: अच्छा, एक विशेष बात है कि औषधि पौधे ज़्यादा पानी नहीं लेती हैं कुछ फसलों को छोड़ के,
1: जी जी
0: जैसे बच पानी की फसल है, ब्राह्मी पानी की फसल है, इन सबों को छोड़ के, और ये ज़्यादा पानी सिंचाई
1: नहीं
0: नहीं
1: लेती।
0: लेती, इसलिए हम किसानों के लिए ज़्यादा लाभदायक।
1: अच्छा भैया, एक लगाए के बाद के एक जमाव के बाद हमें का वो रासायनिक खाद उद का भी
0: नहीं,
1: प्रयोग किया
0: रासायनिक
1: करते?
0: खाद का प्रयोग नहीं करना है ज़्यादातर, तो इसका सारा ट्रीटमेंट गोमूत्र से ही है।
1: अच्छा।
0: कंद शोधन जैसे सफ़ेद मूसली, बीज शोधन सतावर, अश्वगंधा, कालमेघ, कौंच। तो अच्छा, और अगर कीड़े भी लग रहे हैं बारिश के सीजन में, जैसे सावन भादों में बारिश ज़्यादा हो गई तो कीड़े बहुत आए थे, अगल बगल धान लोग बोए हैं, चरी बोए हैं, जोनरी बजरी, तो उसमें क्या है, गोमूत्र, नीम की पत्ती, लहसुन, इन सबों को एक हफ्ते जो है सड़ा करके, और 1 लीटर में 10 लीटर छान के पानी के साथ मिला के 1:10 का रेशियो बना के स्प्रे कर दीजिए।
1: अच्छा।
0: गुण भी औषधि बरकरार रहेगा और फसल भी मिलती रहेगी।
1: अच्छा, कितना दिन में तैयार हो जाता?
0: मूसली आपकी 5 से 6 महीने की फसल है, सतावर 18 महीने की फसल है,
1: अच्छा।
0: काल मेघ 3 महीने की फसल है, कौंच 3-4 महीने की फसल है, अश्वगंधा भी 3-4 महीने, 3 महीने 4 महीने की फसल है, सिर्फ
1: अच्छा,
0: सतावर जो है
1: वो 18
0: 18 महीने।
1: महीने के, बाकी सब 3-4 महीना, छः
0: इनमें
1: महीना
0: एक और शब्द हम जोड़ेंगे कि एक आई है स्टीविया, मीठी पत्ती, मीठी तुलसी, आप नाम सुने होंगे, डायबिटिक के लोगों के लिए बड़े फायदेमंद।
1: जी।
0: इसका एक पौधा 4 साल चलता है,
1: अच्छा।
0: और अगर किसान भाई इसको सुरक्षित रूप से कर सकें तो वर्तमान दर पत्ती का भी तेज है, और एक पौधा 4 साल से प्राप्ति पत्तियों की होती रहती है, और ज़्यादा इसमें खर्च भी नहीं है, सिर्फ जानवरों से ही बच बचाव कराना है।
1: अच्छा, तो हम कहे थे कि मिश्रा जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दें, जो भी किसान भैया हरे औषधि फसल के खेती करे चाहते हैं, निश्चित बाकी लाभ उठाई, ये जानकारी देख लिया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे औषधीय फसलों में वैज्ञानिक खेती विषय पर राजेंद्र प्रसाद मिश्र से दिनेश चंद्र पांडे की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं वैद्य सुभाष तिवारी की वार्ता, बदलते मौसम में कैसा हो आहार विहार।
1: यह वर्षा ऋतु और अगस्त का महीना है जो समाप्त होने जा रहा है। सामान्य रूप से हमारे देश में वर्षा ऋतु जून से सितंबर माह तक होती है, जो ऋतु चक्र के अनियमित होने से कम या ज़्यादा हो सकती है। सितंबर के अंत में तथा अक्टूबर के आरंभ से मौसम में परिवर्तन होता है, वर्षा समाप्त हो रही होती है और शीत ऋतु का आरंभ होने लगता है। इस समय वर्षा के प्रभाव से हमारी पाचन शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर हो चुकी होती है, अतः अल्पः भुङ्क्तसि सजीवति इस नियम से हमारा आहार हल्का व सुपाच्य होना चाहिए। पौष्टिकता से भरपूर हल्के मसालेदार भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। सामान्य रूप से रोटी दाल हरी सब्जियों के साथ साथ दूध सूखे मेवे ऋतु फल का प्रयोग लाभदायक होता है। देर से पचने वाले गरिष्ठ भोजन जैसे चना मटर उर्द जैसी दालों, अधिक घी तेल वसा चिकनाई युक्त भोजन, बासी ठंडे भोजन के प्रयोग से बचना चाहिए। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, दही जैसे कफवर्धक खाद्य पदार्थ बाजार के फास्ट फूड इत्यादि से दूरी बना लेना चाहिए। भुने हुए मखाने, रामदाना, गेहूं का, जौ का, बाजरे का दलिया बनाकर खाने से शरीर में पौष्टिकता प्राप्त होती है। मूंग की दाल चावल, मसूर की दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बनाकर घी डालकर खाने से शरीर बल में वृद्धि होती है और खिचड़ी में जीरा और हींग से तड़का लगाना अवश्य चाहिए। खिचड़ी के साथ पुराना नींबू का अचार बहुत लाभ करता है, जो पाचन करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि करता है। सौंठ, काली मिर्च, पीपल, अजवाइन, धनिया, जीरा, हींग जैसे मसालों से भोजन को संस्कारित करें। इन मसालों के प्रयोग से भोजन

0: में स्वाद और रुचि के साथ साथ भोजन के अच्छे गुणों में अभिवृद्धि होती है। हानिकारक अंश नष्ट होते हैं। ये मसाले संस्कार द्रव्य कहे जाते हैं, जो शरीर में भोजन की ग्राह्यता को भी बढ़ाते हैं। दही का प्रयोग न करें। यदि खाना ही है तो दही में सौंठ, काली मिर्च, पीपल का चूर्ण और सेंधामन डालकर खाएं तथा रात्रि में दही न खाएं। कच्चा सलाद, बिना पकी हुई सब्जियां और अनाज, मैदा, चीनी और खट्टी चीज़ों के प्रयोग से बचें, किंतु नींबू और आंवले का प्रयोग किसी भी रूप में करें। नींबू, अदरक, सेंधा नमक मिलाकर भोजन के पहले खाने से भूख बढ़ती है और भोजन में रुचि उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं रहन सहन की। तो ऋतु परिवर्तन के समय बाह्य वातावरण में तापमान बहुत ही असंतुलित होता है, जिसके कारण शरीर को बाहरी तापमान से तालमेल बैठाने में समस्या होती है। अनुकूलन में समय लगता है, जिससे हम अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर शरीर बल एवं अभ्यास के अनुरूप 10 से 30 मिनट तक व्यायाम करें। व्यायाम के बाद यथासंभव गुनगुने तेल की मालिश करें। यदि पूरे शरीर में नहीं कर सकते तो सिर में, हाथ पैरों में और नाभि में तेल अवश्य लगाएं। तिल का तेल या सरसों का तेल, जो भी उपलब्ध हो जाए वो अच्छा है। व्यायाम करने के बाद स्नान करके पूरे शरीर को ढकने वाले स्वच्छ वस्त्र, सूखे और यथासंभव सूती वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणों का प्रखर ताप त्वचा को बहुत नुकसान करता है। आँखों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। नियमित रूप से आँखों में गुलाब जल डालना लाभदायक होता है। ऋतु परिवर्तन में होने वाले अनियमित तापमान की वजह से कीट पतंग, मधुमक्खी, मच्छर, जहरीले जीव जंतुओं का प्रकोप बढ़ जाता है। संक्रामक बीमारियों की बाढ़ सी आ जाती है। इनसे बचने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखें, घर की साफ सफाई रखें, कूड़े का ढेर और जल जमाव न होने दें। समय समय पर चूने तथा अन्य वैकल्पिक साधनों का छिड़काव करें, जिससे मक्खी, मच्छर और कीट पतंगों के अंडे और लार्वा न पनपने पाएँ। कूलर की और पानी की टंकियों की नियमित रूप से सफाई रखें। शेष जहरीले जीवों के काटने पर तुरंत अस्पताल जाएं। पानी को उबालकर छानकर पीना चाहिए। बार बार हाथों को धोकर स्वच्छ रखें। नाखूनों की सफाई रखें और इन्हें समय समय पर काटते रहें। मौसम बदलने पर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, एलर्जी एवं त्वचा के रोगों की प्रचुरता होती है, अतः चिकित्सक के परामर्श से औषधियाँ लें। पर्याप्त मात्रा में नींद, व्यायाम, संतुलित आहार, साफ सफाई के नियमों का पालन करने से, उचित सूखे स्थानों पर रहने से, शरीर ढकने योग्य वस्त्रों को पहनने से, स्वास्थ्य के सभी नियमों का पालन करने से हम बदलते मौसम में अपने को स्वस्थ रखने में सफल हो सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे वैद्य सुभाष तिवारी की वार्ता, बदलते मौसम में कैसा हो आहार विहार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होती है।

मिडवीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। आइए आपको जानकारी दे देते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। रात 10 बजे आप सुनेंगे खेल दर्पण कार्यक्रम, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का गायन, दिन में 12:15 पर पंडित गोपाल दास का क्लेरोनेट वादन और रात 10:30 पर पंडित नारायण राव व्यास का गायन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर लक्ष्मीबाई राठौर के स्वर में भजन सुनिएगा। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 10:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे प्रशांत मिश्रा, संगम लाल यादव और उर्मिला श्रीवास्तव। सुबह 11 बजे कार्यक्रम एक ही कलाकार प्रसारित किया जाएगा। 11:30 पर फिल्म संगीत। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी पनघट कार्यक्रम में अनुराधा पांडे के स्वर में लोकगीत, साथ ही संजू मिश्रा की बातचीत होगी।

ग्रामीण महिलाओं की बदलती सोच और नया भारत। दोपहर 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा। शाम 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे अनिल कुमार। शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे रमेश शुक्ल से रामायण पाठ। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी शाम 6:50 पर प्रसारित किया जाएगा, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में सुनेगा डॉक्टर हरिप दत्त शर्मा से काव्य पाठ। रात 8:00 फिल्म संगीत, रात 8:30 पर सबरस कार्यक्रम सुनिएगा और रात 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा प्रसारित किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

कपटी मुनि के षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु 100,000 ब्राह्मणों को अनजाने ऐसा भोजन परोसने का पाप कर बैठा जिसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ था। निमंत्रित ब्राह्मण भोजन करने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ। ब्राह्मण तो मानव मांस खाने से बच गए, किंतु राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप से नहीं बच सका। कालांतर में यही प्रताप भानु रावण के रूप में पैदा हुआ। उसका वीर और पराक्रमी भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण होकर जन्मा तथा मंत्री धर्मरुचि रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। सागर के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक अत्यंत विशाल दुर्ग था, जो इंद्र की नगरी अमरावती से भी अधिक सुंदर और आकर्षक था। रावण ने उस नगर पर अधिकार कर लिया। उसे अत्यंत दुर्गम जानकर रावण ने वहीं अपनी राजधानी बनाई और कुबेर को परास्त करके उनसे पुष्पक विमान जीत लिया। एक बार खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। नित्य प्रति उसका वैभव, संपत्ति, सेना, पुत्र, सहायक, जय, प्रताप, बल ऐसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ के साथ लोभ बढ़ता है।

अभी आप श्रीराम चरितमानस से ही संगीतमय पाठ सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्मों से ही भजन।

आपको सुनवा रहे हैं केदारनाथ फिल्म का ये भजन। अमित त्रिवेदी की आवाज़ है, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने और रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मों से भजन। लीजिए अब सुनिए चार धाम फिल्म का ये भजन। हरिहरन की आवाज में संगीत दिया है सुरेंद्र कोहली ने और रचना है उदय शंकर की।

अभी आपने सुना चार धाम फिल्म का ये भजन, और अब फिल्म से भजन का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मेरठ में की आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठन की तैयारियों की समीक्षा। कार्यकर्ताओं से किया सीधा संवाद। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चंदे में अनियमितता मामले में सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई। सरकार ने कहा 25 सितंबर तक दाखिल कर दी जाएगी चार्जशीट। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा में इंडियन वेंडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। कहा सरकार की नीतियों ने निवेशकों के लिए बनाया सकारात्मक वातावरण। और प्रदेश में 34 आईएएस अफसरों का हुआ तबादला, 14 जिलों के जिलाधिकारी बदले। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल मेरठ में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बूथ शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ समाज के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि
1: 2014 में जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता को अपने हाथों में लिया, एक नए भारत का दर्शन, एक भारत जो अपनी विरासत पर भी गर्व करता है और विकास के लिए जिसकी अपने की स्पीड, एक ऐसा भारत जिस भारत के सामने अब पहचान का संकट नहीं है। अब भारत की अर्थव्यवस्था बॉटम 5 से टॉप 5 में आ गई है।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीते 9.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आए परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि आज राज्य में कानून का राज है और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है।
2: भाजपा की सरकार में भरोसा का वातावरण है। हमारे सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून का राज है और आज हम कह सकते हैं कि विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश चल पड़ा है और विकसित राज्य के दृष्टि से आगे बढ़ रहा है।
0: श्री नवीन ने युवाओं से संवाद के दौरान युवाओं को देश की मौजूदा ताकत बताया। सर्वोच्च न्यायालय में अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चंदे में अनियमितता मामले पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना के बेंच को बताया कि अदालत द्वारा नियुक्त एसआईटी 25 सितंबर या उससे पहले अपनी पहली चार्जशीट दाखिल करेगी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी से 90 दिन की वैधानिक अवधि जल्द ही खत्म होने वाली है, उस अवधि से पहले चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने एसआईटी की ओर से पेश की गई विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट भी देखी। वहीं एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने कल ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में 3,567 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ये आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। नियुक्ति पत्र पाने वालों में 319 प्रधानाचार्य,

0: 258 प्रधानाध्यापक, 618 प्रवक्ता और 2372 सहायक अध्यापक शामिल हैं। प्रदेश में कल देर रात 34 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया। इस तबादले से 14 जिलों के जिलाधिकारी बदल गए। हरदोई के जिलाधिकारी अब मुरादाबाद के जिलाधिकारी होंगे। विशेष सचिव राहुल पांडे को हरदोई का जिलाधिकारी बनाया गया है। आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एम अरुण मोली को एटा का जिलाधिकारी बनाया गया है। अमेठी के जिलाधिकारी संजय चौहान को कुशीनगर और कुशीनगर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को कानपुर नगर का जिलाधिकारी बनाया गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक संत कबीर नगर के जिलाधिकारी होंगे। संत कबीर नगर के जिलाधिकारी आलोक कुमार को पीलीभीत और पीलीभीत के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह को बलिया की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बागपत, महोबा, बिजनौर, हाथरस और हमीरपुर में भी नए जिलाधिकारी की नियुक्ति की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कल आगरा में दो दिवसीय इंडियन वेंडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का शुभारंभ किया। इस एक्सपो में देश के विभिन्न राज्यों से आए उद्यमी प्रदेश में वेंडिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नई पर्यटन नीति, सरकार के प्रयास, उद्यमियों को दी जा रही सुविधाओं और बेहतर कानून व्यवस्था ने निवेशकों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया है।
1: पर्यटन क्षेत्र में नई पॉलिसी एडॉप्ट करके इन सब लोगों को नई सहूलियत देने का, सब्सिडी देने का, तमाम इंसेंटिव देने का काम किया है, जिससे मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश का वर्तमान में चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, कनेक्टिविटी का हो, या नई पॉलिसी तमाम सुविधाएं, संसाधन और सब्सिडी देने का विषय हो, आज देश और दुनिया के तमाम निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुँच को रेखांकित किया।
3: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं।
2: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
4: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब था वो आज बैंक से जुड़ गया है UPI के जरिए।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर विविध आयोजन किए जा रहे हैं। कल जनभवन स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जौनपुर में कल कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित प्रदर्शनी का किड्स वर्ल्ड विद्यालय के बच्चों ने अवलोकन किया। सुल्तानपुर में सेवा मेरा योगदान थीम पर आयोजित कार्यक्रमों में नुक्कड़ नाटक, रंगोली, चित्रकला प्रतियोगिता, डिजिटल रील और बहुउद्देशीय सेवा शिविरों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मिर्जापुर में सेवा दिवस और आशीर्वाद थीम पर जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मेरठ में की आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठन की तैयारियों की समीक्षा। कार्यकर्ताओं से किया सीधा संवाद। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चंदे में अनियमितता मामले में सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई। सरकार ने कहा 25 सितंबर तक दाखिल कर दी जाएगी चार्जशीट। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा में इंडियन वेंडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। कहा सरकार की नीतियों ने निवेशकों के लिए बनाया सकारात्मक वातावरण। और प्रदेश में 34 IAS अफसरों का हुआ तबादला, 14 जिलों के जिलाधिकारी बदले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, आइए सुनते हैं पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन राग है भटियार।

अभी आप सुन रहे थे पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन राग था भटियार। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे श्रवण कुमार भट्ट और हारमोनियम पर श्रीकांत वैश्य। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देशगान।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णाखुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
3: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे।

0: पांच दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधन के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
2: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए PLI योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए PLI योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉ. जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
3: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के चार देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष

0: गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
1: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जाँच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
2: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाए।
1: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की।
3: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो

0: है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
1: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की।
2: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें।
1: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
3: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति, संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
4: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ो में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश वासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती है। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने की जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है, वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत, 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है, 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान। न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्ष में $20 अरब निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है, छत पर मुफ्त सोलर पैनल, 1,56,000 तक की सब्सिडी। सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ, 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य, सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है, हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक, भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में

0: newsonair.gov.in and newsonairapp. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के केवड़िया में एकता नगर के मकाम पर 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक टास्क फोर्स के सरबराहों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वजीर खारजा डॉ एस जय शंकर ने न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के वज़राए खारजा के साथ बातचीत की है। बरतानिया ने ईरान की पुष्ट पनाही वाले हौसियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को महदूद फौजी मदद फराहम करने से इत्तेफाक कर लिया है। और खवातीन क्रिकेट में जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सुबह भारत सोने के तमगे के लिए श्रीलंका से मुकाबला करेगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगी। ये अवार्ड देने का सिलसिला 1954 में शुरू हुआ था और ये अवार्ड्स सिनेमा में फीचर, गैर फीचर और कहानी समेत मुख्तलिफ जुमरों में फनकारी और तकनीकी महारत को तस्लीम करते हुए मुल्क के आला तरीन सिनेमा एजाज की नुमाइंदगी करते हैं। इत्तलात नशरियात की वजारत की जानिब से एक बड़े पॉलिसी कदम के तौर पर अवार्ड दिए जाने की यह तकरीब कौमी राजधानी से बाहर किसी दीगर रियासत में हो रही है। सदर जमहूरिया मुमताज अदाकार अनंत नाग को 2024 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सरफराज करेंगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तारीखी एकता नगर में रोशनियों के साथ शानदार स्टेज सज चुका है क्योंकि केवड़िया पहली बार तारीखी 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सिनेमा के इस अजीमशान जश्न के लिए मुल्क भर से नामवर अदाकारों, मारूफ फिल्मसाजों और तकनीकी माहिरीन ने तकरीब का पहुंचना शुरू कर दिया है। ये तकरीब साल 2024 की शानदार सिनेमाई कामयाबियों को सराहने के लिए मुनक़िद की जा रही है। फीचर फिल्मों के अहम ऐलानात में आर्टिकल 370 को बेहतरीन फीचर फिल्म के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि यामी गौतम ने इस फिल्म में अपने किरदार के लिए बेहतरीन अदाकारा अवार्ड जीता है। बेहतरीन अदाकार का एजाज ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरका तौर पर दिया गया है। राजकुमार पेरासामी ने अमरन के लिए बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड हासिल किया है, जबकि कालके 2898 एडी को बेहतरीन मकबूल फिल्म का अवार्ड मिला। रणदीप हुड्डा ने स्वतंत्रिया वीर सावरकर के लिए बेहतरीन डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड जीता। रवि राय मुर्मू ने संथाली फिल्म अंगेन के लिए बेहतरीन डेब्यू डायरेक्टर गैर फीचर फिल्म का एजाज हासिल किया। एकता नगर से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के मुनशियात मुखालिफ टास्क फोर्स के सरबराहों की तीसरी कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वजारत दाखिला ने बताया है कि इस मौके पर जनाब अमित शाह लखनऊ और देहरादून में मुनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक ब्यूरो के जोन के नए कॉम्प्लेक्सेस का वर्चुअल वसीले से संगे बुनियाद भी रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ये दो रोजा कॉन्फ्रेंस मुत्तहिदा अज़्म और मुश्तरका जिम्मेदारी के मौजू पर मबनी है और इसमें मुनशियात मुखालिफ टास्क फोर्सेस को सौंपे गए मकासिद की पेशरफ्त और मुल्क में मुनशियात की स्मगलिंग और उसके बेजा इस्तेमाल की लानत से निमटने के लिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जनाब अमित शाह इस मौके पर मुनशियात की लानत के खिलाफ बेदारी फैलाने के लिए टेलीविजन कमर्शल्स भी जारी करेंगे। उम्र दाखिला की वजारत के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के मुनशियात मुखालिफ टास्क फोर्सेस के सरबरा शिरकत करेंगे। इस तबादला ख्याल से इसमें शिरकत करने वाली रियासतों, महकमों और एजेंसियों को अगले 3 साल में पूरे मुल्क में मुनशियात की स्मगलिंग से मौसर अंदाज से निमटने की सम्त नए अहद के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। दिल्ली دلی سے

0: विश्वजीत दयाल ने बताया है कि वायरल वीडियो की तफसीली छानबीन के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की मुतालिका दफात के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो को हटाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।
1: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो एसआईटी जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
0: इधर बिहार के खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन अप्सरा ने इस वाकये की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि कमीशन की एक टीम बहुत जल्द मुतासरा लड़की से मुलाकात करके इस केस के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेगी।
2: पुलिस प्रशासन सभी प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने त्वरित गिरफ्तारी की है, और भी गिरफ्तारी हो जाएगी, और इस तरीके से जो भी समाज में गलत संदेश देने का काम करेंगे वो दंडित होंगे।
0: खेलों के महकमे की वजीर और जमुई की मेंबर असेंबली श्रेयासी सिंह ने भी इस वाकये की मजम्मत की है और कहा है कि इंतजामिया इस मामले में फौरी कार्रवाई कर रही है।
3: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करे। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट भी हो और ये चाहती भी हो कि आगे भी इस गति में कोई कमी ना आए और इसी तरह से कार्रवाई हो।
0: पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
4: झारखंड में करम त्यौहार आज रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस त्यौहार पर झारखंड की कबायली सकाफत और फितरत का जश्न मनाया जाता है और भाई बहन के रिश्ते को याद किया जाता है। इस मौके पर झारखंड में खसूसी सकाफती और रियासती सतह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: करम त्यौहार आज रियासत भर में पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार झारखंड की लोक सकाफत का जश्न होता है और इस त्यौहार पर फितरत की पूजा की जाती है। रियासत के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने करम त्यौहार के मौके पर रांची के बेरों में एक प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की और रियासत के लोगों को इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
4: जापान में जारी एशियाई खेलों में खवातीन क्रिकेट में भारत सोने के तमगे के लिए फाइनल में श्रीलंका से मुकाबला करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक आज सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। भारतीय खवातीन की टीम बांग्लादेश को 114 रन से करारी शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची थी, जबकि श्रीलंका ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया था। भारत ने कल मुख्तलिफ जुमरों में चांदी के 4 और कांसे के 2 तमगों समेत 6 तमगे जीते। मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल इंफरादी मुकाबले में हिमांशु ढिल्लों ने चांदी का तमगा जीता, जबकि रुद्रांश पाटिल को कांसे का तमगा मिला। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
6: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने तिजारत और सनअत के वजीर पीयूष गोयल के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आजाद तजारती मुआहदा ATF 20 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। इसी अखबार की एक और सुर्खी है PM सूर्य घर स्कीम के लिए दिल्ली में रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू। रियासतों की इंसदाद मनुष्यात टास्क फोर्स के सरबराहान की कौमी कॉन्फ्रेंस का आज वजीर दाखिला अमित शाह इफ्तिताह करेंगे। अखबार इंकलाब ने केरलम में तोदे गिरने से 9 अफराद की हलाकत की खबर को कौमी सफ़े पर जगह दी है। महकमे मौसमियात की जानिब से मुल्क की कई रियासतों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की खबर भी अखबारात में नुमाया है।
4: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के केवड़िया में एकता नगर के मकाम पर 72वें कौमी फिल्म अवार्ड पेश करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक टास्क फोर्स के सरबराहों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के वज़राए खारजा के साथ बातचीत की है। बरतानिया ने ईरान की पुष्तपनाही वाले हौसियों के हमलों से निमटने के लिए सऊदी अरब को महदूद फौजी मदद फराहम करने से इत्तफाक कर लिया है। और खवातीन क्रिकेट में जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सुबह भारत सोने के तमगे के लिए श्रीलंका से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही ये खबरनामा

0: खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, आपको पढ़कर सुना रहे हैं नीरज त्रिपाठी जी का ये सुविचार। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। ना बादशाह चलता है, ना इक्का चलता है, ये खेल है अपने अपने कर्मों का। यहाँ सिर्फ कर्मों का सिक्का चलता है। समय पर समय देने वाला व्यक्ति मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता। इंसान पूरे दिन की मेहनत से उतना नहीं थकता जितना एक पल का गुस्सा, चिंता या बेचैनी उसे भीतर से थका देती है। इसलिए जिंदगी में काम कम नहीं बल्कि मन का बोझ कम करना जरूरी है। नीरज त्रिपाठी जी ने हमें बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा सुविचार भेजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सोनम लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो कभी हमारे घर की घंटी बजाकर खुशियों की खबर लाता था, कभी किसी अपने की चिट्ठी थमाकर दिल को सुकून देता था और कभी दूर बैठे अपनों का संदेश हमारे पास पहुंचाता था। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं डाकिया की। डाकिया का हमारे जो जीवन में महत्व है वो अभी कम नहीं हुआ है। आज मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में भले ही चिट्ठियों का इंतज़ार कम हो गया है, लेकिन डाकिया और डाक व्यवस्था का हमारे जीवन में महत्व आज भी बना हुआ है। श्रोताओं, एक समय था जब किसी अपने की चिट्ठी का इंतज़ार पूरे परिवार को रहता था। डाकिया जैसे ही गली में दिखाई देता था, लोगों की निगाहें उसकी ओर उठ जाती थी। किसी के हाथ में नौकरी की खबर होती थी, किसी के हाथ में परीक्षा परिणाम, तो किसी के लिए दूर शहर से आया माता पिता या बच्चों के लिए प्यार भरा संदेश। डाकिया सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा नहीं पहुंचाता था, बल्कि वह भावनाएं, उम्मीदें और रिश्तों की गर्माहट लेकर आता था। सोचिए, जब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब दूर रहने वाले अपनों से जुड़ने का सबसे भरोसेमंद माध्यम क्या था? वह थी चिट्ठी, और उस चिट्ठी को हमारे दरवाजे तक पहुँचाने वाला था डाकिया।

चिट्ठी पढ़ते समय शब्दों के साथ भावनाएं भी महसूस होती थी। कागज़ पर लिखी लिखावट अपने पन का एहसास होता था। समय बदला, तकनीक बदली और संवाद के साधन भी बदल गए। आज हम कुछ ही सेकंड्स में दुनिया के किसी कोने में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। मोबाइल कॉल, वीडियो कॉल, ईमेल और मैसेज ने संचार को बेहद आसान बना दिया है, लेकिन इन बदलावों के बावजूद डाकिया अपनी भूमिका निभा रहा है। आज डाक विभाग केवल चिट्ठियां पहुंचाने तक सीमित नहीं है। डाक के माध्यम से पार्सल, ज़रूरी दस्तावेज और अनेक प्रकार की सेवाएं लोगों तक पहुंचती हैं। ख़ासकर गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों में डाक व्यवस्था लोगों को देश के बड़े हिस्से से जोड़ने का काम करती है। एक डाकिया रोज़ कई घरों तक जाता है और चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश हो, उसका काम है लोगों तक संदेश और ज़रूरी सामान पहुंचाना।

श्रोताओं, आज का यह विषय डाकिया की याद दिलाता है जिसकी साइकिल की घंटी कभी हमारे घरों की दस्तक हुआ करती थी। डाकिया सिर्फ चिट्ठी नहीं लाता था, वह अपनों की यादें और रिश्तों की खुशियां लेकर आता था। खाकी वर्दी में लिपटा डाकिया आज भी हमारे समाज में सब्र और सादगी का सबसे बड़ा प्रतीक है। है निष्ठा डाक पहुंचाने में, नियुक्त निमंत्रण पत्र लाने में, प्रेम संदेशें पहुंचाने में, अपनों को मिलवाने में। हर घर का दरवाजा करता उसकी प्रतीक्षा, मित्र सबका प्यारा, यादों का है वही सहारा। श्रोताओं, डाकिया वाकई में हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए।

श्रोताओं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। कल आपसे फिर मिलेंगे नए विषय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
4: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
3: अरे क्यों?
4: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
3: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
5: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
3: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
4: दे रे भाई,
6: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं मैक्सिमम फायदे सही।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए जब वी मेट फिल्म का ये गीत राशिद खान की आवाज़ में। संगीत दिया है प्रीतम ने और रचना है इरशाद कामिल की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए तमाशा फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और अरिजीत सिंह के आवाजों में। संगीत दिया है AR रहमान ने, रचना है इरशाद कामिल की।

अभी आपने सुना तमाशा फिल्म का ये गीत और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: अंतरित ग्रीन फील्ड चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को अब 6 लेन विन्यास में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की संशोधित लागत 1,008,67,00,000 रुपए निर्धारित की गई है, जिसे व्यय वित्त समिति ने अनुमोदित कर दिया है। ईपीसी मोड पर बनने वाली इस परियोजना की निर्माण अवधि 24 माह प्रस्तावित है। खास बात यह है कि 6 लेन विस्तार के बावजूद पूर्व में क्रय की गई भूमि में कोई बदलाव नहीं होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से चित्रकूट में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। चित्रकूट में सड़क और पैदल यात्री सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को भी गति मिली है। चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन लिंक रोड के 780 मीटर हिस्से के सड़क सुधार और पैदल यात्री और स्थापना कार्य के लिए 6,50,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज करवी के 400 मीटर लिंक रोड पर फुटपाथ सर्कुलेटिंग और अन्य पैदल यात्री सुविधाओं के लिए 3,90,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। विशेष क्षेत्र प्राधिकरण चित्रकूट इन कार्यों को कराएगा। इससे आवागमन सुगम होने के साथ पैदल यात्रियों को और सुरक्षित बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जनपद में रवि फसलों की समय से बुआई के लिए किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। चित्रकूट में सरसों, चना, मटर, मसूर, तोरिया और गेहूं के बीज 50% अनुदान पर, जबकि दलहन तिलहन के निशुल्क मिनी किट उपलब्ध हैं। अब तक सरसों के 2067, चना के 3,458, मसूर के 244 और अलसी के 156 मिनी किट बुकिंग हो चुकी है। ऑनलाइन बुकिंग की अंतिम तिथि 30 सितम्बर है। किसान भाई बहन शीघ्र ऑनलाइन बुकिंग कर संबंधित राजकीय कृषि बीज गोदाम से बीज मिनी किट प्राप्त करें। चित्रकूट में सरयू नदी को पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने की कयावत शुरू होने जा रही है। रामघाट क्षेत्र में राजस्व नगर पालिका और संयुक्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम रोवर तकनीक और सैटेलाइट सिग्नल आधारित सर्वे के जरिए सरयू के पुराने प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्र और वास्तविक सीमा का वैज्ञानिक निर्धारण करेगी। सर्वे के बाद जरूरत के अनुसार नदी क्षेत्र में पिलर लगाकर सीमा को स्थायी रूप से चिन्हित किया जाएगा। करीब 5 किलोमीटर लंबी सरयू कामतगिर पर्वत क्षेत्र से निकलकर राघव प्रयाग घाट में दाखिनी में मिलती है। अतिक्रमण और कंक्रीट निर्माण से कमजोर हुई इस धारा के पुराने प्रवाह क्षेत्र की पहचान के बाद अतिक्रमण हटाने और खुदाई जैसे कार्रवाई से नदी को पुनर्जीवन की राह खुल सकती है। चित्रकूट में धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के विकास को भी नई गति मिल रही है। लालापुर स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम और तमसा गंगा नदी तट पर पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं के तहत करीब 25,97,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। तमसा गंगा नदी पर वाल्मीकि घाट और पर्यटक सुविधाओं के लिए 9,05,00,000 रुपए, आश्रम में परिक्रमा पथ और आरती स्थल के लिए 5,25,00,000 रुपए तथा प्राचीन हनुमान मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 1,66,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों में घाट प्रकाश व्यवस्था, बैठने के लिए बेंच, यात्री सेट, शौचालय, पेवर ब्लॉक, साइनेज और सौंदर्यीकरण कार्य शामिल हैं। वहीं प्रमुख धार्मिक स्थल रामसैया के पर्यटन विकास के लिए 1,72,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से लालापुर और आसपास के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जनपद में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान ऋण खातों के निस्तारण की प्रभावी पहल की गई। कुल 12,893 नोटिस प्रकरणों में से 363 ऋण खातों का सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण हुआ। लगभग 4,85,00,000 रुपए की बकाया राशि के सापेक्ष 2,60,00,000 रुपए की समझौता राशि निर्धारित की गई, जबकि करीब 1,66,00,000 रुपए का डाउन पेमेंट प्राप्त या निर्धारित हुआ। इस पहल से बैंक और ऋण ग्राहियों को लाभ मिला और लंबित ऋण प्रकरणों को के त्वरित समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ। चित्रकूट की बालिकाओं ने मंडल स्तरीय बालीबाल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय इटौरा विकासखंड पहाड़ी की बालिका टीम ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि बालक टीम द्वितीय स्थान पर रही। जिले में गौ वंशों के संरक्षण व संवर्धन के लिए शासन के निर्देश पर नगर पंचायत मऊ क्षेत्र के मैदाना स्थित गौशाला का जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के साथ निरीक्षण किया। गौशाला में 175 गौवंश संरक्षित मिले। जिलाधिकारी ने हरा चारा, पौष्टिक आहार, स्वच्छ पेयजल और पर्याप्त भूसा भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गौवंश को गुड़, चना और हरी घास खिलाई तथा संरक्षण व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया,
1: जो बड़े पशु हैं और जो छोटे हमारे गायें हैं उनको थोड़ा अलग रखें। साथ साथ ये भी जानकारी इनके द्वारा दी गई कि किसानों के साथ अग्रीमेंट करके इनको हरा चारा खिलाया जा रहा है। इसके प्रति भी शासन द्वारा डायरेक्शंस लगातार दिए जा रहे हैं कि किसानों के साथ अग्रीमेंट करें। इससे किसानों को आय भी मिलती है अपने उत्पाद की और गायों को हरा चारा भी मिलता है।
2: चित्रकूट जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविन्द्र कुमार का।
3: जनपद हापुड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत जनपद हापुड़ में 3,50,000 दीप प्रज्वलन किए गए। सेवा संकल्प अभियान जनपद हापुड़ के ब्रजघाट गंगा तट को रंगोली झांकियों के साथ आकर्षक रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चित्रकूट और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का।
1: चित्रकूट के विकास और कनेक्टिविटी को नई गति मिलने जा रही है। 15.17 किलोमीटर लंबे प्रवेश

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जिला संयुक्त चिकित्सालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में काफी संख्या में लोग रक्तदान करने पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक विजयपाल आरती ने चिकित्सालय में रोगियों को फल वितरित किए। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान 1 माह तक चलाया जाएगा, जिसमें जनसेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: जिला संयुक्त चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हेमलता ने बताया कि
2: हमारे स्टाफ ने भी रक्तदान दिया है और जो हमारे बाहर से वॉलंटरी थे उन्होंने रक्तदान दिया, और जो हमारे आने वाले मरीजों में उनके तीमारदार है उन सबको रक्तदान देने के फायदे बताए हैं, उसके उपयोगिता बताई है और उनको अधिक से अधिक सपोर्ट करने के लिए कहा गया है।
0: जनपद हापुड़ पहुंचे प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, योजनाओं को साकार करने के लिए बजट दिया जा रहा है। उन्होंने जनपद हापुड़ में जिला न्यायालय के निर्माण को लेकर कहा कि न्यायालय निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के 2047 तक भारत को विकसित करने के संकल्प के आधार पर सरकार विकास कर रही है। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा सर्व समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रही है और कोई चुनाव भाजपा के लिए चुनौती नहीं है। उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर एकजुट होकर जमीनी स्तर पर काम करने का आह्वान भी किया। श्री खन्ना ने जनपद के वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जनपद हापुड़ में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने पिलखुवा क्षेत्र में 5 स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। पुलिस बल के सहयोग से प्राधिकरण के प्रवर्तन दल ने करीब 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने लोगों से मानचित्र स्वीकृति करने के बाद ही निर्माण और विकास कार्य करने की अपील की है। प्राधिकरण के सचिव अमित कादियान ने कहा कि निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा
3: अवैध कॉलोनियों में न कोई प्लॉट खरीदे और न उनको बढ़ावा दे। कहीं भी प्लॉट खरीदने से पहले जानकारी उन्हें प्राप्त कर लेनी चाहिए, इसका लेआउट पास है या नहीं है, वो नुकसान से बचे।
0: मेरठ लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरुण गोविल ने हापुड़ के अतरपुरा चौराहा स्थित शहीद स्मारक का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को अतिक्रमण हटवाकर शहीद स्मारक का सौंदर्यकरण कराने के निर्देश दिए। अगस्त 1942 की क्रांति में हापुड़ में आंदोलन कर रहे लोगों पर अंग्रेजी पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें 5 लोग शहीद हो गए थे, जिनकी याद में इस स्थान पर स्मारक बना हुआ है। सांसद अरुण गोविल ने कहा कि शहीद स्मारक का भव्य सौंदर्यकरण कराया जाएगा, जिससे शहीदों को सम्मान मिल सके। जनपद हापुड़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिससे अवसर पर आकर्षक झांकी और संकीर्तन से श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से वातावरण काफी भक्तिमय बना रहा। पुलिस लाइन में पुलिस विभाग द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया, जिसमें संकीर्तन का आयोजन किया गया और भक्तिमय भजनों पर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया गया। चंद्र दर्शन आरती का भी आयोजन किया गया। जनपद हापुड़ में खरीफ सीजन में कृषकों को गुणवत्ता पूर्वक उर्वरक और पेस्टिसाइड उपलब्ध कराने के लिए जिला कृषि अधिकारी की टीम ने असोड़ा पैंट एवं दोमी रोड स्थित 2 उर्वरक पेस्टिस साइड विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया और 18 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। एनजीटी ने 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर एनसीआर में रोक लगा दी है, जिसको लेकर जनपद में 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ उपसंभागीय परिवहन विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और सीज की कार्रवाई की गई। वहीं उपसंभागीय परिवहन अधिकारी छवि सिंह ने बताया कि 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल के वाहन स्वामी समय सीमा पूरी करने वाले वाहनों को अधिकृत स्क्रैप केंद्रों पर स्क्रैप करा सकते हैं, अन्यथा वाहन संचालन की स्थिति में वाहन सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। वाहन स्वामी अधिकृत केंद्रों पर वाहन स्क्रैप करा कर प्रमाण पत्र ले लें। जनपद हापुड़ में विश्वकर्मा जयंती पर जगह जगह यज्ञ और भंडारे आयोजन किए गए, जिसमें शिल्प कला के जनक भगवान विश्वकर्मा को नमन किया गया। नगर पालिका परिषद हापुड़ द्वारा पूजा अर्चना और भंडारे में काफी संख्या में लोग पहुंचे और यज्ञ में आहुति देकर विश्व मंगल की कामना की। 18 सितंबर को जनपद हापुड़ में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा प्रबंधन की गतिविधियों और आपदा और आपातकालीन की स्थिति में सभी विभागों की तत्परता को परखा गया।
4: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: श्रोताओं, सुबह के 9:30 हुए हैं। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। आज की पेशकश आकाशवाणी रामपुर के मरकज से। इसमें आइए सुनते हैं आलमी यौम गुलाब पर खुसूसी प्रोग्राम सहारे हौसलों के।
1: समिन, आज के उर्दू प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। रामपुर रेडियो मरकज से आयशा राहत का आदाब। समिन, आज का दिन 22 सितंबर दुनिया भर में वर्ल्ड रोज डे के नाम से जाना जाता है।

0: साहिल लुधियानवी साहब ने क्या खूब कहा, हजार बर्क गिरें लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। गुलाब सिर्फ मोहब्बत और खूबसूरती की अलामत नहीं, बल्कि ये कांटों के दरमियान मुस्कुराना भी सिखाता है। कैंसर के मरीजों के लिए गुलाब का फूल ये पैगाम भी लाता है कि वो इस कठिन तकलीफ में भी तन्हा नहीं है, जिंदगी अभी बाकी है और उम्मीद का दामन अभी छोड़ना नहीं है।
1: डॉक्टर मुजाहिद फराज,
2: अगर आप किसी तबीब किसी डॉक्टर से मालूम करें कि जिंदा रहने के लिए क्या कुछ जरूरी है, तो जाहिर है जवाब मिलेगा कि हवा, पानी और ग़िज़ा, ज्यादा से ज्यादा ये कि बीमारी की सूरत में दवा। ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन यही सवाल अगर किसी फलसफी से किया जाए तो कहेगा कि जिंदा रहने के लिए सबसे पहले जीने का हौसला जरूरी है। गौर कीजिए तो यही जवाब सही है और फलसफा हयात इसी जवाब में पोशीदा है। अगर आप किसी शख्स को बेहतरीन ग़िज़ा, बेहतर से बेहतर आबो हवा और दीगर आसाइशें फराहम करते रहें, लेकिन वो शख्स जिंदा रहने का हौसला हार चुका हो, तो उसके लिए तमाम लवाजमात बेसूद है। कि कैंसर के बारे में ये बात खास व आम में मशहूर है कि ये लाइलाज बीमारी है, हालांकि साइंस की रोजो शब होने वाली रिसर्चेज ने इस बात को भी गलत साबित किया है और कैंसर का इलाज बसा औकात मुमकिन भी है। असल बात यह है कि कैंसर के मरीज के साथ उसके तीमारदारों और मुतालिकीन का रवैया कैसा होना चाहिए। प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने क्या खूब कहा है, उसे कैसे बता दूं, साथ छूट जाना यकीनी है, मुसाफिर से सफर का हौसला छीना नहीं जाता। खुदा न खास्ता अगर हमारे महल्ले, पड़ोस या कराबतदारों में ऐसा मरीज मौजूद है, तो सबसे पहले तो हमें उसके साथ इंतहाई मोहब्बत भरा सलूक इख्तियार करना चाहिए। मुस्कुराहट भी सदका है, इस उसूल को याद रखते हुए हम मरीज के सामने जब और जितनी मर्तबा जाएं, अपने होठों पर मुस्कुराहट सजा कर जाएं। उसकी खैरियत मालूम करते हुए हमारा लहजा मीठा हो, उसकी बात पूरी तरह सुने, हमेशा तसल्ली दें कि आज आप कल से बेहतर दिख रहे हो, दवा अपना असर कर रही है, इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अगर डॉक्टर ने कोई परेशान कुन बात बताई है तो मरीज के सामने उसका इजहार ना करें। मरीज के सामने रोना धोना तो उसे जहर देने के मुतरादिफ है। उसकी खिदमत करते हुए उसे कहीं भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो हम पर बोझ बन गया है। उम्मीद अफजा बात करें, मुमकिन है हमारा ये रवैया खिजा के मौसम में नवेदे बहार बन जाए। ये एक इशारा है इस बात का भी कि हमारे बर्ताव को गुलाब जैसी महक, ताजगी और शगुफ्तगी ही इस हारे हुए इंसान में जिंदगी का हौसला जगा सकती है।
1: चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी परेशानियां हों, हमें हिम्मत से, हौसले से आगे बढ़ना है, क्योंकि इंसान की जिंदगी के नशेबो फराज खुशी और आजमाइशों से इबारत है। जब कोई शख्स कैंसर या किसी शदीद बीमारी से गुजरता है तो ये सिर्फ जिस्म की आजमाइश नहीं होती, बल्कि इंसान के सब्र, यकीन और आसाब का भी इम्तहान होता है।
0: ऐसे में हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनका सहारा बने और उनके दिलों में जिंदगी का चिराग रोशन रखें। शायरा मोहतरमा सीमा गौहर की जुबानी।
3: जो मंजिल चाहिए खुद को कभी थकने नहीं देना, कदम रुकने नहीं देना, कदम रुकने नहीं देना।

0: जिंदगी में किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, उनकी जिंदगी की ख्वाहिशें दिल में रखते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो अपनी इन ख्वाहिशात को पूर्ण नहीं कर पाते। जिंदगी में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ये बात सही है, आप लोगों की जिंदगी तकलीफों से पुर है, लेकिन अगर हम अपने आप को खुश रखेंगे तो हमारी सेहत पर अच्छा असरात पड़ेंगे। वक्त के साथ साथ सारी परेशानियां और तकलीफें कम हो जाती हैं। वैसे भी कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमारा मन ठान ले कि सब ठीक हो जाएगा, तो यकीन रखें जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता जाएगा। अच्छे ख्यालात दिल में लाएं, इसलिए जिंदगी को खुश होकर, अच्छी सोच रखकर, सब आने वाली जिंदगी के लिए अच्छा सोचना चाहिए। तेरगे की कजा की बात न कर, दर्द की इंतहा की बात न कर, रोशनी रूह की मुनव्वर रख, रूठी रूठी फजा की बात न कर। कर ले अपनी खुदी बुलंद ऐ दिल, तू किसी रहनुमा की बात न कर, अज़्म से पार कर ले दरिया को, अब किसी नाखुदा की बात न कर। बह रही दूर तक नसीमे सहर, ठहरी ठहरी हवा की बात न कर, है असर सुन तेरी सनाओं में, मुस्कुरा बद्दुआ की बात न कर, मुस्कुरा बद्दुआ की बात न कर।
1: बीमारी एक आजमाइश है, अंजाम नहीं। कैंसर सिर्फ एक बीमारी का नाम है, किसी की कहानी का आखिरी बाब नहीं। आज की जदीद तिब्बी दुनिया में इलाज के बेशुमार रास्ते मौजूद हैं और लाखों लोग इस जंग को जीतकर मुकम्मल सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई।
2: मशहूर कहावत है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, ये महज एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, और इसकी हकीकत वही जानते हैं जिनके पास ये दौलत नहीं।
1: काउंसलर साइकोलॉजिस्ट तबस्सुम साहिबा के मुताबिक
3: मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही इंटरडिसिप्लिनरी नेचर हैं। जैसे कि फिजिकल हेल्थ का असर पड़ता है दिमाग पर मेंटल हेल्थ पर, और मेंटल हेल्थ का भी असर पड़ता है फिजिकल हेल्थ पर। कैंसर एक ऐसी बहुत बड़ी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही, जब कैंसर पेशेंट को कैंसर डायग्नोस होता है तो पेशेंट दो कंडीशन में आ जाता है, एक डिनाइल कंडीशन में आ जाता है और एक आ जाता है शॉक कंडीशन में। कि डिनाइल तो वो ये करता है, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं है और ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरा स्टेट ऐसी होती है कि शॉक में आ जाता है, तो तब हमारा एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में हम बोलें तो ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जब इंसान को जब शॉक पहुंचता है कि उसे कैंसर है, तो वो उसे हम कैंसर ट्रॉमा भी बोलते हैं। तो जब पेशेंट बहुत शॉक हो जाता है उस बीमारी से लड़ने के, आगे का सब कुछ सब उसे धुंधला दिखने लगता है, ब्लाइंड दिखने लगता है कि अब आगे की उसकी जिंदगी कितनी है। एंजाइटी, फेयर, डिप्रेशन, डेथ एंजाइटी होने लगती है कि अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं, कितने हफ्ते, कितने महीने बचे हैं, कब हमारा कुछ हो जाए। तो एक उसके लिए एक अलार्मिंग पॉइंट बन जाता है ये। पहले इतने ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थे, आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और आज सिर्फ कीमोथेरेपी नहीं बल्कि कैंसर के लिए टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, बहुत सी थेरेपीज ऐसी हैं जो अवेलेबल हैं और बहुत से ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो अवेलेबल हैं। अगर इसका अर्ली डायग्नोस हो जाए तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट मिलना भी बहुत जरूरी होती है, और उसकी फैमिली मेंबर्स को। ये साइको ऑन्कोलॉजी कोर्स उन लोगों के लिए हैं जो कैंसर पेशेंट्स को हील करने में मदद करें। जैसे कि उसमें स्ट्रेस एंजाइटी होती है, तो उससे कैसे हम मतलब अपने आप को कोपिंग स्किल्स उनको सिखाई जाती हैं, कोपिंग मैकेनिज्म उनको सिखाया जाता है कि कैसे उससे हम अपने स्ट्रेस को, डिप्रेशन को मैनेज करें, हील करें। हेल्प मांगना वीकनेस नहीं है, रोना वीकनेस नहीं है, अपने आप को कुछ टाइम के लिए आइसोलेट कर लेना वीकनेस नहीं है, टूट कर बिखर जाना वीकनेस नहीं है। आप इन चीजों को वीकनेस नहीं माने, ये एक इमोशनल नेचुरल रिस्पॉन्स है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है। तो लेकिन अगर ऐसा लगे कि हम टूट गए, हिम्मत हार गए हैं, तो ये समझकर इसको एक्सेप्ट कर लेना और फिर दोबारा से खड़े होना, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। टूट कर गिरना सबको होता है, इंसान है, टूटता है, हिम्मत गिरती है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के रूप में ये पुरस्कार राष्ट्र

0: वे राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देशभर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग बोरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति व्यक्त की है। हुतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनर्प्रयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित 4 सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर बहुत गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अभी आपने सुना सनम रे फिल्म का ये गीत। अरमान मलिक, अमाल मलिक और पलक मुश्किल की आवाजों में संगीत दिया था। अमाल मलिक ने रचना थी मनोज यादव की। लीजिए अब सुनिए।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए धुरंधर फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह और शाश्वत सचदेव की आवाजों में। संगीतकार हैं इरशाद कामिल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत लीजिए। अब सुनिए 10 फिल्म का ये गीत सोनू निगम, शान और सुनिधि चौहान की आवाजों में। संगीत दिया है विशाल शेखर ने, रचना है पंछी जलोनवी की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं प्रशांत मिश्रा, संगमलाल यादव और साथी और उर्मिला श्रीवास्तव। पहले आपको सुनवाएंगे प्रशांत मिश्रा के स्वर में ये देवी गीत।

अभी आपने संगम लाल यादव और साथी के स्वर में ये निर्गुण सुना। आइए अब सुनते हैं उर्मिला श्रीवास्तव के स्वर में गंगा गीत।

0: लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे।
1: अभी आप उर्मिला श्रीवास्तव के स्वर में लोकगीत सुन रहे थे। लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। पेश खिदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत एक ही कलाकार।

सभी सुनने वालों को अतुल यादव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं संगीत के उस सुरीले सफर पर जहां हर गीत दिल को छू जाता है। आज का यह प्रोग्राम केंद्रित है उस कलाकार पर जिसकी आवाज ने 90 के दशक को मोहब्बत की खुशबू से भर दिया। जी हाँ, आज बात होगी उस आवाज की जिसने लाखों दिलों पर राज किया, वो आवाज जिसमें दर्द भी है, दीवानगी भी और सुकून भी। आज बात होगी कुमार सानू की। तो चलिए यादों को करते हैं ताजा और शुरू करते हैं गीतों का कारवां।

कुमार सानू का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को कोलकाता में हुआ था और इनका नाम था केदारनाथ भट्टाचार्य। उनके पिता पशुपति भट्टाचार्य एक गायक थे, साथ ही साथ संगीतकार भी, और यही वो गुरु थे, यही वो शख्स थे जिन्होंने बचपन से ही कुमार सानू को गायन और तबला वादन सिखाया। कुमार सानू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से ही की और कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। शुरुआत में उन्होंने लोकल रेस्टोरों और विभिन्न शोज में गाना शुरू किया। गायन शैली ऐसी जिसमें सदाबहार गायक किशोर दा की झलक साफ दिखाई देती है।

स्टेज शोज करते हुए कुमार सानू को जल्दी ही ये समझ में आ गया कि अगर दुनिया में नाम कमाना है तो कोलकाता से बाहर निकलना होगा। फिर क्या था, वो आ गए माया नगरी मुंबई, जहां कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म जादूगर में उन्हें गाने का मौका दिया। साल था 1989। इसी दौरान उन्होंने अपना नाम केदारनाथ भट्टाचार्य से बदलकर कुमार सानू रख दिया। फिर आया साल 1990, फिल्म आशिकी, और यहीं से मिली कुमार सानू को असली पहचान।

फिल्म आशिकी के सभी गाने सुपरहिट थे और कुमार सानू लगातार 5 साल तक फिल्मफेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीतते रहे। इतना ही नहीं श्रोताओं, एक दिन में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। इसके अलावा साल 2009 में कुमार सानू को पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

तो श्रोताओं, ये था कुमार सानू पर आधारित कार्यक्रम, जिसमें हमने उस दौर के अच्छे अच्छे गाने आपको सुनवाए, वो गाने जिन्होंने कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन के रूप में खुद को स्थापित किया और कुमार सानू को भी स्थापित किया। कुमार सानू उस दौर से लेकर के आज तक अपनी आवाज़ के जादू से अपने चाहने वालों के दिलों पर राज कर रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में 20,000 से भी ज़्यादा गाने गाए और हिंदी सिनेमा के इतिहास में सफलतम प्लेबैक सिंगर्स में अपना नाम शुमार किया। साथ ही साथ नई पीढ़ी को संगीत की कैसी विरासत सौंपी, जिसे सहेज कर, जिसे आत्मसात करके उदीयमान कलाकार अपना भविष्य संवार रहे हैं।

तो श्रोताओं, ये था सुरों का वो सफर जिसमें हमने महसूस की मोहब्बत, यादें और दिल की बात। कुमार सानू की आवाज सिर्फ गाने नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो कभी पुराना नहीं होता। फिर मिलेंगे किसी नए कलाकार, उनकी कहानी और गीतों के साथ। तब तक के लिए अतुल यादव को दीजिए इजाजत। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर की

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

श्रोताओ, फिल्म संगीत प्रोग्राम जाहिर है आपका पसंदीदा प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम में हम गाने भी सुनवाएंगे, लेकिन आज बात होगी उस चीज की जो हमारे हाथ में है, हमारी जेब में है और कभी कभी हमारी पूरी जिंदगी को एक क्लिक में बदल सकती है। जी हाँ, बात हो रही है मोबाइल और इंटरनेट की। आज हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बैंकिंग करते हैं, टिकट बुक करते हैं, दोस्त बनाते हैं, प्यार करते हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं, लेकिन इस डिजिटल दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रहे होते हैं। एक OTP, एक लिंक, एक QR कोड या सिर्फ एक फोन कॉल। इसलिए आज का हमारा मंत्र है, क्लिक करने से पहले एक बार सोचिए। तो चलिए इस बेहद जरूरी बातचीत की शुरुआत करते हैं, साथ ही सुनते हैं यह खूबसूरत सा गाना।

कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 25 लाख रुपए की लॉटरी जीत ली है। पैसे पाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। आप क्या करेंगे, खुशी में तुरंत क्लिक या 2 सेकंड रुककर सोचेंगे, भाई मैंने लॉटरी कब खरीदी थी? यही 2 सेकंड आपको साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं, क्योंकि साइबर अपराधी अक्सर लालच, डर और जल्दबाजी, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अभी पैसे भेजिए, अभी ओटीपी बताइए, आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, आपके नाम से FIR हुई है, आपका बिजली कनेक्शन कट जाएगा और हम घबरा जाते हैं। याद रखिए, जो आपको डराकर या जल्दबाजी में फैसला करवाना चाहता है, उस पर रुककर सवाल जरूर कीजिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। कार्यक्रम में गाने आपको सुनवाएंगे, जरा एक छोटी सी कहानी सुनिए। मान लीजिए आपके पास फोन आता है और उधर से आवाज आती है कि नमस्कार सर, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूं, आपके खाते में सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हुआ है, उसे रोकने के लिए आपके मोबाइल पर एक OTP आया होगा, वो OTP आप हमें बताइए। आवाज बिल्कुल प्रोफेशनल, नाम भी सही, सब कुछ सही से पता है उन्हें, आपका बैंक कौन सा है शायद ये भी पता है उन्हें, और आपको लगेगा अरे बैंक से ही तो फोन है। लेकिन असली खेल यहीं शुरू होता है। सच्चाई ये है कि OTP किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। आपका OTP आपका है, आपका पिन आपका है, आपका पासवर्ड आपका है, और आपके बैंक की जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर करने की चीज नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए कि बैंक आपको OTP बताने के लिए कभी फोन नहीं करता। और अगर कोई कहे कि मैं पुलिस बोल रहा हूं तो डरिए मत, पहले फोन काटिए, फिर संबंधित विभाग के आधिकारिक नंबर पर खुद से संपर्क करिए, क्योंकि आवाज पुलिस जैसी हो सकती है, वीडियो कॉल पर चेहरा पुलिस जैसा हो सकता है, लेकिन सच्चाई की पुष्टि आपको खुद ही करनी होती है। क्योंकि डिजिटल दुनिया में स्मार्ट होने का मतलब नया फोन चलाना नहीं है, स्मार्ट होने का मतलब है सही जगह पर नो कहना। इसी के साथ सुनते हैं अगला गाना।
1: ए भाई

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार?

हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।

0: नमस्कार, मैं पंकज त्रिपाठी। बधाई हो, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। इसको पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक QR कोड सेंड किया जा रहा है, उसे बस आपको स्कैन करना है।
1: जी हाँ श्रोताओं, ये भी एक खेल है, एक ऐसा खेल जिसमें इंसान बड़ी आसानी से फंस जाता है, क्योंकि कहते हैं ना एक कहावत कि लालच बुरी बला है। QR कोड दुकान पर, रेस्टोरेंट में, ऑटो में, ऑनलाइन पेमेंट में और न जाने कितनी जगह दिखाई पड़ते हैं। और यही एक बहुत ज़रूरी बात, QR कोड स्कैन करना हमेशा पैसा पाने का तरीका नहीं होता। अगर कोई आपसे कहे मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, बस ये QR कोड स्कैन करिए और अपना पिन डालिए, तो रुक जाइए। पैसे प्राप्त करने के लिए आमतौर पर UPI पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती। UPI पिन का इस्तेमाल तब होता है जब आप भुगतान ऑथराइज कर रहे होते हैं। इसलिए पैसे लेने के नाम पर अगर कोई आपसे पिन मांग रहा है तो सावधान हो जाइए। और हाँ, किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई स्क्रीन शेयरिंग या रिमोट एक्सेस ऐप भी डाउनलोड मत करिए, क्योंकि साइबर अपराधी को आपके फ़ोन तक की पहुँच मिल गई तो आपकी स्क्रीन पर क्या है वो देखना उसके लिए बहुत ही आसान हो सकता है।

और अब एक छोटी सी डिजिटल सावधानी के बाद चलते हैं वापस उसी संगीत की दुनिया में, क्योंकि अच्छे गाने कभी ओटीपी नहीं मांगते, कभी पिन नहीं पूछते और कभी नहीं कहते कि अभी क्लिक करो। बस दिल से सुनते रहिए ये खूबसूरत गाना।

और अब बात एक ऐसे साइबर फ्रॉड की जिसने बहुत से लोगों को डरा दिया है। किसी को वीडियो कॉल आता है, आपके नाम से इलीगल पार्सल मिला है या फिर आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, फिर सामने कोई व्यक्ति पुलिस, सीबीआई या ईडी या किसी सरकारी एजेंसी के अधिकारी जैसा दिखाई देता है और कहा जाता है कि आपको वीडियो कॉल पर रहना होगा, किसी से बात नहीं करनी है, आपका फोन कटना नहीं चाहिए, और धीरे धीरे डर का एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि आप बिल्कुल जड़ हो जाते हैं और फिर शुरू होती है पैसे की मांग। तो श्रोताओं, किसी अनजान वीडियो कॉल पर बैठकर खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करना समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति में घबराइए नहीं, कॉल काटिए, किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य को बताइए और संबंधित जो भी सरकारी एजेंसी या कानूनन जो भी एजेंसी है, एक आधिकारिक माध्यम से खुद से संपर्क करके उसको वेरीफाई जरूर करिए। तो आज की इस छोटी सी बातचीत से अगर एक बात याद रखनी हो तो बस इतनी सी कि इंटरनेट पर भरोसा कीजिए, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए। सोचिए, कॉल वेरीफाई करिए, उसके बाद फिर क्लिक करिए। और अब इस जरूरी संदेश के बाद आज के इस प्रोग्राम का हमारा आखिरी गाना।

आज के इस प्रोग्राम में आपने जिन फिल्मों के गाने सुने उनके नाम हैं देव, खामोशी, मेरा नाम जोकर, डांस डांस और वो लम्हे। तो श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और खूबसूरत कार्यक्रम में, कुछ अच्छे गानों के साथ और कुछ ऐसी बातों के साथ जो जिंदगी में काम आए। तब तक सुरक्षित रहिए, सजग रहिए और क्लिक करने से पहले जरा सोचिए जरूर।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत प्रोग्राम खत्म होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें जल संसाधनों को बढ़ाना और सुरक्षित करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खुशी की बात है कि कई देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी के सही उपयोग के लिए जागरूकता जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
2: वाटर शुड बी यूज्ड प्रीसियसली वेयर द रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटम ऑफ वाटर। दिस वाटर वीक सेलिब्रेशंस हैव प्रूव्ड टू बी सिग्निफिकेंट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स एंड stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed

0: That this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
1: पांच दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 14 राज्य इसमें भाग ले रहे हैं। नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में इसमें शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई है। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी। 16 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा। 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि आधार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आभा आईडी के जरिए भारत ने एक मजबूत और व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की है। न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ एआई फ्रेमवर्क पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एआई मॉडल को स्थानीय और विविध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे लोगों की जरूरतों के अनुरूप प्रभावी समाधान दे सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग न्यूयॉर्क में कल V4+ भारत के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक V4 की स्लोवाकिया की अध्यक्षता में हुई। भारत और विशेषग्राद समूह के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा और सुरक्षा, संपर्क, शिक्षा, लोगों की आवाजाही और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम, शांति और सुरक्षा तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के मुद्दों पर भी विचार साझा किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एशियाई खेलों में भारत ने महिला T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 198 अंक गिरकर 74,661 पर, जबकि निफ्टी 45 अंक फिसलकर 23,369 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the third National Conference of Anti-Narcotics Task Force, ANTF, heads of states and UTs in New Delhi. The two-day conference serves as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. Heads of ANTFs from 36 states and union territories are attending the conference being organized by the Narcotics Control Bureau, NCB. Based on the theme of the United Resolve, Shared Responsibility, the conference is focusing on progress of targets assigned to states and UTs, ANTFs, in recently released vision document on narcotics control 2026-29. During the conference, deliberations will also focus on identifying and adopting appropriate strategies to further strengthen the central government's measures for supply reduction, demand reduction,

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर में यानी दिन में 12:15 पर आप सुनेंगे पंडित गोपाल दास का क्लैरिनेट वादन। शास्त्रीय संगीत के ही एक और कार्यक्रम में रात 10:30 पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन सुनवाया जाएगा। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश 12:30 होगा। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। 1:15 पर ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम पनघट होगा, जिसमें आज संजू मिश्रा की बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा ग्रामीण महिलाओं की बदलती सोच और नया भारत। इसके अलावा महिलाएं अनुराधा पांडे के स्वर में लोकगीत भी सुन सकेंगी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा दिन में 2:30। सांध्यकालीन सभा का आरंभ हम करेंगे धरती के गीत कार्यक्रम से। 5:00 कलाकार होंगे अनिल कुमार। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी रोजाना की तरह 5:15 पर होगा। 6:30 ग्रामीण भाइयों का अपना कार्यक्रम पंचायत घर होगा, जिसमें आज रमेश शुक्ल का रामायण पाठ सुनवाया जाएगा। इसके अलावा वार्ता, साथ ही साथ शैलेश कुमार शर्मा के गाय लोकगीत भी ग्रामीण भाई सुन सकेंगे।

अब युवाणी रोजाना की तरह 5:15 पर होगा। 6:30 बजे ग्रामीण भाइयों का अपना कार्यक्रम पंचायत घर होगा, जिसमें आज रमेश शुक्ल का रामायण पाठ सुनवाया जाएगा। इसके अलावा वार्ता, साथ ही साथ शैलेश कुमार शर्मा के गाय लोकगीत भी ग्रामीण भाई सुन सकेंगे। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम का समय होगा, जिसमें आज डॉक्टर हरिदत्त शर्मा का काव्य पाठ सुनवाया जाएगा।

रात पौने 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम में अनिल कुमार के गाए गीत आप सुन सकेंगे। फिल्म संगीत कार्यक्रम रात 8 बजे, 8:30 बजे सबरस कार्यक्रम होगा और रात 9:30 बजे का समय होगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा का। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

ईश्वर एक है, हम सब उसकी संतान हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई हम बाद में हैं, सबसे पहले हम एक इंसान हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित गोपाल दास का राग शुद्ध सारंग में क्लैरिनेट वादन।

अभी आप सुन रहे थे पंडित गोपाल दास का राग शुद्ध सारंग में क्लियर यूनिट वादन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।
1: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार जी।
2: मैम रोशनी बोल रही, काम होती है, मैं देवा जिला प्रतापगढ़ से। मैम कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोशनी जी, आप कैसी हैं?
2: मैम मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ।
1: कौन सा गीत सुनेंगी?
2: सिर्फ तुम फिल्म का गाना सुनेंगे।
1: हाँ, गाने के बोल बता दीजिए।
2: पंछी सुर में गाते हैं, हमारे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है
1: हवा। तो आइए सुनते हैं सिर्फ तुम फिल्म का ये गाना, रोशनी जी की पसंद।

0: आयुष कार्यक्रम
1: सुरेंद्र यादव वहाँ का जलालपुर
0: जी
1: पोस्ट मऊ आईमा।
0: सुरेंद्र जी ने हमें मऊ आईमा से कॉल की है, तो बताइए सुरेंद्र जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कभी खुश कभी गम चिंता जी, वो चांद सूरज जलने लगा।
0: अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, तो आपकी इस फरमाइश। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए।
1: राजेंद्र कुमार पासावाल के हैं, शारदा प्रजापति, मथुरा राधा सती के हैं
0: जी,
1: विकास ड्राइवर हैं, प्रेमचंद्र यादव है
0: जी जी
1: जी मैम।
0: तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम।

0: चलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: गांव दोधापुर पोस्ट उमरी प्रयागराज निवासी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से आदरणीय मधु दीदी को करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे।
1: दीदी गीत सुनने के पहले सर्वप्रथम मैं आपको सभी श्रोताओं को आकाशवाणी परिवार को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व में प्रारंभ हो चुका है और मैं आपको बहुत बहुत हृदय से बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।
0: जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और इस पर्व की धूमधाम तो सबसे ज्यादा मचती है मुंबई में।
1: जी मुंबई महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यहाँ बहुत ज्यादा धूम रहती है गणेश चतुर्थी की और अनंत चतुर्थी दस, ये 10 दिनों का पर्व बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है।
0: तो आपने कौन सा गाना सुनना चाहा है?
1: दीदी मैं आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है अग्निपथ है।
0: जी जी,
1: देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम।
0: तो आपकी पसंद का ये गाना लीजिए, सुनिए।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम
1: सोनू जायसवाल बोल रहा हूँ। हाँ, प्रतापगढ़ से।
0: जी सोनू जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जीना मरना तेरे संग।
0: जीना मरना तेरे संग फिल्म का कौन सा गाना है?
1: जो आपको पसंद हो।
0: अच्छा अच्छा, कोई भी गीत सुनवा दें इस फिल्म से।
1: जी हाँ।
0: तो लीजिए सुनिए ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे अपनी फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 110.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली से।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी राज्यों से अपील करते हुए कहा है कि अगले फिल्म पुरस्कार के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को मनोनीत करें।
1: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाए और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाए। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है, उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट

0: करे तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
1: सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की यह अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। कर्मचारियों ने बैंकों में कामकाज सप्ताह में 5 दिन करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांग रखी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने उनकी एक मांग मानते हुए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। निर्वाचन आयोग ने 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और एक उत्तराखंड की सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई थी। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी। मतदान 16 अक्टूबर को होगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र के 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा। 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: भारत ने मलेशिया में अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे रोजगार की तलाश के लिए 30 दिन की वीजा मुक्त प्रवेश सुविधा का इस्तेमाल न करें। क्वालालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर जारी एक परामर्श में कहा कि मलेशिया पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उच्चायोग ने कहा कि बेईमान एजेंट नौकरी के झूठे वादे कर भारतीय नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 6 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah inaugurated the 3rd National Conference of Heads of Anti-Narcotics Task Force, ANTF, of States and Union Territories in New Delhi today. The 2-day conference serves as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. Heads of ANTFs from 36 states and UTs are attending the conference, which is being organized by the Narcotics Control Bureau. Based on the theme of United Resolve, Shared Responsibility, the conference is focusing on the progress of targets assigned to task forces of states and UTs in the recently released Vision Document on Narcotics Control 2026-29. The Union Home Ministry said the central government is working in mission mode to protect the nation's youth from the adverse effects of drug abuse. Vice President C.P. Radhakrishnan inaugurated the 9th India International Water Week 2026 in New Delhi today. Speaking on the occasion, he stressed the judicious use of water and highlighted the need for its conservation.
4: This shows the importance of water because the population is increasing, the urbanization is increasing. We have to produce more food grains. When the urbanization increases, we need more water for cleaning, for drinking. The usage of water is increasing every day. So we all must make a clear awareness in ourselves as well as the wherever we go. The water should be used preciously.
3: The theme of this year's Water Week is Climate Resilient Water Management. The 5-day international event will provide a multidisciplinary platform bringing together all stakeholders to deliberate upon the pressing challenges of water management. The Election Commission has announced the biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. This includes 10 seats in Uttar Pradesh and 1 seat in Uttarakhand. The commission also announced by poll for one seat of Rajya Sabha in West Bengal.

0: The seat was vacant due to the resignation of TMC MP Rukmini Malik. Nomination will begin on the 29th of this month and polling will be held on the 16th of next month. The commission also announced the MLC election for 11 seats in Uttar Pradesh, 8 seats in Bihar, 5 seats in Maharashtra and 4 seats in Karnataka. Nomination for the polls will begin on the 29th of this month and polling will be held on the 23rd of next month. The government has urged bank employees to refrain from resorting to strikes, work towards resolving issues through dialogue and ensure that banking services remain uninterrupted. The appeal comes ahead of a three-day nationwide strike called by the United Forum of Bank Unions and certain other unions and associations in public sector banks from the 28th to the 30th of this month. They have called a strike in support of two principal demands: implementation of five-day banking and withdrawal of the performance-linked incentive PLI scheme. The Union Finance Ministry said, following detailed discussions, the government has fulfilled one of the demands and decided to keep the PLI scheme in abeyance. The ministry said, the government has taken several measures aimed at improving the working environment, transparency and welfare of bank employees. Britain has agreed to provide limited support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. Riyadh requested the support after the Houthis, who control the most populous parts of Yemen, intensified their attacks on Saudi Arabia, marking a new front in the wider war that began with the US and Israeli strikes on Iran in late February. For the new air-to-air refueling support, Britain will deploy one Voyager plane in the coming days. Indian Eves opener Smriti Mandhana has created history by becoming the first cricketer in the world to score 11,000 runs in women's international cricket. Smriti achieved this milestone during the Asian Games final against Sri Lanka at the Korogi Sports Park in Nishin, Japan. In women's cricket, chasing a target of 217 runs, Sri Lanka were at 54 for 7 wickets in 11 overs against India in the final in the Asian Games at the IEG Prefectural Korogi Sports Park, Japan, when reports last came in. Early opting to bat first after winning the toss, India scored 216 runs for 3 wickets in 20 overs. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 3,566 नए मुंतखब उम्मीदवारों को तकरारीनामे तकसीम किए। ये तकरीब लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई। तकरारीनामा हासिल करने वालों में 319 प्रिंसिपल, 258 हेडमास्टर, 618 लेक्चरर और 2372 असिस्टेंट असातजा शामिल हैं। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला ने कहा कि
2: प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत संकल्प को पूरा करने का एक गुरुत्वर दायित्व भी है और उस दायित्व के निर्वहन करने के लिए आज आप सब नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूं।
1: भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर नितिन नवीन मगरबी उत्तर प्रदेश के अपने दौरे के दौरान मेरठ से दिल्ली देहरादून कौमी शाहरा के जरिए आज मुजफ्फरनगर पहुंचे। साबिक मरकजी वजीर संजीव बालियान और रियासती वजीर कपिल देव अग्रवाल समेत बड़ी तादाद में बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने कहा कि वो गुज़िश्ता दो दिनों से मगरबी उत्तर प्रदेश के दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कारकुनों के जोश और जज्बे को देखकर उन्हें यकीन है कि बीजेपी 2027 में उत्तर प्रदेश में मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कारकुनों से इजहार तशक्कुर भी जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन ने रियासत में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया है। इन 10 राज्यसभा सीटों की मियाद नवंबर में खत्म हो रही है। 29 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी 6 अक्टूबर को दाखिल किए जाएंगे और जांच पड़ताल 7 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवार 9 अक्टूबर तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। वोटिंग 16 अक्टूबर को होगी और गिनती उसी दिन शाम 5 बजे तक होगी। वहीं 5 ग्रेजुएट और 6 असातजा के हलकों से उत्तर प्रदेश कानून साज कौंसिल की मियाद दिसंबर में मौजूदा मेंबरान के रिटायरमेंट की वजह से खत्म हो रही है। इन इंतखाबात से मुतालिक जाब्ते खिलाफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। नोटिफिकेशन 29 सितंबर को जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी

0: कानपुर नगर का जिला मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया गया है। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनुज मलिक संत कबीरनगर के जिला मजिस्ट्रेट होंगे। संत कबीरनगर के जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार को पीलीभीत में और पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानेन्द्र सिंह को बलिया मुकर्रर किया गया है। बागपत, महोबा, बिजनौर, हाथरस और हमीरपुर में भी नए जिले मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के अतीय में बेजाबतियों के मामले की समाप्त की। समाप्त के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार महते ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोमालिया बागची और वी मोना पर मुश्तमिल बंच को मुतल्लक किया कि अदालत की सितंबर को या उससे 25 तरफ से SIT मुकर्रर करदा खसूसी तहकीकती टीम से पहले अपनी पहली चार्जशीट दाखिल करेंगी। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिन की कानूनी मुद्दत खत्म होने वाली और तारीख से पहले चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने SIT की तरफ से पेश की गई तफसीली स्टेटस रिपोर्ट का भी जायजा लिया। दरी असना एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने कल रस्मी तौर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के CEO के तौर पर चार्ज संभाला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत में 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इस अरसे के दौरान उनका नज़्बुल ऐन खिदमत और गुड गवर्नेंस रहा है, जिसका मंत्र अवामी खिदमत के जरिए कौमी खिदमत है और इस विज़न के साथ हुकूमत 2047 तक एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए पुरअज़्म है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है।
2: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं।
1: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम पनघट।

0: गंगा, अरे ओ गंगा, अरे हम तुझसे कहा राम राम।
1: राम राम जया बहनी, और पनघर सुने बैठी सब बहनी हरण के गंगा और
0: जया के
1: राम राम, राम। और बताओ जया बहनी, का हाल चाल बा घरे द्वारे के?
0: देखा गंगा, घरे द्वारे के हाल चाल तो बिल्कुल बढ़िया है, पर आज जब हम आवत रहे पनघटे पे, तो हम एक बात ये सोचत रहे कि आज जाप तो गंगा से मिलब। अपन घटे पे देखा अक्सर का होता है कि जब हम आई थी तो हमार कोनो न कोनो बहनी हरिन रहा थी,
1: और
0: देखा जब गंगा हम हुआ से आवत रहे तो हमका देखा आज गंगा से मिलब, अपने दिल की सब बात कर।
1: और सखी सहेलिन जब मिल के बतिया थी ना, उनका बातें कुछ अलग होते।
0: बिल्कुल। और देखा जब बात सखी सहेली की करूँ तो आज हमार मन में एक विषय है, वो है जो ने मित्रता सच्ची पूंजी।
1: अरे वाह,
0: तो कस्ता आज ए पे बात किया जाए।
1: बिल्कुल, देखा ये तो ऐसन मतलब ऐसन विषय है कि ऐसे तो एकदम सुन के मन देखा खुश हो गया। देखा एक ना कोनो मूल्य होते ना कोनो कीमत होते दोस्ती के, फिर भी ओकर मौजूदगी हमने अपने जिंदगी के अनमोल बनाए देते।
0: बिल्कुल सही।
1: और रिश्ता का है मित्रता के, कहा थे कि रिश्ता तो बहुत मिला था जिंदगी में, लेकिन दोस्त वह होते जो रिश्तन के भीड़ में आपन बन के खड़ा रहा था।
0: बिल्कुल सही। और देखा जब बात दोस्त की है या मित्र की है, तो देखा जीवन में हमार साम मतलब हम खुद ये सोची थी कि जीवन में धन दौलत होए, सुख सुविधा होए, चाहे जितनी पद प्रतिष्ठा होए, हाँ बहुत कुछ होए, पर देखा सच्चा मित्र से बढ़कर कुछ नहीं है। तो और एक

0: के सबसे बड़ा उदाहरण देखा श्री कृष्ण और सुदामा
1: सुदामा के
0: है ना।
1: दोस्ती है
0: और
1: बिल्कुल।
0: देखा कितना धन वैभव के बाद भी श्री कृष्ण सुदामा का कितनी मतलब सरलता से एकदम आराम से उनका जो है मित्र के रूप में कैसे कितने साल बाद मिले और एक पल के लिए उनका मतलब ये महसूस नहीं हुए दिए कि
1: हाँ
0: देखा हम तो उनका भूल गए
1: बिल्कुल, देखा
0: रहे
1: सही कहूँ कि खाली साथ घूमे हंसे और बात करे के नाम ना हो, मित्रता तो विश्वास के नाम है, जहाँ शब्द की जरूरत ना पड़त,
0: बिल्कुल
1: जहाँ आंख देख के हाल समझ लिया जाते,
0: बिल्कुल
1: जैसे कृष्ण भगवान सुदामा के देख के समझ लिए।
0: बिल्कुल। देखा जब बात मित्रता की होत है तो देखा आज हम अपने पनघट की बहनी लोगन का भी याद करब कि देखा जब जब हम अपने पनघटे पे आई थी अपनी बहनी लोगन से मिली थी, देखा
1: हाँ
0: जिनसे मिल रही थी तो उनसे तो दिल बात कह के मन हल्का हो
1: हल्का
0: जाता
1: हो
0: है,
1: जाता
0: पर
1: बिल्कुल।
0: देखा जिनसे नहीं मिल पाई उन्हों के लिए आज ही संदेश है पनघट के माध्यम से, हम सबका याद करी थी तहे दिल से उन सबके लिए मित्रता दिवस मतलब मित्रता के
1: मित्रता के मतलब सब हमार बहनी अरन दोस्त मित्र ही हैं,
0: हाँ। और
1: तो वो
0: देखा
1: सब अपन ख्याल रखे, उनके सबके साथ है, हम सब अपन खुशी बांटी थे, दुख बांटी थे, प्यार बांटी थे और जानकारी भी दी थे।
0: तो गंगा एक के साथ साथ देखा आज बहनी लोगन के बारे में जो ने एक बात और हम करब चाहब कि देखा जब हमार बहनी रन जब मतलब गर्भवती होते हैं तो देखा उनकी देखभाल जो ने करब काफ़ी आवश्यक हो जाता है, और
1: बिल्कुल
0: ऐसे में जब उनकी देखभाल की बात आवती है तो अक्सर कहा होता है कि देखा वो ऐसी स्थिति में होते हैं कि कोनू उनकी खुद देखभाल करे, तो देखा कैसे वो खुद ऐसी स्थिति में ना ही होते हैं कि वो अपन ध्यान रख लें।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बनी। देखा गर्भावस्था कौनो भी महिला के जीवन के एक बड़ा खुशनुमा दौर होता है ना,
0: बिल्कुल
1: तो ये दौरान उनके शरीर में एक नए जीवन के विकास होते हैं, ये समय जो खुशी उम्मीद और उत्साह से भरा होता है उनके मन ना। लेकिन एकरे साथ ही महिला के अतिरिक्त देखभाल, प्यार और सही स्वास्थ्य सेवा की भी जरूरत हो, जैसे अभी कहूँ।
0: बिल्कुल। और देखा जब उनके बात शरीर की बात होती है तो देखा इस समय जो ने जो ना हमारे बहनी लोग हैं उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा जो ने मतलब काफ़ी इसे उनके शरीर में मतलब काफ़ी
1: कुछ ना
0: अंतर
1: कुछ
0: आवत
1: कुछ
0: है।
1: हाँ बिल्कुल, कुछ ना
0: तो
1: कुछ रोज उनका कुछ अलग लागे।
0: बदलाव होता
1: बिल्कुल
0: तो देखा
1: बिल्कुल
0: उन बदलाव के साथ साथ उनका देखा अपन जो ने मन की बात कहब भी आवश्यक हो जाते कि देखा कोनो होए जैसे अपनी मन की बात कहें
1: बात कह
0: और
1: सके।
0: या कोनो सुन ले। तो सबसे पहले तो अगर बात किया जाए गंगा की उनकी देखभाल की, तो देखभाल के माँ सबसे बड़ी बात जो सामने आवा थी वही है कि देखा वो अपन खान पान का विशेष ध्यान रखें।
1: हाँ
0: तो
1: अक्सर देखा सब ये कहा था कि बहनी देखा अब तोरे दुई जीव पलट बार, तो
0: हाँ
1: दो दुई जीव के ख्याल रखे एक बार, तो खाना सही से खा, मतलब आराम सही से करा, ध्यान रखा अपन।
0: बिल्कुल
1: लेकिन इतने काफी ना हमें लागत है, गर्भवती महिला की देखभाल के मतलब है कि ओकरे खान पान, स्वास्थ्य, आराम और मानसिक स्थिति और नियमित जांच सबके ध्यान रखे के
0: सबके
1: चाहिए।
0: ध्यान रखे का चाहिए। और देखा अक्सर कहा होता है कि ये समय ना सब कुछ खाए के मन भी नहीं होता है ना,
1: हाँ
0: कभू लगा थे
1: हाँ
0: कि चला
1: कभी कुछ
0: ई
1: खाए
0: कभू
1: के मन
0: चटपटा मन
1: है
0: करी तो कभू लगा
1: कभी
0: कि एकदम
1: मीठा हाँ
0: सादा कभू मीठा। तो देखा ऐसे में जो उन्हें खान पान के विशेष ध्यान रखा जरूरी है, पर देखा खान पान ऐसा हो कि चूंकि कहा जाता है कि थोड़ा सुपाच्य होए का चाहिए
1: हाँ
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: देखा इतने समय जो उन्हें जितने कैल्शियम है ना
1: हाँ
0: आयरन आयरन है जो
1: बिल्कुल,
0: उन्हें
1: जितनी पोषण वाली चीजें हैं इन सब दे के चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: जो
0: और
1: उनकी
0: देखा
1: जच्चा बच्चा दोनों के लिए
0: हाँ
1: उचित होए।
0: तो देखा जो ने सारी जो ने अपन जो खान पान है उसमें सब कुछ शामिल करें, थोड़ा थोड़ा सब कुछ रहे, देखा
1: बिल्कुल
0: सलाद भी रहे, थोड़ी दाल भी रहे, चावल भी रहे और घर का सादा खाना रहे तो ज़्यादा अच्छा
1: ज्यादा
0: है
1: अच्छा
0: ना।
1: है
0: और
1: बिल्कुल।
0: देखा हो सके तो देखा जो हम सब लोगन का सामान्य रूप से जो ने ऋतु की चीज़ें हैं वो हम मतलब बहनी लोगन खाएं, ऐसे
1: हर
0: बाहर
1: मौसम
0: के
1: के
0: हर
1: हिसाब की
0: मौसम के हिसाब
1: चीज
0: से अपन
1: बिल्कुल
0: खान पान रखें। देखा अक्सर देखा एक ही समय तो निश्चित नहीं होता कब हो, देखा कोनों का सर्दी देखा गर्भवती होती है माँ बहनियरन का वो देखा जो ने गर्मी के मौसम
1: गर्मी
0: तो ओके
1: बरसात, तो हर
0: हिसाब
1: मौसम के
0: से
1: हिसाब से
0: हाँ
1: फल
0: अपन
1: सब्जी
0: खान
1: के
0: पान
1: सेवन
0: रखें।
1: करें।
0: बिल्कुल
1: तो देखा गर्भावस्था की शुरुआत से देखभाल करे के लिए कुछ बात जरूरी बा, जैसे कि देखा गर्भावस्था की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य केंद्र पे पंजीकरण करावा,
0: बिल्कुल
1: और जैसे बहनी हरण के पता चले कि वो गर्भवती हैं या तो डॉक्टर के, नर्स या फिर आशा कार्यकर्ता देखा होथिन अपने सबके यहाँ, तो उनसे संपर्क जरूर।

0: हाँ बिल्कुल।
1: चाहिए। हाँ कई बार देखा बनियारन सोचा थे कि अभी तो कोनो परेशानी ना है ना, बाद में जांच कराए ले। लेकिन नियमित जांच से माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पे नजर रखने में मदद मिला था।
0: बिल्कुल सही।
1: और देखा स्वास्थ्य कर्मी गर्भावस्था की अवधि के अनुसार रक्तचाप, वजन, खून की जांच, पेशाब की जांच और अन्य जरूरी परीक्षण की सलाह देते हैं, जो उनकी बहुत जरूरी बा यही समय में।
0: और देखा जो उन्हें डॉक्टर से भी सलाह लेते रहें, जाएं उनका दिखावे बारी बारी से, ऐसा नहीं कि घर पर ही सारी देखभाल होए। कैसे देखा, जब हमारे शरीर में कोनो चीज़ की कमी होती है तो हमारे जो जो डॉक्टर होते हैं वो हमका बतावत है कि भाई हमका ये चीज़ की अब आवश्यकता है। और देखा समय समय पे जो उन्हें डॉक्टर का दिखाव जरूरी है। कैसे वो आपका सब बताइए कि देखा आपके आहार में का होए का चाहिए, कौन तरह का जो उन्हें कोनो, अगर देखा कहा जाता है कि अगर विशेष कोनो और बात है तो वो भी वो आपका समझाइए बताइए, समय समय पे जांच के बारे में बताइए, है ना, हर चीज वो आपका सही समय पे सही जानकारी देंगे।
1: बिल्कुल, जैसे अभी बताओ कि भूख कम लागत है तो एक बार में ज़्यादा खाना हो ना पाओ तो थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खात रहे होंगे,
0: बिल्कुल।
1: और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से सब कुछ करत रहे, अपने मन से कुछ भी ना करें। कहें से कि ये ऐसी चीज होता है कि ऐसे आदमी के जिंदगी भर के खुशी जुड़ी रहा थे।
0: बिल्कुल।
1: और सबसे बड़ी चीज़ कि हमें परिवार के साथ बहुत ज़रूरत होते है। अगर अकेली बैठे महिला तो वो सौ तरीके के बात सोचत बा, और उन्हीं में अगर मतलब सास व ननद व देवरानी जेठानी या मतलब महतारी बहन सब हैं तो कुछ ना कुछ बतियाए कि उनका मन भी सही किए रही हैं और उनका खुद अच्छा लगे और जच्चा बच्चा दोनों ही खुश और स्वस्थ रही हैं।
0: बिल्कुल सही। और देखा जब खुशी की बात करो तो कस ना आप हम लोग भी थोड़ा सा गम नहीं सुन के खुश हो लिया जाए।
1: बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ चला सुना जाए, बहनी अरुण भी सुनाए
0: तो चला सुनावा जाए, सुनावती अनुराधा बहनी चला सुना सुना जाए झूमर।

0: गंगा
1: हाँ बहनी
0: देखा कितना अच्छा झूमर रहा, सुन के मन खुश है हुआ।
1: बिल्कुल, देखा बातचीत होत रहा था, जानकारी वाली बात भी होते, गीत गाने भी होत रहा था, तो पनघटे पर रंगत बनी रहा था ना।
0: हाँ और देखा गाना जब बज जाते तो
1: हाँ
0: ओके बाद जैसे पनघट के एकदम जो है बदल जाते
1: एकदम, देखा
0: है ना।
1: शुरुआत हो जाते बढ़िया एकदम। तो देखा गीत गाने के बाद अब एक ठो समय बाद बातचीत के, है ना, ग्रामीण महिलाओं की बदलती सोच और नया भारत, ये पे डॉक्टर संजू मिश्रा बहनी से रोशनी बंसल बहनी बात किए हैं, तो चलो सुना जाए और बहनी हरन भी सुनाए।

0: सिर्फ चार दीवारी, जो कहते थे ना कि घर की चार दीवारी में बंद, चूल्हा चौका किचन, इससे आगे उनकी कोई दुनिया नहीं है, ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्र की, समाज की, निर्माण की मुख्य धारा में वो अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं यही एक नई सोच की दिशा देती है ग्रामीण महिलाओं की
1: बिल्कुल
0: बदलती सोच को।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बात करें ग्रामीण महिलाओं की दृष्टि से, अगर हम देखें तो
0: हाँ
1: पारंपरिक सोच
0: हाँ
1: बनाम आधुनिक
0: हाँ
1: सोच,
0: हाँ
1: दोनों में आप क्या अंतर देखती हैं?
0: देखिए, परंपराओं से ही आधुनिकता आती है। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी परंपरा से दूर चले जाएं तो कहीं ना कहीं हम आधुनिक नहीं कहलाएंगे। एक
1: बिल्कुल
0: कहा जाता है ना कि जुड़े रहिए संस्कारों से, आज़ाद रहिए ख्यालों से या विचारों से। तो हम अगर अपने संस्कारों से जुड़े रहेंगे तभी हम आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़
1: आगे आ
0: पाएंगे।
1: पाएंगे। बिल्कुल
0: तो अतीत में ये था कि ग्राम, जो हमारा भूतकाल था, या हम कहते हैं पिछले समय में, जो ग्रामीण महिलाओं की जो पहचान थी वो एक माँ, पत्नी, गृहिणी के रूप में थी। हम सभी कहीं ना कहीं महिलाएं हैं और सौभाग्य से हम विवाहित महिलाएं हैं, तो हम लोग घूंघट प्रथा जानते हैं। नई शादी होती, घूंघट में दुल्हन आती है। पहले की ग्रामीण समाज में शिक्षा को भी उतना महत्व नहीं दिया जाता था, पुरुषों पर उनकी आर्थिक निर्भरता उनकी एक मजबूरी भी मानी जाती थी। लेकिन आज की ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है उसके प्रति वो सचेत हो चुकी हैं। अब वो जो हैं अपनी बेटियों को खुद पढ़ाने के लिए, खुद पढ़ती भी हैं और पढ़ाती भी हैं, उनको रोजगार शुरू करने के लिए, चाहे वो घर में ही रह के कुछ स्टार्टअप करना हो, उसके प्रति भी वो मोटिवेट करती हैं। और साथ ही साथ पारिवारिक निर्णयों में भी अपनी राय रखती हैं, बच्ची को क्या बनना है इसके बारे में भी अब चर्चाएं गांव के परिवारों में होने लगी हैं, महिलाएं अपनी राय देती हैं। तो ये एक मानसिक जो बदलाव आ रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत की और ग्रामीण महिलाओं की एक ताकत बन रही है।
1: ये तो बात ठीक है कि एक बदलाव आ रहा है, लेकिन इस सोच के
0: हाँ
1: बदले सोच
0: हाँ
1: के
0: हाँ हाँ हाँ
1: बदलने के
0: हाँ
1: पीछे का क्या
0: हाँ
1: कारण है?
0: देखिए, निश्चित ही सबसे पहले जो कारण जाता है, शिक्षा। शिक्षा बदलाव का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। मैं अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भारत के जाऊं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, तो आप समझ सकती हैं वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत ही सशक्त थी। आप कई तरह की महिलाओं के, आप देखिए विदुषी महिलाएं, गार्गी, अपाला, घोषा, रोमशा,
1: कई कई ग्रंथों की
0: कई
1: रचना
0: कई
1: कर डाली
0: ये
1: उन्होंने।
0: सब सभा समितियों में प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट करती थी, अपने विचारों को रखती थी। तो ये कहीं ना कहीं वैदिक समाज में जो महिलाओं की उनकी स्थिति थी वो काफी उन्नत थी,
1: बिल्कुल
0: और ये समय के साथ थोड़ा मध्यकाल में महिलाओं की जो स्थिति हुई है वो थोड़ा सा गिरी है। लेकिन निश्चित ही शिक्षा हमेशा से बदलाव का मुख्य कारण रहा है। लेकिन आज गांव में प्राथमिक और उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ चुकी है, बच्चियां स्कूल जा रही हैं, उनको भेजा भी जा रहा है कि तुम्हें जाना है बेटा, शिक्षा लेनी है तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, इस बात के साथ उनको जागरूक बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जब शिक्षा जब आती है तो बच्चियों की तार्किक क्षमता और उनका आत्मविश्वास वो बढ़ता है, उसका विकास होता है, और जब ये चीज विकसित होगी तो निश्चित ही सोच पर असर आना ही आना
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल। नए भारत के निर्माण में
0: हाँ
1: ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को आप किस प्रकार देख?
0: देखिए, कई तरीके के रोल हम प्ले कर सकते हैं। इसके पहले जो आपने कभी प्रश्न पूछा ना, जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक आत्मनिर्भरता और तकनीकी का जो एक पॉइंट था वो मैं भूल गई। आज उनकी बदलती सोच में तकनीक ने भी एक बहुत बड़ी
1: जी
0: भूमिका,
1: बिल्कुल।
0: रोशनी जी, निभाई है। इससे हम अछूते नहीं हैं और हम उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, इनकी जो पहुँच है वो अब ग्रामीण समाज तक पर्याप्त रूप से पहुँच रही है।
1: क्योंकि
0: और
1: शिक्षा जो एक वक्त में काफी महंगी हुआ करती थी, वो
0: हाँ,
1: इन तकनीकों के जरिए
0: के
1: उन तक
0: जरिए
1: आसानी से
0: आप
1: और फ्री
0: सपोज
1: में
0: करिए,
1: पहुंच
0: मान
1: पा रही।
0: लीजिए एक बच्ची है, उसको स्कूल नहीं भी जाने दिया गया, वो अगर घर पे फोन भी चला ले रही है तो यूट्यूब है, गूगल है, सोशल मीडिया, इन सब के माध्यम से वो कुछ भी अगर सर्च करती है तो उसको
1: जानकारी
0: एट वन टच सारी
1: बिल्कुल
0: चीज़ें मिल रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये एक बहुत पॉइंट इम्पॉर्टेंट था जो मैं भूल गई। और दूसरा, आपका जो नए भारत के निर्माण में
1: ग्रामीण
0: ग्रामीण
1: महिलाओं की
0: महिलाओं
1: भी
0: की जो भूमिका है वो कई क्षेत्रों में वो दे रही, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो उनका, चाहे वो सरकारी योजनाएं हैं, कई तरीके की है। जैसे कृषि की अगर मैं बात करूं तो परंपरागत रूप से कृषि अगर देखा जाए

0: तो वो मजदूरी करने वाली महिलाएं जो हैं वो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं। आप देखिए, पहले वो ईंट ढोती थी, अब वो चीज तो वो कर ही रही हैं, लेकिन वो फार्मिंग के क्षेत्र में भी आ गई। ट्रैक्टर्स चला रही हैं बड़े बड़े
1: बिल्कुल
0: खेतों में,
1: बिल्कुल
0: अपने उनके बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं जहां पर वो खुद एट वन विमेन आर्मी, आप कह सकते, पहले वन मैन आर्मी होता था, अब वन विमेन आर्मी है जो वो सारी चीजों को खुद ही सारा मैनेजमेंट वहां का वो संभाल रही है। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ एक डेयरी प्रोडक्ट्स,
1: बिल्कुल
0: डेयरी मैनेजमेंट भी वो खुद ही कर रही है। और इसमें मैं कुछ राज्यों के भी नाम लेना चाहूँगी, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, हमारा उत्तराखंड है, और जितने भी ये हिमाचल प्रदेश हो, आप जैसे से पहाड़ी इलाकों में जाएंगी आप देखिए वहां पर सिर्फ महिलाएं वो आपको दिखाई पड़ती हैं, जो चाहे वो घर में भी काम कर रही हैं, 2 मिनट में वो खेतों में भी दिखाई पड़ रही हैं, तीसरे मिनट में वो दुकान पे भी दिखाई
1: बिल्कुल
0: पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं पुरुष सत्तात्मक जो ये समाज है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने चुनौती दी
1: दिया है,
0: है, और वो चुनौती अब स्वीकार भी की जा
1: की जा
0: रही
1: रही है
0: है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसी के साथ साथ आप देखिए, गांवों की महिलाएं जो हैं वो अब छोटे छोटे गृह उद्योग भी चला रही हैं। अब चाहे वो सिलाई हो, अचार का जो उनका फील्ड है, या जो उनके हस्तशिल्प हैं उसमें भी। इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको कहूँगी कि ग्रामीण महिलाओं की भूमिकाओं को अच्छा करने के लिए भारत सरकार ने भी कई सारी योजनाएं चलाई हैं। आपने लखपति दीदी का एक
1: जी
0: नाम
1: जी
0: सुना होगा, उसमें वो इस तरीके की ये पहल है भारत सरकार की, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वयं सहायता समूह हैं उनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं उनकी वार्षिक पारिवारिक आय को बढ़ाकर कम से कम 1 लाख तक ले जाना। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि महिलाएं खुद तो अपना विकास करने की दिशा में प्रयासरत हैं ही, सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि ग्रामीण महिलाओं की उन्नति हो सके, उनकी दिशा दशा बदली जा सके। और इसी के साथ साथ जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, डिजिटल योजनाएं हैं, उनके तहत भी महिलाओं को काफी आर्थिक और वित्तीय सहायता देके उनकी भूमिका को बदलने का प्रयास किया जा रहा है आज के
1: तो
0: समय
1: अंत में एक
0: में।
1: सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो इनकी सोच बदल रही है, इसका परिणाम क्या होगा समाज के प्रति? सकारात्मक, नकारात्मक, किस रूप में ये सोच? क्योंकि भाई सबके हाथों में मोबाइल फोन है
0: हाँ,
1: और हम वहां पर एक छटनी या कोई फिल्टर तो लगा
0: नहीं
1: नहीं है,
0: नहीं
1: तो
0: बिल्कुल
1: वैसे में ये
0: सहमत
1: ग्रामीण
0: हूँ।
1: महिला जो
0: हाँ
1: शुरू से
0: हाँ
1: शिक्षा से बहुत परिचित नहीं रही हैं,
0: हाँ हाँ
1: वैसे में ये कैसे उस फिल्टर का इस्तेमाल करेंगी, अपनी चेतना का इस्तेमाल करके और अपनी बदलती सोच को एक सही रास्ते पर ले जा पाएंगी?
0: देखिए, चुनौतियां तो हैं आज भी, इससे हम मना नहीं कर सकते। ये नहीं कहा जा सकता कि दिशा और दशा पूरी तरह से बदल चुकी है, लेकिन चुनौतियां जो आज भी बरकरार रही, हम पहले उनकी बात कर लें कि सकारात्मक जो बदलाव हुए उनके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पितृसत्तात्मक सोच है, डिजिटल साक्षरता की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव भी है, और जैसे अधिकारों की भी जो असमानता है उसकी भी चुनौतियां मजबूत हैं, अभी भी मौजूद हैं।
1: बिल्कुल
0: और इन्हें पूरी तरह से समाप्त किए बिना हम अगर ये कहें नए भारत की जो परिकल्पना है वो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो ग्रामीण महिलाओं की सोच है वो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तिगत विकास की कहानी नहीं है, ये एक पूरी सामाजिक क्रांति, ये एक पूरी चेन है,
1: बिल्कुल
0: पूरा एक आप कहिए कड़ी पे कड़ी जुड़ी हुई है। तो जब एक ग्रामीण महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार और अंततः पूरा गांव प्रगति करता है। तो इसमें यही कहा जा सकता है कि आप जो मैंने मूल कारण बताया सोच का, शिक्षा पर ही अगर प्रहार किया जाए, शिक्षा पर ही कार्य किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो सोच बदलती जाएगी। एक महिला पढ़ेगी, दूसरे को पढ़ाएगी, तीसरी को बताएगी, तो ये एक चेन बनेगी कहीं ना कहीं, जिससे पूरा परिवार और पूरे परिवार के साथ, एक गांव में जैसे 10 परिवार हैं और दसों परिवार की महिलाएं पढ़ेंगी, तो वो पूरा गांव जो है वो कहीं ना कहीं प्रगति के रास्ते पर
1: बिल्कुल
0: आ जाएगा। और नया भारत तभी आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगा जब देश की ग्रामीण नारी पूरी तरह से आत्मनिर्भर, शिक्षित और जागरूक होगी।
1: डॉक्टर
0: तो
1: संजू मिश्रा
0: कहीं
1: जी,
0: ना कहीं
1: आपका
0: एक चीज़ और मैं जोड़ूंगी कि आज की जो ग्रामीण महिला है वो बदलाव की मूक दर्शक नहीं है, बल्कि नए भारत की नई सोच की मार्गदर्शक भी है।
1: तो इसी मैसेज के साथ संजू मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस खास विषय पर आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए उपस्थित हुई।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: रोशनी जी, धन्यवाद।
2: गंगा,
0: हाँ बहनी,
2: देखा संजू मिश्रा बहनी से रोशनी बंसल जी की कितनी अच्छी बात रही, और ना
0: बिल्कुल
2: कितना अच्छा से बतियाए कि देखा जो हमारे बहनी लोगन है, देखा अब वो कितना बदल रही है।
0: बिल्कुल बदल भी रही हैं और समाज में बदलाव भी

0: दयावत है, है
1: बिल्कुल।
0: ना,
1: और देखा ये जरूरी भी रहा
0: बहुत
1: है ना।
0: जरूरी रहा। पहले देखा घरे में बैठी है, इन कुछ उनका मतलब ना है ना, जो इन करे वो बाहर पुरुष करे, लेकिन अब ऐसा बात ना है ना, अब वो घर भी संभालत है, इन खेत भी संभालत है, इन बिजनेस भी संभालत
1: बाहर भी
0: है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही।
0: तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आज के समय ये बदलाव होत बा।
1: तो देखा जब ये बदलाव की बात किया हुआ, तो अब कसना एक और बदलाव किया जाए कि एक लोक गीत सुना जाए।
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल,
1: चला
0: चलो
1: सुना
0: सुना
1: जाए
0: जाए
1: झूमर और सुनावती अनुराधा।
0: बहनी।

0: कितना अच्छा गीत रहा ना।
1: बिल्कुल, हम तो ये कहा कि खाली झुमबे करबो कि कुछ खाए पिए के चीज भी पनघटे पे लेबो, इतना बढ़िया गीत सुन के।
0: हाँ देखा, सही कहो कि देखा बातचीत भी हो गई, देखा गाना वाना भी हो गया, तो कस ना अब रसोईया चला जाए। और देखा आज रसोईया जाने तो बहुत स्वादिष्ट और जो है पौष्टिक चीज है आज हम तोरे लिए लेके आए। और देखा वो है कच्चे पपीते के कोफ्ते।
1: अरे वाह, सुनते मुँह में पानी आएंगे।
0: और देखा इतनी समय जो है पपीता देखा बाजार में खूब मिला थे ना।
1: हाँ, बिल्कुल
0: कच्चा पपीता। तो देखा कच्चे पपीते के जो उन कोफ्ता होते हैं स्वादिष्ट तो होते हैं, पौष्टिक भी होते हैं और एक बनाओ भी बड़ा आसान है। तो देखा बनावे के लिए सबसे पहले तो हम लोगन का चाहिए कि जो ने पपीता है उसका धोए ले।
1: अच्छा,
0: धोए के ओके छिलका उतार के जो ने ओका जो ने कद्दूकस कर ले। कद्दूकस करके जब हम एक कद्दूकस करब तो देखा में थोड़ा पानी आ जाते हैं। तो वो पानी का दोनों हाथ से मतलब दबाए के खूब निकाल ले एक कोनो बर्तन में। ठीक है, ओका निकाले के बाद जो ने एक दूसरे बर्तन में ओका पलट ले। पलटे के बाद देखा जितना कम से कम हो सके धीरे धीरे ओमा जो है बेसन डाला जा।
1: अच्छा,
0: धीरे धीरे डाला एकदम से जो ने फिर ज्यादा भी हो सके थे बेसन और जो ने पानी भी छोड़ सके, तो धीरे धीरे जितनी जरूरत है थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के उका इतना मतलब ऐसे बनाएला कि उके पकौड़ी अच्छी बन जाए।
1: हाँ, इतना सूख जाए,
0: इतना सूख ले वो। हाँ, है ना। देखा कोफ्ते की जो उनका पकौड़ी होते ना गोल गोल बना थे।
1: हाँ,
0: तो इतना बेसन हुए और ज्यादा भी ना रखा, नहीं बेसन है बेसन लगी फिर पपीते का स्वाद ना आई। और मैं थोड़ा सा हींग डालला, हल्का सा नमक डालला। तो एक डाल के खूब अच्छे से जो ने खूब बढ़िया से फेट लिया क्या जो ने बेसन का। और ओके बाद जो ने खूब अच्छे से कढ़ैया चढ़ावा, कढ़ैया में तेल डाल के पकौड़ी बनाए ला। ठीक है, देखा जब पकौड़ी बन के तैयार हो गए तो एक ही जो रसा है ओका देखा ओके लिए जो ने जो मसाला तैयार हुई ओमा जो ने प्याज है, लहसुन है, अदरक है, मिर्चा है, थोड़े से खड़े मसाले
1: जो सब्जी में पड़ा
0: जो सब्जी में पड़ा थे ओका सब पीस ला। और पीसे के बाद जो ने एक जो ने कढ़ैया में तेल डाल के हींग जीरा तेज पत्ता डाल के मसाला जो तैयार किया ओका डाल के थोड़ा सा टमाटर पीस के उमर डाल दो। खूब बढ़िया से जो ने ओके रसा तैयार हो जाए गाढ़ी गाढ़ी सी। ओके बाद जो ने ओका पानी डाल के खौलाए के तब जो उन्हें पपीते की जो उन पकौड़ी बनाए हैं उका डाल के नमक डाल के उका खूब बढ़िया धनिया के साथ परोस के खा।
1: अरे वाह, तो हाँ देखा सुनत सुनत मुँह में पानी आई है। अब हम घरे जाब तो जरूर बनाए वे का। तो और देखा इतना बढ़िया पपीते के कोफ्ता बताओ। अब एक ठो बढ़िया से गीत और होए के चाहिए।
0: देखा तो कब बढ़िया से गीत सुनाई थी। देखा फिल्म है मुगले आजम और जो है आवाज़ है लता मंगेशकर जी की। तो चला सुना जाए,
1: चला सुना जाए बहनी हरण में।

0: कितनी के गीत सुनू ना।
1: हाँ, और देखा लता जी की आवाज में सुन के तो एकदम मन खुश होगा।
0: बिल्कुल एकदम, मैंने देखा जानकारी गीत गो नहीं कुल होत रहा था तो पनघट कितना रौनक बनी रहा था ना। अच्छा ये बताओ, आज हम पनघटे पे आवत रहे तो देखे कि तू खूब एकदम मतलब इतनी थकी रहू है कि काव काव कुछ खरीदे गए रहू का बाजारे में।
1: देखा, थके तो नहीं रहे
0: हाँ
1: पर देखा, हाँ बाजारे में तू हमका देखे हुई हो तो देखा खरीदारी करत रहे, और खरीदारी में देखा इतनी समय जो उन्हें ना हमका ऐसा लगा था कि कुछ जो उन्हें हर जगह थोड़ा कम मतलब दाम में हर चीज मिल जाए
0: बिल्कुल।
1: तो।
0: अच्छा देखा आजकल आंवला वाला एक बार कितना फायदे वाली चीज़, आंवला हल्दी कच्ची और हरी वाली मिर्च जो बड़ी वाली होता है, अच्छा
1: हाँ,
0: ओकर
1: अरे
0: अचार
1: वही
0: कितना
1: ना हम
0: निक
1: लेके
0: होता
1: हुआ
0: है।
1: होके मजो ने पकौड़ा बनावे के लिए।
0: बिल्कुल देखे मजे सामान ले रहे है
1: हाँ
0: तो
1: तो और
0: हम
1: का,
0: कहे कि कितना बढ़िया देखा आजकल इकुल ले ला एक बाटे बनाए के धे दे गदेलन कितना बढ़िया से खाते ना, और
1: हाँ
0: अपनों खूब
1: देखा
0: बढ़िया बने
1: आंवला आवत
0: खाए।
1: है ना ओके, हल्का सा जो ने उकर के
0: हाँ
1: मुरब्बा
0: हाँ
1: बना के रख ला, देख
0: हाँ हाँ
1: कितना
0: कितना बढ़िया
1: स्वादिष्ट और
0: स्वाद
1: देखा हो जो ने पौष्टिक भी है
0: शुद्ध
1: ना।
0: भी रहा था। तो चला अभी ही के साथ है एक ठो ईमेल संदेश सुन लिया जाए।
1: चला सुना जाए।
2: पनघट जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ई हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी है।
1: हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और एमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
0: हमारा ईमेल एड्रेस है
2: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है PANGHATPROGRAMME @gmail.com। पनघट प्रोग्राम @gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
0: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-2550। तो सखियन देर कोने बात के तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़।

0: में रिकॉर्ड करके आपके संदेश के हम सबके बेसब्री से इंतजार रहे।
1: देखा, हम सब लोग पनघटे पे आई थी।
0: हाँ।
1: कितनी अच्छी अच्छी जानकारी अपनी बहनी लोगन का दे थी।
0: बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल।
1: तो हमारे मन में एक बात हमेशा रहती, का बहनी लोगन का हमारे कार्यक्रम में जो भी सुना थी,
0: हाँ?
1: वो उनका भी तो अच्छा लगत हुई ना।
0: बिल्कुल अच्छा लागत हुई
1: है ना।
0: अच्छा लागत है तो प्रतिक्रिया जरूर दे दे वो करें, जिससे हमें सबका भी अच्छा लगे।
1: और का देखा, हम लोगन का कितनी खुशी हुई की देखा आज हमारी कार्यक्रम जो है कितना अच्छा हुआ, हम बहनी रहने से कुछ सीखी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आए के बाद जाए के बंद तो ना हाथ बिल्कुल पनघटे पे से है ना।
1: पर देखा अब जो ने घड़ी इशारा करे थी घर चले के बेला हुई गई है, तो चला बहनी लोगन से राम राम किया जाए।
0: राम
1: राम
0: राम
1: राम बहनी रेन।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम पनघट। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार।

0: 47 runs. Batting first, India posted a commanding 216 for 3 in 20 overs. And India's women's opener, Smriti Mandhana, created history as she became the first cricketer in the world to score 11,000 runs in women's international cricket. Smriti made the record during the Asian Games final against Sri Lanka in Nishin. Mandhana smashed 3 sixes and 3 fours in the first 4 overs to get India off to a blistering start. She surpassed former Indian captain Mithali Raj's record of 10,868 runs across all formats. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Vice President C.P. Radhakrishnan says India International Water Week is a significant platform to bring all stakeholders to deliberate upon challenges of water management. Union Home Minister Amit Shah inaugurates third National Conference of Anti-Narcotics Task Force Heads of States and UTs in New Delhi to deal with drug menace. Government urges bank employees to refrain from resorting to strikes, agrees to keep performance-linked incentive scheme in abeyance. And Indian women's team thrashes Sri Lanka to win gold medal in Asian Games. Opener Smriti Mandhana creates history as she becomes first woman cricketer to complete 11,000 runs in international cricket. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
2: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from All these countries.
1: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन नमा

0: नमामि गंगे जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
1: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
3: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
4: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
3: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार समारोह आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के

0: प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
1: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है, उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
2: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। सिक्किम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
3: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
2: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा कुट्टू भी बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। सिक्किम की तीसरी सबसे बड़ी फसल होने के कारण कुट्टू को GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। समय के साथ और केंद्र सरकार, ICAR, सिक्किम तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग के मजबूत सहयोग से सिक्किम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। गंगटोक से मैं नाग चैटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
5: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। IMD ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण उड़ीसा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज T20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार

0: दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: अपनी गलती स्वीकारना और सुधारना मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है। और अब सुनिए संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: तो हमें पहला संदेश मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू।
0: और तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
2: ग्राम भजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: आप सबके सुंदर संदेशों के लिए एक बार फिर से हमारा आभार। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की दुनिया की कई लोक परंपराओं पर, जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के संदेश छिपे हुए थे। चलिए आज करते हैं थोड़ा सा विषयांतर।
0: जी, थोड़ा सा विषयांतर। श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात करेंगे दुनिया के विभिन्न आविष्कारों की और जानेंगे कि कैसी परिस्थितियों में उनका आविष्कार हुआ।
2: अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सरल, सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे प्यारा वाहन कौन सा है, चलिए मैं आपको एक मजेदार हिंट देती हूँ। ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन,
0: ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन, बिल्कुल सही समझा आपने श्रोताओं, वो है साइकिल। देखिए ना, ना तो पेट्रोल चाहिए, ना डीजल, ना इंजन का शोर और ना प्रदूषण।
2: जी,
0: बस दो पहिए, थोड़ा सा संतुलन और पैरों में ताकत, है ना?
2: लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी प्यारी साइकिल की कहानी है आज से लगभग 200 साल से भी अधिक पुरानी। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 200 वर्ष पीछे 1817 के जर्मनी में। बता दें कि दुनिया में आने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन थे घोड़ा और घोड़ा गाड़ी।
0: लेकिन श्रोताओं, 1815 की बात है, एक भयंकर वैश्विक घटना हुई और वो थी इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट। इसके प्रदूषण से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम और फसलों पर बुरा असर पड़ा और इसके कारण घोड़ों के लिए चारा भी महंगा और दुर्लभ हो गया।
2: ऐसे समय में जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल वॉन ड्राइस ने सोचा, क्या ऐसा कोई वाहन बनाया जा सकता है जिसे इंसान खुद चला सके और जिसके लिए घोड़े की जरूरत न पड़े। उसने बहुत शोध किए, नवाचार किया और फिर परिणाम स्वरूप सामने आया एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन।
0: जी, एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन। पता है श्रोताओं कैसा था वो वाहन? सचमुच अजीबो गरीब। एक लकड़ी के फ्रेम में आगे पीछे दो पहिए

0: लगा दिए गए और लकड़ी के फ्रेम के ऊपर वाले डंडे में बैठने के लिए एक छोटी सी सीट लगा दी गई।
1: न उसमें पैडल थे, न चेन, न ब्रेक। सवार उस पर बैठता और अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ता। सामने कोई आता तो चीखता, हटिए सामने से,
0: हटिए सामने से। खैर श्रोताओं, इसके द्वारा मनुष्य ने धीरे धीरे संतुलन बनाना सीखा। धीरे धीरे वो ढलानों में पांव साइकिल के फ्रेम पर रख लेता और दूर तक लुढ़कता चला जाता।
1: जी,
0: तो इसे जर्मन भाषा में कहा गया ड्राइजीन, जिसका अर्थ होता है मूविंग मशीन।
1: तो साथियों, आज की साइकिल का पहला रूप ऐसा था जिसे चलाने के लिए पैडल ही नहीं थे।
0: जरा सोचिए, साइकिल पर बैठे हैं और पैर जमीन पर, धक्का दिया और चल पड़े।
1: जी,
0: यानी एक तरह से कह सकते हैं पैदल चलते हुए वाहन चलाना, है ना मजेदार बात।
1: बिल्कुल, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय आगे बढ़ा और कुछ और आविष्कारकों ने इस दोपहिया मशीन में बदलाव शुरू किए। 1860 के दशक में फ्रांस में पियरे और अर्नेस्ट मिचॉक्स ने पहिए में पैडल लगाने का महत्वपूर्ण प्रयोग किया।
0: आशुताओं, इसके बाद अब सवार को बार बार जमीन पर पैर मारने की जरूरत नहीं थी।
1: जी,
0: पैडल घुमाइए और पहिया घूमने लगता।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इस दौर की साइकिलें आज की साइकिलों से काफी अलग थी।
1: जी,
0: इनमें आगे का पहिया बहुत बड़ा होता था और पीछे का पहिया छोटा।
1: और फिर आया वो बदलाव जिसने साइकिल को आम लोगों के लिए कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया। 1880 के दशक में विकसित हुई एक और साइकिल, इसमें दो लगभग समान आकार के पहिए थे, पैडल चेन से जुड़े थे और सवार अपेक्षाकृत नीचे बैठता था। यही वो डिजाइन था जिसने आधुनिक साइकिल की नींव को मजबूत किया।
0: तो श्रोताओं, फिर धीरे धीरे साइकिल सिर्फ एक वाहन ही नहीं रही, ये स्वतंत्रता का प्रतीक बनी।
1: जी,
0: यूरोप और अमेरिका में लोग साइकिल से काम पर जाने लगे। महिलाओं के लिए भी साइकिल ने सामाजिक स्वतंत्रता के नए रास्ते खोले। लंबी दूरी तय करना आसान हुआ और लोगों की दुनिया जैसे थोड़ी बड़ी हो गई।
1: और फिर साइकिल 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, यानी 1880 से 1890 के दशक में भारत में पहुंची और धीरे धीरे शहरों और गांवों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ समय तक स्कूटर और बाइक के आने से इसकी लोकप्रियता थोड़ी जरूर कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि ये जरूरत की सवारी तो थी ही, अब सेहत के लिए भी जरूरी सवारी बन गई है।
0: जी, ये जरूरत की सवारी तो थी ही, लेकिन अब
1: सेहत के लिए जरूरी सवारी बन गई है।
0: तो साथियों, आज साइकिल कई नए नए रूपों में हमारे सामने है। अब बैटरी की मदद से लोग लंबी दूरी भी आसानी से तय कर रहे हैं।
1: जी,
0: मैं तो यही कहूंगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिंदगी चलने का नाम है।
1: चलते रहिए, अपने अपनों को आवाज लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
0: तो साथियों, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी सबकी प्यारी साइकिल के बारे में। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के माध्यम से बच्चों को हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये संदेश दिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए बच्चों को खेलना कूदना बहुत जरूरी है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़।

0: ना
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना
0: या हंस हंस के बातें करना
1: या हंस हंस के बातें करना
0: जब अंधेरा होने लगता
1: जब अंधेरा होने लगता
0: सबको कुछ डर लगने लगता
1: सबको कुछ डर लगने लगता
0: तब हम घर को वापस आते
1: तब हम घर को वापस आते
0: कल खेलेंगे यह कह जाते
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम संध्या गीत। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं एक अंग्रेजी का सुंदर गीत और इसका शीर्षक है इफ यू आर हैप्पी।
2: गतिविधि आधारित इस गीत में भिन्न भिन्न शारीरिक भाव भंगिमाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। बच्चों को इस गीत के द्वारा कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

0: और अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है चतुर मूर्ख।
1: ये कार्यक्रम एक हास्य प्रधान कहानी पर आधारित है जिसमें एक मूर्ख को बुद्धिमान समझ लिया जाता है और जब धीरे धीरे उसकी कलाई खुलने लगती है तो लोग समझ जाते हैं कि किसी के बारे में कोई राय तुरंत नहीं बनानी चाहिए।
0: चतुर मूर्ख।
2: तीन मूर्ख थे, वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही रात हो गई। वे पास के एक गांव में रुक गए। उन्हें भूख भी लगी थी। मांगने पर उन्हें गांव में एक घर से चावल मिला, दूसरे घर से दूध मिला, तीसरे घर से चीनी भी मिल गई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई। भर पेट खाने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। बची हुई खीर कौन खाएगा? इस बात पर बहस छिड़ गई। बहस के बाद तय हुआ कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। तीनों लेट गए। वे आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। दो तो जल्दी सो गए। तीसरे को नींद न आई। वो सोचता रहा।
3: कौन सा सपना देखूं जिससे खीर मिले।
2: धीरे धीरे सवेरा होने लगा। न तो वो सोया और न ही उसने कोई सपना देखा, लेकिन वो चतुर था। वो चुपके से उठा और सारी खीर खा गया। खीर खा लेने पर उसे झटपट नींद आ गई। दोनों मूर्ख बड़े सवेरे ही जाग गए। उनके दिमाग में सपने की बात ही बार बार आ रही थी। उन्होंने तीसरे को भी जगाया।
4: अरे उठो, अरे उठो, उठो, अरे उठो,
5: उठो, उठो,
4: अरे उठो।
2: हाथ मुंह धोकर वे एक दूसरे से सपनों के बारे में पूछने लगे। पहले ने कहा,
4: आहा, मैं तो सपने में स्वर्ग पहुंच गया था। वहां पर देवता मेरी सेवा कर रहे थे।
6: अच्छा।
4: हाँ। परियां, परियां नाच रही थी। और हाँ, हाँ, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी। वाह वाह वाह वाह वाह, बड़ा

0: नौकर चाकर थे, मैं दरबार में सिंहासन पर बैठा था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: बगल में महारानी थी। लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। बड़ा अच्छा दृश्य था।
2: अब तीसरे की बारी आई। उसने तो कोई सपना देखा नहीं था। ऊपर से खीर भी चट कर गया था। पहले तो वो घबराया, फिर कुछ सोचकर बोला,
1: मेरे सपने को मत पूछो। मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत आया।
3: भूत?
1: उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा,
4: मुझे क्यों मार रहे हो भाई?
1: उसने बिगड़ कर कहा, अभी तक तुमने खीर क्यों नहीं खाई? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उठो और सारी खीर खाओ।
0: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था।
1: उसी समय उसने मेरी गर्दन पकड़ी और खीर के पास ले जाकर कहा, चलो सीधी तरह खीर खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
0: मैं क्या करता, मुझे खीर खानी पड़ी।
3: खीर खाए तू? ऐसे
2: ये सुनकर दोनों मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले,
5: तो क्या तुमने खीर खा डाली?
4: नहीं खाता तू क्या करता, अपनी जान से हाथ धोता।
6: तुम झूठ बोलते हो।
5: जब भूत मार रहा था तब तुमने हम लोगों को क्यों नहीं जगाया?
4: जगाता कैसे, तुम में से एक स्वर्ग का आनंद ले रहा था और दूसरा महाराजा बन गया था। मैं तुम्हें वहां से कैसे बुलाता? अगर बुलाता तो तुम लोग कहते कि मैं तुम्हें सपने में भी सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं जगाया।
2: ये सुनकर दोनों मूर्ख दांत पीस कर रह गए।
7: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
9: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: सांझे सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे तब तक की दीजिए हमें इजाजत।

92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे शुरू की घड़ी में 5 बजे हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में थोड़ी देर में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम धरती के गीत। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम धरती के गीत। आज के कलाकार हैं अनिल कुमार। इनके स्वर में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं झूमर।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों कहते हैं ना, नई राह पर चलने के लिए पुराने रास्तों को भूलना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए पीछे मुड़कर ये देखना भी ज़रूरी होता है कि हम कहां से चले थे। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। घड़ी के बज चुके हैं 5:15 और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम युववाणी। और आज एक बार फिर मैं हूँ आपके साथ, आपका होस्ट एंड दोस्त यानी अभिषेक। और साथियों, आज का विषय थोड़ा सा पुराना है लेकिन सवाल बिल्कुल नया। क्या आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में पुरानी सीख की कोई जगह बची है? जब हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, दुनिया हमारी स्क्रीन पर है, जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध हो जाती है, तो फिर वो दादी नानी की कहानियाँ, गुरु की सीख, लोक परंपराएं, प्रकृति के साथ जीने का जो तरीका था, योग, आयुर्वेद, हमारे साहित्य और दर्शन की बातें, क्या ये सब सिर्फ बीते ज़माने की बातें हैं या फिर पुरानी सीख की जड़ों से ही नई सोच का पेड़ तैयार किया जा सकता है? आज के अपने प्रोग्राम के सफ़र में इसी सवाल के साथ हम तलाशेंगे एक ऐसा रिश्ता यानी पुरानी सीख और नई सोच का रिश्ता, क्योंकि हमारा आज का विषय है युवा और पुरानी ज्ञान परंपरा, पुरानी सीख, नई सोच। साथियों, हम अक्सर गलती करते हैं। हम पुराना और पिछड़ा हुआ, इन दोनों शब्दों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। पुराना होना इस बात की गारंटी नहीं होती कि कोई विचार सही है, और नया होना भी इस बात की गारंटी नहीं कि कोई विचार बेहतर है। तो असल सवाल ये है कि क्या वो विचार आज भी हमारे काम का है? अगर हाँ, तो उसे संभालना चाहिए, और अगर नहीं तो उससे सीख लेकर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से शुरू होता है पुरानी सीख और नई सोच का संतुलन। दोस्तों, हमारी ज्ञान परंपरा में एक बहुत ही सुंदर विचार मिलता है, सीखते रहो। किसी एक किताब से नहीं, किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ से, हर अनुभव से। और शायद आज के युवाओं के लिए इससे बड़ा कोई सबक दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि आज हमारे पास सूचना बहुत सारी है, लेकिन समझ, वो अभी हमें विकसित करनी है, डेवलप करनी है। साथियों, हमारे पूर्वजों के पास आज के जैसे इंटरनेट नहीं था, संसाधन नहीं थे, लेकिन हमारे पास आज बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम कुछ अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं। और एक बात हमेशा सामने आती है, ज्ञान पाने और बांटने का जो माध्यम, जिस मीडियम की हम बात करते हैं उस दौर में और आज के दौर में, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन सीख अगर हमारे अंदर हो, सोचने की शक्ति, सीखने की कला हमारे अंदर हो, तो हर समय में, हर माध्यम के, हर मीडियम से हम सीख सकते हैं कुछ ना कुछ नया। और बात करें अगर गुरु शिष्य परंपरा की, तो एक समय था, एक ज़माना था जब शिष्य गुरु के साथ रहकर सीखा करते थे। और आज हम स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड करते हैं। उस समय जब हम गुरु जी के साथ रहते थे, एक पेड़ की छाया में बैठकर कितनी सारी बातें सीखते थे, वहीं पर हम स्वास्थ्य की भी बातें सीखते थे, योग की बातें करते थे। तब हमारी जो जीवन शैली होती थी, जो हमारा खान पान होता था और हमारी जो दिनचर्या होती थी, वो उसको हम प्रकृति के साथ जोड़कर देखते थे। लेकिन समय बदल गया, पर सीखने की ज़रूरत नहीं बदली। यही बात समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे इसे एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक गाँव में एक बहुत पुराना पेड़ था, इतना पुराना कि गाँव के बुजुर्ग कहते थे हमारे बचपन में भी ये पेड़ ऐसा ही था। उसकी छांव में लोग बैठते थे, रास्ते से गुजरने वाले कुछ देर रुकते थे, बच्चे वहाँ अक्सर खेला करते थे। लेकिन गाँव का एक युवा कहता था, इस पेड़ की वजह से जगह गिर रही है, इसे काट कर यहां एक आधुनिक पार्किंग बना देनी चाहिए। अब गाँव में बहस शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा पेड़ बहुत पुराना है, इसे बचाया जाना चाहिए। लेकिन वो युवा बोला, सिर्फ इसलिए कि ये पुराना है हम इसे हमेशा नहीं बचा सकते। बात सही थी। फिर गांव के एक बुजुर्ग ने उस युवा से कहा, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन पहले ये जान लो कि ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है। युवा ने पूछा, मतलब? बुजुर्ग बोले,

इस पेड़ के नीचे कभी गांव की पहली पाठशाला लगा करती थी। यहीं बैठकर तुम्हारे दादा ने पढ़ना सीखा था। इसी पेड़ के नीचे कई पीढ़ियों ने पंचायतें की हैं। गर्मी में यात्रियों ने इसकी छांव में आराम किया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इसे छूना तक मना है। अगर तुम्हारे पास कोई नई सोच है तो बताओ, इसे बचाते हुए यहाँ नई सुविधा कैसे बनाई जा सकती है? युवा साथी कुछ देर तक चुप रहा। उसने पेड़ को देखा और फिर उसने कहा, पेड़ भी रहेगा और पार्किंग भी बनेगी। आखिरकार ऐसा ही हुआ। पेड़ को बचाते हुए आसपास की जगह का बेहतर उपयोग किया गया। और इस तरह से दोस्तों, इस कहानी को अपने जीवन से हम सभी को जोड़कर देखा जाना चाहिए कि हमें अपनी परंपराओं को, पुरानी रीति रिवाजों को, पुरानी संस्कृतियों को हमेशा संजो कर रखना चाहिए, उन्हें बचाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि पुरानी परंपराएं जो हैं वो हमें जड़ देती हैं और नई सोच हमें दिशा देती है। सिर्फ जड़ें होंगी तो पेड़ बढ़ेगा नहीं, और सिर्फ शाखाएँ होंगी तो जड़ें नहीं होंगी और पेड़ फिर टिकेगा भी नहीं। ये रिश्ता है परंपरा और परिवर्तन का। आज के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती शायद ये नहीं है कि उसे जानकारी कहाँ से मिल रही है। चुनौतियाँ ये हैं कि उसे कौन सी जानकारी, कौन सी बातें, कौन सी सीख अपनानी चाहिए। और साथ ही एक सवाल ये कि किस पर सवाल करना है, क्या हमें पूछना है, क्या हमें जानना है, क्या हमें अपनाना है और किसे आगे बढ़ाना है। हमें अपनी परंपराओं को आंख बंद करके बिल्कुल नहीं स्वीकारना चाहिए और उन्हें आंख बंद करके खारिज भी नहीं करना चाहिए। हमें सवाल पूछने चाहिए, क्यों, कैसे, क्या, ये आज भी उपयोगी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि क्या इसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो यही तो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ये नई सोच को जन्म देता है और यही एक जागरूक युवा की पहचान है। साथियों, अपने प्रोग्राम में हम आपसे करेंगे और बहुत सारी बातें, लेकिन आपको सुनवाते चलते हैं अपने प्रोग्राम का ये गीत।

साथियों, जब हम बात अपनी पुरानी परंपराओं की कर रहे थे तो उन्हें जाहिर सी बात है कि आगे भी कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो साथियों, हमारे मन में कई बार सवाल ये आते हैं ना कि हमारी ज्ञान परंपराओं में युवाओं के लिए क्या है। तो दोस्तों, जवाब में हमारे साहित्य को ही देख सकते हैं। कबीर ने सवाल पूछना सिखाया, रहीम जी ने विनम्रता और व्यवहार की बात बताई, और प्रेमचंद ने समाज की वास्तविकताओं को हमारे सामने रखा। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को आत्मविश्वास और उद्देश्य की राह दिखाई। महात्मा गांधी जी ने साधारण जीवन में बड़े विचारों की शक्ति दिखाई। और हमारे वैज्ञानिकों, कलाकारों, साहित्यकारों और समाज सुधारकों ने ये साबित किया कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो जीवन को बेहतर बनाए। आज हमें इन सब को सिर्फ परीक्षा के प्रश्नों की तरह नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें पूछना है इन विचारों का आज मेरे जीवन में क्या अर्थ है। यही पढ़ने का और सीखने का नया तरीका हो सकता है। और आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज का युवा तो तकनीक के दौर का युवा है, तो क्यों ना हम तकनीक को भी अपनी ज्ञान परंपरा से जोड़ें, पुरानी लोक कथाओं को डिजिटल माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, और भारतीय भाषाओं के साहित्य को पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक भी लाया जा सकता है। पुरानी कला और शिल्प को ई कॉमर्स के जरिए नए बाजार भी मिल सकते हैं। योग और पारंपरिक जीवन पद्धतियों पर आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से चर्चा की जा सकती है, यानी परंपरा को संग्रहालय में बंद करने की अब जरूरत नहीं है, उसे नए माध्यम से, नई भाषा और नए विचार के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। यही बातें सार्थक करती हैं कि टॉप भले ही हमारा टॉपिक जो है पुरानी सीख और नई सोच का है, तो यानी कि हम हमारी जो परंपराएं हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, उनसे सीख करके आज हम नए ज़माने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें ला सकते हैं। साथियों, इन सब बातों का अर्थ ये नहीं कि आप अतीत में लौट जाएं, बल्कि आशय ये है कि अतीत से सीखिए और अपना भविष्य बनाइए। अपने बुजुर्गों से बात कीजिए, उनकी कहानियों को सुनिए, अपने गांव, शहर, मोहल्ले और परिवार की परंपराओं को जानिए, लेकिन हर चीज़ को सवालों की कसौटी पर भी परखते रहिए, क्योंकि परंपरा तब सुंदर बनती है जब उसमें समय के साथ सुधार की गुंजाइश होती है, और नई सोच तब मजबूत बनती है जब उसे अपनी जड़ों का पता होता है। तो साथियों, आज की बातचीत से अगर एक बात अपने साथ लेकर जाना चाहें तो बस इतनी, पुरानी सीख को बोझ नहीं बनाना और नई सोच को अहंकार की नज़र से बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि पुरानी सीख हमें बताती है हम कहाँ से आए हैं, और नई सोच हमें बताती है हमें कहाँ जाना है, और विवेक हमें बताता है इन दोनों के बीच रास्ता कैसे बनाना है। सो डियर लिसनर्स, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, जड़ें पुरानी हो सकती हैं लेकिन उनसे निकलने वाली नई शाखाएं हमेशा भविष्य की ओर बढ़ती हैं। तो अपनी जड़ों को जानिए, सवाल पूछिए, सीखते रहिए, खुद को अपडेट कीजिए, और जहां जरूरी हो परम

पर आपको नई रोशनी दीजिए, क्योंकि आने वाला कल सिर्फ नई चीज़ें बनाने से नहीं बनेगा, बल्कि पुरानी समझ और नई कल्पना को साथ लेकर चलने से बनेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार।

साथियों, कभी कभी इतिहास के पन्नों पर कुछ नाम ऐसे लिखे जाते हैं जिनकी पहचान सिर्फ उनके पद या उपलब्धियों से नहीं होती, बल्कि उनकी भाषा, विचारों और चरित्र से होती है। आज के प्रेरणापूर्ण सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही नाम, V.S. श्रीनिवास शास्त्री जी की। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने दिखाया कि शब्द केवल बोलने के लिए नहीं होते, शब्दों में विचार हों, सत्य और संवेदना हों, तो वो समाज की दिशा बदलने की ताकत भी रखते हैं। 22 सितंबर 1869 को तमिलनाडु के वालंगई मन में जन्मे श्रीनिवास शास्त्री का जीवन साधारण परिस्थितियों से शुरू हुआ। उन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का आधार बनाया और आगे चलकर शिक्षक, वक्ता, समाजसेवी और सार्वजनिक जीवन के एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके व्यक्तित्व की सबसे खास बात थी अध्ययन और अभिव्यक्ति का अद्भुत मेल। वो मानते थे कि बोलने से पहले सोचना चाहिए और बोलने के बाद अपने शब्दों की पूरी जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए। भारत के एक महान राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, राजनयिक और प्रखर वक्ता थे। वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय में सबसे प्रमुख उदारवादी यानी लिबरल नेताओं में से एक गिने जाते थे। शुरुआत में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन बाद में वो इससे अलग होकर 1922 में इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी भारतीय उदारवादी दल की स्थापना की। उनका मानना था कि बातचीत और संवैधानिक तरीकों से भी सुधार लाए जा सकते हैं। उन्होंने लीग ऑफ नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वो ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल के सदस्य बनने वाली शुरुआती भारतीयों में से एक थे। उन्होंने लंदन में हुई गोलमेज परिषद यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बैठकों में भी भाग लिया था। वर्ष 1927 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका में भारत सरकार का पहला एजेंट नियुक्त किया गया था। वहाँ उन्होंने और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसे देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों के अधिकारों और रंगभेद

के खिलाफ भी अपनी प्रखर आवाज़ उठाई थी। आज जब हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, जहां एक क्लिक में हमारी बातें हज़ारों लोगों तक पहुंच सकती हैं, श्रीनिवास शास्त्री जी का ये जीवन संदेश और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। शब्दों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि शब्द आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व दोनों का परिचय देते हैं। शास्त्री जी की अंग्रेजी भाषा पर असाधारण पकड़ थी। उनकी वक्तृत्व कला इतनी प्रभावशाली थी कि उन्हें सिल्वर टंग ओरेटर यानी रजत जीवा वक्ता के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन साथियों, उनकी खूबसूरत भाषा के पीछे केवल शब्दों का ज्ञान नहीं था, उसके पीछे था गहरा अध्ययन, निरंतर अभ्यास और विचारों की स्पष्टता। और आज के युवाओं के लिए भी पहली सीख है, प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन निरंतर अध्ययन और अभ्यास ही आपको निखारता है। श्रीनिवास शास्त्री जी के सार्वजनिक जीवन में भी वो सार्वजनिक जीवन में भी काफ़ी सक्रिय रहे। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में काफ़ी काम किया और भारत के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं।

0: टिकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे भाई,
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे से ही।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: साथियों, हम बात कर रहे थे श्री निवास शास्त्री जी के जीवन दर्शन के बारे में। वाकई में साथियों, उनके विचार, उनके तर्क और संवाद के माध्यम से उन्होंने दुनिया को नए ज़माने के साथ जोड़ने की बात कही थी, और यही हमें दूसरी सबसे बड़ी सीख देती है कि असहमति का मतलब, वो कहते थे कि जब हम एक दूसरे के विचारों से कई बार असहमत होते हैं, जब संवाद स्थापित करते हैं, तो एक दूसरे से वैमनस्य से लड़ाई या दुश्मनी जैसा कुछ नहीं होता है। आप किसी के विचार से बिल्कुल असहमत हो सकते हैं, लेकिन सामने वाले के सम्मान को बनाए रखते हुए अपनी बात भी लोगों तक, दुनिया के सामने या समाज के सामने रख सकते हैं। आज की तेज़ रफ्तार भरी दुनिया में जहाँ बहस कई बार संवाद को पीछे छोड़ देती है, शास्त्री जी का व्यक्तित्व हमें फिर से याद दिलाता है कि सभ्य संवाद भी एक शक्ति है। और अब ज़रा कल्पना कीजिए, एक युवा किसी मंच पर खड़ा है और उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसे डर लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे में श्रीनिवास शास्त्री जी का जीवन जैसे उससे कहता है, पढ़ो, समझो और अपनी बात को स्पष्ट करो और फिर पूरे आत्मविश्वास से बोलो, क्योंकि अच्छी अभिव्यक्ति सिर्फ अच्छी आवाज़ का नाम नहीं है, अच्छी अभिव्यक्ति अच्छे विचारों की आवाज़ है। युवा साथियों, श्रीनिवास शास्त्री जी के जीवन से हम बहुत सारी बातें अपने जीवन में उतार सकते हैं। जैसे पहली, शिक्षा को केवल डिग्री मत समझिए, शिक्षा आपके सोचने का तरीका बदलती है। दूसरा, अपनी भाषा पर काम कीजिए, आप चाहे हिंदी बोलें, अंग्रेज़ी या कोई भी भाषा, अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से रखना सीखिए। तीसरी बात ये कि संवाद कीजिए, विवाद बिल्कुल नहीं। जब हम एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करेंगे, बातचीत करेंगे, तो असहमत के बीच भी सम्मान की भावना बिल्कुल बलवती होगी। और एक बड़ी सामाजिक खूबी ये भी रही कि वो हमेशा संवादों को सरल भाषा में रखने के पक्षधर रहे हैं। और चौथी बात ये कि अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाइए, क्योंकि पद समाप्त हो सकता है, लोकप्रियता बदल सकती है, लेकिन जो नहीं बदल सकता है वो है चरित्र की छाप, जो हमेशा लंबे समय तक दिखती है। श्रीनिवास शास्त्री जी का जीवन हमें यह समझाता है कि बड़ा बनने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी एक किताब, एक विचार, एक शिक्षक, एक अच्छी आदत और अपने शब्दों के प्रति ईमानदारी, ये बातें किसी भी युवा साथी को उसके भविष्य की दिशा बदलने में मदद कर सकती हैं। तो आज जब आप एक ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, मेरे शब्दों में कितनी नॉलेज है, कितनी डेप्थ है, कितना ज्ञान है, मेरी आवाज़ में कितना आत्मविश्वास है और मेरे व्यक्तित्व में कितनी सच्चाई है, क्योंकि शायद यही सवाल आपकी अगली मंजिल की शुरुआत बन सकते हैं। V.S. श्रीनिवास शास्त्री जी सिर्फ एक प्रभावशाली वक्ता ही नहीं थे, वो हमें ये सिखाने वाले व्यक्तित्व थे कि ज्ञान को शब्द दीजिए, शब्दों को विचार दीजिए और विचारों को अपने आचरण में ज़रूर उतारिए। तो युवाओं, इस सफ़र में आज का प्रेरणा संदेश बस इतना, अपनी आवाज़ को ऊंचा करने से पहले अपने विचारों को गहरा कीजिए, क्योंकि दुनिया में असर आवाज़ की ऊंचाई से नहीं, विचारों की सच्चाई से पैदा होता है।

दोस्तों, अब बात करते हैं कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में देश दुनिया की कुछ खबरों की। साथियों, करीब 150 मिलियन यानी 15 करोड़ साल पहले धरती पर घूमने वाला 25 मीटर लंबा विशाल शाकाहारी डायनासोर अब वैज्ञानिकों को प्राचीन दुनिया के एक बड़े रहस्य का सुराग दे रहा है। वैज्ञानिकों ने स्पेन में मिले जीवाश्मों की पहचान डिप्लोडोकस के रूप में की है। ये पहली बार है जब उत्तरी अमेरिका के बाहर इस डायनासोर का पुष्ट प्रमाण मिला है। अब तक डिप्लोडोकस के सभी पुष्ट जीवाश्म उत्तरी अमेरिका में ही मिले थे। ये खोज स्पेन के तेरेल प्रांत के एल कास्टेलार इलाके में हुई है। खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को डिप्लोडोकस की पूंछ की 14 बेहद अच्छी तरह संरक्षित कशेरुकाएँ यानी वर्टब्री और कई

अन्य हड्डियां मिली हैं। साथियों, एक और ज़रूरी सूचना ये कि हम कई बार ऐसा होता है ना कि अपनी आईडी से सिम निकालते हैं या अपने दोस्तों में या किसी दूसरे को वो सिम दे देते हैं, तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ज़रा सतर्क हो जाइए, क्योंकि अपने नाम या दस्तावेज पर लिया गया सिम किसी अन्य को देना या बेचना अब बेहद भारी पड़ सकता है। दूरसंचार विभाग के अनुसार फर्जी आईडी से सिम खरीदने, बेचने या मोबाइल के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करने पर 3 साल तक की जेल व 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ये सख्त कदम छत्तीसगढ़ में सामने आए एक बड़े साइबर फ्रॉड के बाद उठाया गया है। और इस साथ ही अगर बात करें खेलों की, तो एशियाई खेल 2026 में भारतीय निशानेबाजी टीम को अभी भी स्वर्ण पदक का इंतजार है, लेकिन टीम ने सोमवार को भारत में कुल 4 पदक जीते, जिनमें 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल समेत 3 निशानेबाज सामने आए, जबकि एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारतीय फाइटर सुचिका तरियाल ने ऐतिहासिक कांस्य पदक देश के नाम किया। IPL की 5 बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर पेसर जहीर खान को नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। उन्होंने स्टीफन फ्लेमिंग की जगह ली है, जो 18 सीजन तक टीम के साथ रहे। 48 वर्षीय जहीर ने भारत के लिए 92 टेस्ट, 200 वनडे, 17 T20 खेले और 2011 विश्व कप में 21 विकेट लिए थे। वो 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ थे। आइए आपको प्रोग्राम के आखिर में सुनवाते चलते हैं एक और गीत।

दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर में अपने क्वेश्चनियर सेगमेंट की। और हमारा कल का क्वेश्चन था, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है और वर्ष 2026 अल्जाइमर दिवस की थीम क्या थी। साथियों, जवाब है वर्ल्ड अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है और वर्ष 2026 की जो थीम है, द अर्लियर यू नो द मोर यू कैन डू, अ डिमेंशिया डायग्नोसिस मैटर्स। साथियों, अल्जाइमर एक न्यूरोलॉजिकल विकार और डिमेंशिया का सबसे आम रूप है, जिसमें व्यक्ति की याददाश्त, सोचने की क्षमता और दैनिक जीवन में कार्य करने की योग्यता धीरे धीरे कम हो सकती है। और कई बार देखने में ये आया है कि युवाओं में भी ये चीज़ बहुत घर करने लगी है, तो इस चीज़ से हमें सतर्क रहना है। और बात करते हैं हमारे आज के सवाल में। साथियों, हाल ही में स्पेन में 150 मिलियन पुराने डायनासोर के जीवाश्म की खोज की गई है और इसकी पहचान, आपसे सवाल ये है कि किस डायनासोर के रूप में हुई है। आप हमें मेल कर सकते हैं अपना जवाब हमारी मेल आईडी पर, जो कि है yuvvanilld@gmail.com। इसी के साथ मुझे अभिषेक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी युवजन अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करके इस समय राष्ट्रपति राष्ट्रीय फिल्म समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: मैं एक बार फिर सभी पुरस्कृत फिल्मों से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समाज और राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर बनी फिल्मों का चयन करने के लिए मैं जूरी के सदस्यों की सराहना करती हूँ। मैं चाहूंगी कि प्रत्येक रीजनल जूरी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे आज जितने कलाकार पुरस्कृत किया गया है कलाकारों को, उनमें से बहुत सारे महिलाएं हैं, इसलिए जूरी भी महिलाएं होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने हैं करके ही समग्र मानवीय दृष्टि का निर्माण संभव होता है। देवी और स्वजनों, आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान की सराहना की। उन्होंने 2024 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता अनंत नाग को भी बधाई दी और फिल्म जगत में 5 दशकों से अधिक के उनके योगदान की सराहना की। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत के G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
3: जब G20 हुआ था भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में

0: कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी. दैट वॉज एन एग्जाम्पल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आर कंट्री कैन बी शोकेस टू द वर्ल्ड.
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता. जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है. उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही. गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया. 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है. सरकार ने कहा है कि यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR पर GST से छोटे व्यापारियों पर बोझ नहीं पड़ेगा और न ही डिजिटल भुगतान महंगे होंगे. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसी रिपोर्ट को गलत बताया है. NPCI ने कहा कि MDR केवल 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर लागू होता है. NPCI ने कहा कि 2,000 रुपये तक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर MDR शून्य है और इसलिए GST का कोई प्रभाव नहीं है. विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के जापानी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. LDP के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के महानिदेशक तारो कोनो प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं. श्री तारो कोनो पहले जापान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और डिजिटल मंत्री रह चुके हैं. प्रतिनिधिमंडल भारत जापान विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत 5 दिन के भारत दौरे पर है. जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने जापान को हराकर पदक सुनिश्चित किया, जबकि महिला टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है. सेमीफाइनल में कल भारत का सामना चीन और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा. वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है. फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया. प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, खेल मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने क्रिकेट टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है. अब आपको जानकारी देते हैं आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की. पहले आज के शेष कार्यक्रम. आज रात 10 बजे आप सुनेंगे 20वीं एशियाई खेलों की दैनिक झलकी. इसे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे. किसान वाणी ये प्रायोजित कार्यक्रम होगा. 6:50 पर लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा. 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे शैलेश कुमार शर्मा के स्वर में लोकगीत और रमेश शुक्ल के स्वर में रामायण पाठ. संस्कृत कार्यक्रम में 7:30 पर सुनिएगा डॉक्टर हरिदत्त शर्मा के स्वर में काव्य पाठ. अनिल कुमार के स्वर में गीत सुनवाएंगे 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में. सबरस कार्यक्रम होगा 8:30 पर. गजलों का लुत्फ उठाएगा कहकशा के साथ रात 9:30 पर. 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन का.

और अब एक नज़र कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल रात 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम होगा, इसे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृषि जगत कार्यक्रम होता है 6:35 पर। कल सुनवाएंगे करिश्मा सिंह से बातचीत, मचान विधि से सब्जियों की खेती के लाभ। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम 6:45 पर लेकर आएगा डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार की वार्ता, उच्च रक्तचाप कारण लक्षण और उपचार। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुनेगा 7:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर सुनेगा उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन। 12:15 पर आपको सुनाएंगे पद्मा तलवलकर का ख्याल गायन और रात 10:30 पर सुनेगा पंडित उमा शंकर मिश्र का सितार वादन।

आपके शहर का अपना खास कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज 8:45 पर सुनिएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर सुनवाएंगे बनवारी लाल शर्मा के स्वर में गजलें। वॉइस ऑफ प्रयागराज ये कार्यक्रम होगा सुबह 10:05 पर। कल सुनिएगा जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग, चुनौतियां, संभावनाएं, नैतिकता और हमारी सीमाएं। इस विषय पर प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत का दूसरा भाग। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मात्री होगा 10:30 पर। सुनिएगा कमलेश कुमार यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीत आप तक पहुंचेंगे हेलो फरमाइश के साथ दिन में 12:30 पर। 1:15 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। कल की खास प्रस्तुति होगी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ऋचा पाठक से बातचीत, क्या है ब्रेन फॉग। गृहलक्ष्मी में गृह टिप्स में सुनवाएंगे सोने और चांदी के आभूषणों की सफाई के बारे में। 5:15 पर युवजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी। कल डिजिटल फुटप्रिंट के ऊपर बात होगी, हाउ सेफ यू आर ऑन इंटरनेट। पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे देवदत्त तिवारी से नीति वचन और अभिवक्ता प्रभा शंकर भारती से बातचीत, खसरा खतौनी एक आवश्यक जानकारी।

किस्सा गोई। ये विशेष कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। इसके अंतर्गत कल सुनिएगा कृष्णचंद्र की कहानी ताई इसरी। कल आप सुनेंगे इसका पहला भाग, स्वर होंगे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर की। ये थी जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति रचना समूह स्वरों में। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिन्हें वह अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समाचारों के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। केवड़ियारय्याः एकता नगरे राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मुः इत्यनया 270 राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारैः कलाविदः समादृताः। नवमन्ताराष्ट्रिय जल सप्ताहस्य समुद्घाटनम्। जलप्रबन्धन जटिलता निरसनाय सर्वहितधारकाणां समवायि सहयोगाय उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णेन समाहूतः प्रयासः। मादकद्रव्य दुर्व्यसनोन्मूलनाय नवदिल्ल्यां तृतीय राष्ट्रिय ANTF प्रमुख सम्मेलनस्य केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन विहितं समुद्घाटनम्। तटीय आंध्रप्रदेशे ओडिशा राज्ये च अद्य अतिवृष्टिपरा संचेतना भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन प्रख्यापिता। अपि च एशियाई क्रीडासु श्रीलंका दलमपाकृत्य भारतीय महिला क्रिकेट दलेन प्रासादितं स्वर्ण पदकम्। अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धासु एकादश

0: अग्रिम पुरस्कार समारोहस्य आतिथ्यं विधास्यति।
1: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है, उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अद्य नवदिल्ल्यां अखिल भारतीय प्रबंधन संघस्य 53वें अधिवेशने प्राख्यापयत् यत् भारतस्य अग्रिम संवृद्धिः गुणवत्ता प्रतिष्ठायाम् एव संभवेत्। सा सर्व उत्पादनशालाभ्यः प्रबंधन मण्डलेभ्यश्च उच्च मानदंड धारणम् अन्वशाषत्। वित्तमंत्री सीतारामन समदीदृशत् यद् वैश्विक व्यापार श्रृंखलायां अनिश्चिततायां सत्यां 53 अधः मंदकाले अपि भारतीय अर्थव्यवस्था 8% समीपं अबाधित गत्या संवर्धते। कुआलालंपुरस्थेन भारतीय उच्चायोगेन पर्यटन वीजा पत्रेण मलेशिया देशं प्रति गच्छन्तः भारतीय नागरिकाः तत्र कार्यं न स्वीकर्तुं प्रबोधिताः। एकस्मिन् परामर्शे उच्च आयोगः अवदत् यत् 30 दिवसात्मकस्य वीजा मुक्त सौकर्यस्य उपयोगेन कार्यं प्राप्तुं मलेशिया देशं प्रति आगच्छतां भारतीय नागरिकाणां संख्या वर्धिता अस्ति। बहवः भारतीयाः नागरिकाः मिथ्या कार्य प्रतिज्ञायुक्तैः अविवेकी अभिकर्तृभिः भ्रमिताः भवन्ति, येन अतिवासः अवैध स्थितिः शोषणं विधिसम्मत कार्याचरणं च भवन्ति। उच्च आयोगः अवदत् यत् वास्तविक पर्यटकाः वैधं सत्यापनीयं च प्रलेखम् अवश्यं वहन्तु, यथा प्रत्यागमन यात्रानुपति चीटिकायाः पुष्टिः, आवासारक्षणं, आगमन दिनांकस्य दिनत्रयानन्तरं मलेशियन डिजिटल आगमन पत्रस्य ऑनलाइन प्रस्तुतीकरणं, षट्मासस्य वैधतायुत पासपोर्ट च। भारतीय वायुसेना दलेन जापान वायु आत्म रक्षा दलेन च अद्य जोधपुर वायुसेना स्थले द्वैपाक्षिक वायु अभ्यासः वीर गार्डियन 20-26 इति सम्पन्नः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन दिवसे तटीय आंध्र प्रदेशे ओडिशायां विभिन्नेषु स्थानेषु अत्यधिक वृष्टि परं पूर्वानुमानं प्रकटितम्। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां अद्य सनो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे वृष्ट्या बाधितायां पंचक्षेप चक्रीय 20-20 अंतरराष्ट्रीय क्रीडायां आदित्य जापान देशः द्वाभ्यां धावनांकाभ्यां पराजितः। एशियाई क्रीडासु भारतीय पुरुष बैडमिंटन दलेन अद्य जापान देशम आयोजिते उपांत्य पूर्वचक्रे आयोजक जापान देशम पराभूय भारताय पदकम प्रासाधि। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम पंचायत घर।

बच्चों राम राम। किसान भैया देखा हो बरखा बुन्नी के बीच में गर्मी भी बढ़ रही बाटे, कहे का मतलब उमस का टाइम भी है। तो मैं देखे में ये आवत है कि कहीं शीत गर्म हो जात है तो शरीर पर ज़्यादा प्रभाव पड़त है, और यही तरह पशु भी धन भी हैं। पशुधन भी अगर धूप में ज़्यादा देर तक रहते हैं तो उनके शरीर पर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़त है। ज़रूरत ये बात का है कि भैया छाया में उनके रखा जाए, बांधा जाए।

अपने भी अगर बाहर निकला जाए और धूप तेज है, उमस ज़्यादा है, तो सर पे कुछ पगड़ी रहे, कुछ छायाकार कुछ जरूर रहे, जाने से कि आपके स्वास्थ्य का रक्षा हो सके। स्वास्थ्य का बात आई किसान भाई, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देखा अपन भारत सरकार जौन है 23 दिसंबर 2014 के एक बहुत बढ़िया मिशन इंद्रधनुष नाम का स्वास्थ्य संबंधी अभियान चलाए रही। ई योजना का मुख्य उद्देश्य रहा किसान भाई कि 2 वर्ष तक के जौन भी बच्चा हैं या जौन भी गर्भवती महिला हैं बहनी, उनके 100% टीकाकरण कर दिया जाए। और ये मिशन का जौन मुख्य बात ये रहे कि जौन जानलेवा बीमारी हैं वो बच्चन के खातिर या उनके माता जी लोग उनके खातिर, उनके रोके के खातिर 100% टीकाकरण करवा दिया जाए। और सरकार में सफल भी भाई। अब एक बात ये आवत है कि भाई ये कार्यक्रम का नाम, ये अभियान, स्वास्थ्य अभियान का नाम मिशन इंद्रधनुष कैसे पड़ा? वो हम कहें किसान भाई एक खातिर पड़ा कि इंद्रधनुष के तरह जौन 7 रंग है इंद्रधनुष में, ये अभियान का शुरुआत भी 7 बीमारी के रोग रोधी टीका से भई रही। जैसे तपेदिक है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनस है और खसरा है। ये सबकर रोग रोधी टीका लगत हैं। इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष जौन भारत सरकार का इस स्वास्थ्य अभियान बाटे, इमें ये बात का व्यवस्था रही कि 7 जौन बीमारी हैं, जानलेवा बीमारी हैं, इनके रोकथाम के खातिर प्रतिरोधी टीकाकरण कर दिया जाए। लेकिन समय के साथे साथे ये अभियान में और भी टीका शामिल हो गए बाटे, जैसे से कि लैका गदेला, उनकर माता जी लोग कहे का मतलब कि 2 वर्ष तक छोट छोट बच्चा या उन गर्भवती महिला बहनी जो नहीं वो रोग रोधी रहें। एकर लक्ष्य जौन सबसे महत्वपूर्ण रहा है कि वो बच्चा तक पहुँचे के जौने से कि ई जाना कि जहाँ टीका नहीं लगा बाटे या जौने भी क्षेत्र में टीकाकरण नहीं पहुँचा बाटे, नहीं भवा बाटे, जौन भी क्षेत्र अधूरा बाटे, वो क्षेत्र में ई मिशन इंद्रधनुष काम आएगा बाटे। भैया हो, हम तो कहें ये बात बतकई होत रही, मुला ई जाना जाए कि आज पंचायती में कौन कौन कार्यक्रम बाटे। तो देखा आज रामायण पाठ का दिन बाटे, रमेश जी से रामायण पाठ सुना जाए। और एक मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी आप सबके दिया जाए, जोने से कि आप कार्यक्रम संबंधित प्रतिक्रिया भी दे दें। लेकिन परंपरा यह है कि आप सभी के स्वागत में गीत गौनई होत है, तो भैया हो शैलेश कुमार शर्मा का गाय गौनई है, आवा किसान भाई सभी साथे मिलके सुन लीन जाए।

देशवा में भोर भैले सजनी देशवा में नाचेला अजोर। बड़ा बढ़िया भैया लोकगीत रही शैलेश कुमार वर्मा का। किसान भाई देखा बात ये है कि समय समय पर जौन अपने देश में चूँकि एक गुलदस्ता ऐसा है जौने में तरह तरह का धर्म है, तरह तरह का भाषा है, लेकिन एक आपसी एकता ही बन के गुलदस्ता बनावत है, सिखावत हैं तमाम तरह का धर्म ग्रंथ भी कि सब एक रहें, सब मिलजुल के रहें, आपसी सौहार्द रहें, बना रहे। तो आज किसान भैया देखा रामायण पाठ के दिन बाटे और आज का रामायण पाठ है रमेश जी से। रमेश जी का रामायण पाठ अब किसान भाई सभी साथे सुन लें जाए।

जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों की स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि और शुभ गणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर दया करें। मुकहु ही बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपासु दयाल द्रवं सकल कलिमल।

ना, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरुहा श्याम तरुण अरुण बरी ज नयना, करहुँ सो ममउर धाम सदा शिर सागर शयना। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, फूण खिले हुए लाल कमल के समान जिसके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें।

मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है।

वह रज सुकृति भग पूर्णिमान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति हैं और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी हैं। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली हैं। श्री

श्री गुरु महाराज के चरण कनकों के ज्योति मणियों के प्रकाश के समान हैं, जिसके स्मरण करते हैं हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं।

उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष युक्त मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित मणि और मणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं।

जैसे सिद्धाजन नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने देखते हैं।

मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके और संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन है। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समास सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न भव संदेहों को हरने वाले हैं, फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ।

पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस है, संत चरित्र में ही विषयाशक्ति नहीं है, इसमें वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास के गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के हुए क्षेत्र को अपना तन देखकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसके जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है।

संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती है।

हाँ भैया देखा, बहुत बढ़िया आई रही जौन रामायण पाठ। अब देखा किसान भाई, अगर प्रतिक्रिया हम तो ये चाहब कि जौन कार्यक्रम हम सब दिया जाता होकर प्रतिक्रिया आप जरूर देने। नंबर नोट कर लें, 800-4926-250। फिर से बोलते हैं भैया, 800-4926-250। किसान भाई समय समय पे सब ठीक लागत है। अब चला चली के बेला है, कल फिर पंचायती में भेंट हुए तो पंचों राम राम।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम पंचायत घर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: जय हिंद।
1: सरला बहनी,
2: हाँ रियाज भैया,
1: देखो हम पंच जब खेती करी थे
2: हाँ,
1: तो वहाँ एक समस्या आवत है कीड़ा मकोड़ा की।
2: हम्म,
1: तो सबसे पहले दिमाग में यही आवत है कि लाओ कीटनाशक लाए के आवा जाए और ला के फसल पे डाल दी जाए, सब कीड़ा मकोड़ा खत्म हो जाए।
2: मतलब रियाज भैया हर समस्या का समाधान भाई दवाई ही नहीं होते कि अपने फसल पर दवाई छिड़काव कर दो और कीड़ा मकोड़ा मर जाएं।
1: हम पंचन का चाहिए कि सबसे पहले जैविक विधि के उपयोग करी, कहे से कि जब हम पंच रसायन के इस्तेमाल करी थे तो वह से न सिर्फ फसल के गुणवत्ता प्रभावित हुआ था बल्कि मित्र कीट जो फसल के उत्पादन बढ़ावे

0: मदद कर रही थी उन्हों के खात्मा हो जाते हैं।
1: और एक के साथ ही बात का हम सबका ध्यान रखना चाहिए कि अगर नहीं फायदा करे तब कहूँ रसायन का प्रयोग करे चाहिए।
0: जो अपने कृषि वैज्ञानिक लोग हैं उन्हों बतावा थी कि समन्वित नाशी जीव प्रबंधन के अगर हम पंच प्रबंध कर ली तो उसे जो है रसायन से मुक्ति मिल जाता है और अपन फसल के गुणवत्ता भी अच्छी हुआ थे और अपन माटी जोन रहा है वह अच्छी हुआ है। अगर खेती पाती करी थे तो उसे जो संबंधित खबरें रहा थे उनका भी जाना बहुत ज्यादा जरूरी
1: तो
0: है।
1: तो भैया जान ली जाए आज की खबरें।
2: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से एग्री दर्शन यूपी पोर्टल पर आवेदन कर निःशुल्क दलहन मिनी किट योजना का लाभ उठाने की अपील की है। लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में बताया गया है कि प्रदेश में चना, मटर और मसूर के 2,09,378 मिनी किट के लक्ष्य के मुकाबले 1,88,045 पैकेट की बुकिंग हो चुकी है। इस तरह दलहन मिनी किट वितरण में 90% उपलब्धि हासिल की गई है। वहीं तोरिया मिनी किट के 30,000 पैकेट के लक्ष्य के मुकाबले 23,963 पैकेट की बुकिंग हो चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 में बीमित किसानों की संख्या बढ़कर 23,54,000 हो गई है। केसीसी के सापेक्ष फसल बीमा कवरेज भी बढ़कर 84% पहुंच गया है। वहीं खरीफ 2026-27 में 85,783 करोड़ रुपए के फसली ऋण लक्ष्य के मुकाबले 31 अगस्त तक 58,103 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण किसानों को वितरित किया जा चुका है। कृषि मंत्री ने किसानों से अधिक संख्या में दलहन मिनी किट के लिए एग्री दर्शन यूपी पोर्टल पर आवेदन करने की अपील की है।
0: सरला बहनी,
1: हाँ भैया,
0: देखो हम पंच अपने खेती पाती में तिलहन का भी उत्पादन करी थे तो कहे ना आज की बातें में तिलहनी फसलों में सामयिक प्रबंधन पर एक जानकारी ले ली जाए डॉक्टर अनूप कुमार दीक्षित भैया से।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय खरीफ की तिलहनी फसलों में मुख्य रूप से मूंगफली और तिल की फसल आपके खेत में खड़ी है। इसमें सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनूप कुमार दीक्षित साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस समय तिलहनी फसलों में सामयिक प्रबंधन में क्या कुछ करें किसान भाई बहन।
4: किसान भाइयों बहनों नमस्कार। मुख्यतः हमारी मूंगफली और तिलहन की दो फसलें हैं और मूंगफली में इस समय फूल आने का और फली बनने का दोनों का समय है। इस समय मिट्टी में उचित नमी बनाए रखना अति आवश्यक है, साथ साथ में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है।
3: डॉक्टर साहब, बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं तो खरपतवारों का प्रबंधन भी इस समय करना है क्या?
4: देखिए, खरपतवारों का नियंत्रण शुरुआत के अगर हम किसी भी फसल में तो शुरुआत के 30 से 35 दिन तक अगर हम खरपतवार का नियंत्रण कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मूंगफली में इस समय फूल आने और खूंटी बनने का समय है, इस समय हमको खेत में कम से कम आवाजाही करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खरपतवार को के लिए अगर हम निराई गुड़ाई करेंगे तो उसके खूंटी बनने पे प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कम से कम हमें काम करें।
3: तिल और मूंगफली की फसल दो मुख्य तिलहनी फसलें इस समय खेत में है, तो फसल की भूख मिटाने के लिए फसल की इस अवस्था पर कोई पोषक तत्व का प्रबंधन भी करना है क्या?
4: हाँ, एक्चुअली में दोनों फसलें अपने उत्तर प्रदेश में वर्षा आधारित हैं और वर्षा आधारित होने की वजह से अगर हमको पानी की कमी है, क्योंकि पूरे पोषक तत्व हमको बुआई के टाइम ही देने होते हैं, बेसल डोज देने होते हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर हमको फसल थोड़ी पीली दिख रही है, क्योंकि मूंगफली जो है एक दलहन परिवार की फसल है तो उसमें तो नाइट्रोजन की इतनी जरूरत नहीं रहती है, मगर तिल हमारी फसल है उसमें अगर 2% यूरिया का हम घोल का छिड़काव कर दें तो हमारी उपज में आशातीत वृद्धि पाई जा सकती है।
3: यानी 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी के हिसाब से।
4: बिल्कुल।
3: आजकल बहुत सारे जल विलेय उर्वरक आ गए हैं, क्या इनका प्रयोग भी फायदेमंद होगा?
4: तो जल विलेय मतलब वाटर सॉल्युबल, तो जो भी हम अगर स्प्रे जो भी करते हैं तो वो हमारे जो पुराने जो रासायनिक खादें हैं उनकी अपेक्षाएं बहुत अच्छे रहते हैं, तो इनका हम उपयोग कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, फसल सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई हानिकारक कीट और बीमारियां लगती हैं, तो उनका प्रबंधन फसल की इस अवस्था पर कैसे हो?
4: रोग और कीट दो मुख्य रूप से हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, तो जैसे अगर हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में अगर बीमारी की बात है टिक्का रोग होता है। टिक्का रोग की रोकथाम करना बहुत जरूरी है, जिसमें पत्तियां नीचे से पीली पड़ने लगती हैं। सबसे पहली बात है हम किसी भी रोग या कीट के लिए रासायनों पे सबसे बाद में जाएं, सबसे पहले हमको जो कृषि संबंधी जो कृषिकार हैं, चाहे हम फसल चक्र को अपना करके या साफ सफाई वाली खेती करके, अब जैसे हमको

0: गर्मी में जुताई अवश्य करनी चाहिए, जिससे हमारे जो रोगों के जो अंडाणु हैं या हमारे कीटों के जो अंडे वगैरह हैं वो हमारे खत्म हो जाते हैं। मान लेते हैं अब हमने बुआई कर ही जब दी है और टिक्का रोग हमारे खेत में आ गया है, तो ऐसे में अब हमको रसायनों पे जाना पड़ेगा। पहली बात तो हमको नीम तेल, उसका 1% नीम तेल का हमको स्प्रे करना चाहिए। और दूसरा, अगर हमारे पास कार्बेंडाजिम 50% वाटर सोल्यूबल और प्लस ये मैनकोजेब 75% का, इसको जो है दोनों अलग अलग आते हैं, तो हम दोनों में से कोई एक कर लें, या तो हम कार्बेंडाजिम कर लें 50 WP, इसको हमको 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है, या मैनकोजेम 75% का जो आता है उसको हम 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें, तो हम इसको रोकथाम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जो भी हानिकारक कीट और बीमारियां हैं उनके जैविक उपाय भी तो बहुत हैं।
0: हाँ, जैविक उपाय भी हैं, जैसे बीटल का उपयोग है वो कर सकते हैं, और इसमें जैसे व्हाइट ग्रब भी एक बहुत बड़ी समस्या है
1: सफेद
0: मूंगफली,
1: ग्रब।
0: हाँ सफेद गिडार जिसको बोलते हैं वो, और दीमक, ये दोनों, दीमक वहीं पे ज्यादातर इसका दुष्प्रभाव देखा गया है जहां पे नमी कम होती है। तो ऐसी स्थिति में एक तो हम खेत में नमी बनाए रखें, दूसरा क्या है कि समय से हम खुदाई भी कर लें, क्योंकि अगर हमारा समय से अगर हमने मूंगफली खुदाई नहीं करी तो वहां पे दीमक के आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और इमिडाक्लोप्रिड ये रसायन है, इसकी हम ड्रेंचिंग कर सकते हैं, 70.8 जो SL है उसकी हम 60 से 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, तिल की बात करें तो उसमें भी कई हानिकारक कीट और बीमारियां लगती हैं।
0: हाँ, उसमें भी जैसे पत्ती और फल की सूंडी कीट है तिल में, दूसरा है जयसिड है, इनकी रोकथाम के लिए पहले मैंने बताया कि या तो हम फसल चक्र अपनाएं, और अब हमारी फसल लगी हुई है तो इसमें हम डाइमेथोएट नाम की एक दवा आती है जिसको 30% EC वाला फार्मूला ले लें, और उसको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम अप्लाई कर, 1 एकड़ के लिए हमको करीब 200 लीटर पानी में इस 400 ml दवा को घोलना पड़ेगा और उसका हम स्प्रे कर दें, तो इन कीटों से रोकथाम हो सकती है।
1: डॉक्टर साहब, कभी कभी तिल की फसल में फाइलोडी की समस्या आती है।
0: हाँ, फाइलोडी भी एक तरह का जो है विकार है, और जो हमारी फलियां होती हैं या पौधे का ऊपरी जो है गुच्छे के रूप में दिखाई पड़ने लगता है, जो हमारी उपज को सीधे तौर पे प्रभावित करता है, तो इसके लिए भी हमको इसके त्वरित निदान की आवश्यकता जरूर पड़ती है।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ खेत खाली रह गया है, खरीफ फसलें कोई नहीं बो पाए हैं किसान भाई बहन, और आगे रबी में समय से गेहूं की बुआई करनी है, तो इस बीच में भी कोई तिलहनी फसल उगा सकते हैं?
0: जितनी भी तिलहनी फसल हैं उसमें से तोरिया एक ऐसी फसल है जो ये रबी और खरीफ के बीच में एक बांध का काम करती है। तो तोरिया की कुछ वैरायटी हैं, जैसे ये हमारा अगर गेहूं अगर हमको दिसंबर में बुआई करना है तो अभी सितंबर के दूसरे पखवाड़े से लेकर के अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक तोरिया की कुछ वैरायटी, जैसे भवानी, भवानी करीब 75 से 80 दिन में पक जाती है, PT 303, PT 36, Type 9, ये हमारी करीब 90 से 95 दिन में पक जाती हैं। तो तोरिया की इन प्रजातियों का हम अगर करें तो हमारी रबी के पहले एक तिलहन की अच्छी उपज हम ले सकते हैं।
1: लेकिन जितना जल्दी से जल्दी बुआई कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल, इसीलिए बताया कि ये भी सितंबर चल रहा, तो कोशिश करें कि हम बुआई कर लें, और क्योंकि अगर हम देर करेंगे तो एक तो क्या होगा कि हमारी रबी की फसल में समय से बुआई नहीं हो पाएगी, दूसरी क्या है इनकी उपज पे भी उल्टा प्रभाव पड़ेगा। किसी भी फसल की समय से बुआई सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी उपज के लिए।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे तिलहनी फसलों में सामयिक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हाँ, हमारा मोबाइल नंबर है 9451753219, 94-51-75-32-19, 94-51-75-32-19।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का तिलहनी फसलों में सामयिक प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: किसान भाइयों, चूंकि मैंने बताया कि अभी तोरिया की फसल की बुआई करनी है, और बुआई के 15-20 दिन के अंदर बिरलीकरण कर दें और तोरिया की बुआई लाइन में ही करें, 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधी दूरी को मेंटेन करें, और उसके लिए बिरलीकरण करें अगर ज्यादा पॉपुलेशन है, और बीज शोधित करके ही डालें। आप बावेस्टीन 1 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको शोधित कर लें और उसकी समय पे बुआई कर लें।
1: डॉक्टर अनूप कुमार दीक्षित साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और तिलहनी फसलों में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ कर

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रियाज भैया।
4: हाँ सरला बहन।
3: बात बत कहे तो बहुत होत है।
4: हाँ।
3: और यू मन कहा थे कबहू कबहू ना कि जब काम कर ले हो तो गौनई जरूर सुन ले जाए।
4: बिल्कुल, गीत गौनई ऐसी चीज है कि हम पंच काम जब कहे जाई थे और गौनई सुने जाई थे ना तो आपन काम और नीके तीनस हो जाते।
3: तो अपन पंच भैया भी इंतजार करत हैं।
4: तो देखो सुना जाए शंकर यादव उनके साथी की आवाज में खेमटा गीत है, मन न भावे बलम परदेसिया।

0: रियाज भैया
1: हाँ सरला बहनी।
0: देखो, फसल तो हम सब उगावत हन, है ना। मुल्ला की अगर औषधीय फसल के उत्पादन किन जाए तो कितनी बढ़िया बात है ना। तो
1: बिल्कुल
0: आज के किसान मा औषधीय फसल उत्पादन के बारे में बता रहे हैं अशोक कुमार गुप्त भैया।
1: बिल्कुल सुना जाए, जानकारी ली जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं सीतापुर जनपद के बिसवा ब्लॉक के कमुआ गांव, जहां औषधीय पौधों की खेती से जुड़े अशोक कुमार गुप्ता भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। अशोक गुप्ता भैया नमस्कार।
3: जी डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: भैया आप औषधि फसलों की खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
3: डॉक्टर साहब इस समय हमारे पास ब्राह्मी बकोपा है, सफेद मूसली है, हल्दी है और अपराजिता जिसको ब्लू पी कहते हैं वो भी है,
2: और तुलसी भी है।
3: तुलसी हाँ, सिंथेसिस तुलसी जो कटिंग से होती है, जो 3-4 साल चलती है बहुवर्षीय।
2: तो कुल रकबा कितना है औषधि फसलों की खेती का?
3: हमारे पास 7 एकड़ है।
2: 7 एकड़
3: जी।
2: तो कुछ अपनी जमीन होगी, कुछ लीज पर लिए होंगे?
3: हमारे पिताजी की जमीन 2 एकड़ है और 5 एकड़ हम लीज पे लिए हैं।
2: तो ये औषधि फसलों की खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: डॉक्टर साहब करीब 9-10 साल हो गए हैं। आपके आकाशवाणी केंद्र से ही एक प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम हुआ था, उसी में हमारे पिताजी ने सुना था और फिर उसी से अब हम रबी फसलों की तरफ मुड़े।
2: तो जो भी औषधि फसलों की खेती आप कर रहे हैं वो प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं?
3: जी।
2: तो कितना कितना रकबा है ब्राह्मी बकोपा का, सफेद मूसली का, अपराजिता का, तुलसी का और हल्दी का?
3: इस समय हमारे पास 1 एकड़ ब्राह्मी बकोपा है और 1 एकड़ तुलसी है और करीब 1.25 एकड़ है सफेद मूसली और 1 एकड़ है हल्दी और करीब हमारे यहाँ का 2.5 एकड़ से कम वो सब अपराजिता, पामारोजा भी 1.25 एकड़ है।
2: तो इस समय औषधि फसलों की खेती में क्या कुछ कर रहे हैं आप?
3: इस समय डॉक्टर साहब ये सफेद मूसली है और ये बकोपा है, इसकी निराई चल रही है और ये आगे की तैयारी खेतों की चल रही है जो कैमोमिल और ब्लूकार लगाना है।
2: तो इसकी बुआई और रोपाई करते कब है ब्राह्मी बकोपा की, सफेद मूसली की, अपराजिता और तुलसी की?
3: ये ब्राह्मी की बुआई हमने की थी जून के लास्ट में और ये सफेद मूसली ये भी 15 जून से की थी और ये जो अपराजिता है ये मार्च में नर्सरी पड़ी थी जो ट्रांसप्लांट किया था हमने अप्रैल में और ये तुलसी है ये भी जून के लास्ट में हमने लगाई थी और हल्दी पिछले अप्रैल में लगाया था जो इस साल खो देंगे वही फरवरी और मार्च में।
2: तो फसल कैसी चल रही है?
3: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, ये हल्दी जो हमारी है इस समय करीब 6 से 7 फीट की हल्दी है प्राकृतिक रूप से हमने की है और जो ब्राह्मी बकोपा है वो भी कम से कम 1.5 फीट की हो चुकी है और सफेद मूसली भी बहुत बढ़िया है और तुलसी भी कम से कम 4-5 फीट की हो चुकी है। राजस्थान भी फूल तोड़ाई चल रही है, उसमें भी करीब कैनोपी उसकी 2-3 फीट की चारों तरफ हो चुकी है।
2: तो कब से इनकी कटाई चालू करेंगे?
3: जी ये कटाई इसकी बरसात खत्म हो जाए बस अक्टूबर में करेंगे बकोपा की।
2: और सफेद मूसली कब तक तैयार होगा?
3: सफेद मूसली डॉक्टर इस समय थोड़ा बीज के चक्कर में है, बीज थोड़ा बनाने के लिए इसको करीब 3-4 महीने एक्स्ट्रा रखना पड़ता है जमीन में क्योंकि बाहर रुक नहीं सकती, वैसे 2 नवंबर में कटाई हो जाती है लेकिन हमने बीज बनाने का काम तो ये खोदेंगे हम मार्च में।
2: और अपराजिता?
3: अपराजिता डॉक्टर साहब ये बहुवर्षीय फसल है, ये फरवरी में इस साल लगाए हैं, ये चलेगा 3-4 साल।
2: कुल मिला जुला करके आप औषधि फसलों की खेती करके खुशहाल हैं?
3: जी डॉक्टर साहब हम खुशहाल हैं इसलिए क्योंकि हमने जो गाय आधारित खेती की उसमें हम जीवामृत और घन जीवामृत और दसपर्णी अग्न्यास ब्रह्मास्त्र और बीजामृत इसका प्रयोग करके हमने करीब 9 साल से और जो कुसुम योजना के अंतर्गत हमको सोलर पंप मिला था जो कृषि

0: विज्ञान केंद्र और केवीके और आकाशवाणी से जानकारी मिली हमको। इससे लेके फिर हमने जब से किया तब से हमारा जो आज किसान लागत से परेशान है वो हमारी लागत जीरो हो गई। केवल वही निराई गुड़ाई और बीज, बीज एक बार ले लिए फिर बीज भी अगले सैकड़ों किसानों को हम दे सकते हैं, लेकिन हमको खरीदना नहीं पड़ता। इसी से इससे हम मान के चलो ये औषधि फसलें और प्राकृतिक विधि से खेती, इससे हम बहुत खुश हैं।
1: तो अलग से फसल की भूख मिटाने के लिए रासायनिक खाद नहीं देते हैं?
0: नहीं, हम इसको करीब 9 साल से हमने त्याग दिया था, कुछ नहीं डालते, बस यही जीवामृत और घन जीवामृत और ये दशमलव अग्नयास ब्रह्मास और बीजामृत, इसी से पूरा हमारा जो फसल अवशेष होते हैं उसी का आच्छादन करके फसलों का, जैसे फसल में इसी से पूरा हो जाता है प्राकृतिक से।
1: तो एकड़ पीछे कितनी लागत गिरती है? जो भी औषधि फसलें हैं उनकी अलग अलग लागत होगी, ब्राह्मी, बकोपा, सफेद मूसली, अपराजिता, तुलसी और हल्दी की, और उत्पादन कितना तक ले लेते हैं, और आपका मुनाफा एक साल में होता कितना है?
0: डॉक्टर साहब, मुनाफा का ये जैसे फल हर फसलों का अलग अलग होता है, जैसे कैमोमिल ब्लू कार्न है, इसमें करीब हमारा 1 सवा लाख रुपए हो जाता है, तो करीब 20 से 30 हजार रुपए एकड़ में लग जाते हैं, तो उसमें मान चलो 1 लाख के आसपास हमारा बच जाता है। और ब्लू कार्न भी इसी रेशियो में जाता है, 5 साढ़े 5 महीने की फसल है, और ये बकोपा भी लगभग इसी रेशियो में जाते हैं, और ये सफेद मूसली का खर्चा जो इसमें इसमें ज्यादा आता, तो इसमें अगर रेट मिल जाए तो ये 1 से 1.5 लाख के ऊपर भी निकल जाता है। इसी तरह हर चीज का, हर फसल का अलग अलग होता है।
1: तो पूरे साल में कितनी बचत हो जाती है जो 7 एकड़ औषधि फसलों की खेती है उससे?
0: हमारे डॉक्टर करीब 4-5 लाख रुपए बच जाता है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं सब बाहर, तो उसमें उनका खर्चा निकल जाता है, और बाकी 2-4 लाख रुपए इधर उधर से बच जाता है, बस इतना हमारा, हम इससे खुश हैं। बाकी किसान सबसे ज्यादा परेशान है लागत के पीछे, वो लागत हमारी लगभग जीरो है।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: डॉक्टर साहब, हमारा FPO भी है जो बिसवा अन्नदाता के नाम से है, और बाकी हमारे पास हम जिले में हमारा फार्मर मास्टर ट्रेनर का मतलब हमको ट्रेनिंग मिली थी, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ बाहर से किसान भी आते रहते हैं, तो हमको हम उन्हीं उनको इसे यही बताते हैं कि प्राकृतिक विधि से औषधि फसलें या कोई भी फसल करें जो उसमें लागत कमाए कम से कम, जो बीज अपना रखो, खाद अपनी रखो, और पानी के लिए कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप और हर चीज मतलब अपनी बनाएंगे तो उसमें खर्चा कमाएगा तो किसानों का फायदा होगा। तो यही हमारा निष्कर्ष है कि मतलब कम से कम खर्चा में ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जाए।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-53-70-79-87, 9453-70-79-87, 9453-70-79-87।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
0: डॉक्टर साहब, हम यही कहेंगे किसान साथियों से कि लागत जो है वो लागत को ध्यान में रखते हुए बीज खरीदते हैं, वो भी अपना बनाए, और खाद खरीदते हैं उसे प्राकृतिक विषय जीवामृत और घन जीवामृत बनाए, और जो आज समस्या आगे आ रही है कि पानी और खाद और ये सब समस्याएं जमीन में देखे, तो आगे पीढ़ी को जवाब देना है कि अगर इसी तरह करते रहेंगे तो आगे पीढ़ी आने वाली क्या करेगी, तो उससे यही जो प्राकृतिक विषय है खेती, उसी में किसान और सबके सबकी भलाई है, तो इसी में प्राकृतिक विषय ही खेती करें और अपना बचाएं।
1: अशोक कुमार गुप्ता भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई। आप 2 एकड़ अपनी पुश्तैनी जमीन और 5 एकड़ लीज पर लेकर के 7 एकड़ में औषधि फसलों की खेती कर रहे हैं, जिसमें ब्राह्मी, बकोपा, सफेद मूसली, अपराजिता, तुलसी, हल्दी और ब्लू कार्न की खेती कर रहे हैं, और कुल मिला जुला करके खुशहाल हैं। आज इतनी अच्छी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।

0: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: सरला बहनी,
2: हाँ भैया,
1: देखो अपन जो खेती पाती है वो मौसम पर आधारित रहता है, तो आओ जान लीन जाए कि मौसम के का मिजाज है।
2: भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से जो प्राप्त जानकारी है वो यह प्रकार से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज यानी 22 तारीख का मौसम शुष्क रहक संभावना है। इसके अलावा 23 तारीख से 28 तारीख तक संभाग में कहूँ कहूँ वर्षा गरज चमक के साथ ही बौछार पड़े संभावना है। और भैया पूर्वी उत्तर प्रदेश के अगर

0: आज यानी 22 तारीख का मौसम शुष्क रहक संभावना है। ये के अलावा 23 तारीख से 28 तारीख तक संभाग में कहूं कहूं वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है। और भैया पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां भी संभाग में कहूं कहूं वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है।
1: यूँ तो रहा मौसम के हाल। अब अपने पंचन से हम ये आग्रह करबे कि आपन कार्यक्रम किस लागत है इके बारे में सुझाव जरूर दिए। तो इके लिए कार्यक्रम के पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन कोड 226001। इके अलावा अपने पंच ईमेल के माध्यम से भी अवगत करवा सकते हैं। तो ईमेल आईडी है farmandhomeairlko@gmail.com।
0: और भैया अब घरे चले के बेरिया हो गए हैं तो
1: बिल्कुल घड़ी इशारा कर रही है कि अपन बुरिया बिस्तरा उठावा जाए और पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद, हिंद।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों और राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान की तारीखें घोषित, 23 और 16 अक्टूबर को पड़ेंगे वोट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 3,500 से अधिक अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा अगले 6 महीने में 1,00,000 युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वर्चुअली लखनऊ के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर की रखी आधारशिला, नई वेबसाइट का किया शुभारंभ। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में परखी चुनावी तैयारियां, कहा 2027 में प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी भाजपा की सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्यों की रिक्त होने वाली सीटों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर 2026 और राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा। एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 खंड स्नातक और 6 खंड शिक्षक सीटों पर चुनाव के लिए 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। 9 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 23 अक्टूबर को

0: जबकि वोटों की गणना 27 अक्टूबर को होगी। वहीं उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए सदस्यों का कार्यकाल आगामी 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन के लिए 29 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी, 6 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी, 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी और 9 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। 16 अक्टूबर को मतदान होगा। मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे से प्रारंभ होगी। निर्वाचन प्रक्रिया को 19 अक्टूबर तक पूरा कर दिया जाएगा। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 3,567 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम केवल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा से जुड़े चारों स्तंभ, सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य को एक साथ जोड़ने वाला विशेष अवसर है। यहां 3,567 लोगों का चयन कर उनके हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है।
2: ये केवल एक नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम नहीं है, 3,567 ऐसे लोगों का चयन करके जिनके हाथों में प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का एक गुरुत्वर दायित्व भी है और उस दायित्व के निर्वहन करने के लिए आज आप सब नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 साल में 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
3: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुँच को रेखांकित किया।
4: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
3: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर यूपीआई के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
5: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है यूपीआई के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे।
3: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जनभवन लखनऊ स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय में इंटरनेट के फायदे और नुकसान विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं उन्नाव के विकास खंड बांगरमऊ के उच्च प्राथमिक विद्यालय में पोस्टर निर्माण स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यालय की छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी बेहतरीन कल्पनाशीलता का प्रदर्शन किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के

0: प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने लखनऊ के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर की वर्चुअली आधारशिला भी रखी। एक रिपोर्ट।
1: दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर रहे। श्री नबीन ने सहारनपुर में पश्चिमी यूपी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया। सहारनपुर में मीडिया से बातचीत में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखकर विश्वास है कि वर्ष 2027 में प्रदेश में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी।
2: कार्यकर्ताओं का उत्साह और उनकी ऊर्जा स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि इस बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। आज हर जगह जब कार्यकर्ता के साथ जनता भी सड़कों पर नजर आई तो स्पष्ट दिखा कि किस प्रकार से हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति किस प्रकार से सभी लोग मिलकर आगे आए हैं। और मुझे लगता है कि 2027 के मिशन को हम पूरा करेंगे।
0: उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने राज्य के 6 जिलों की 12 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में कुल अनुमानित निवेश 1663.85 करोड़ रुपए है। इनमें लखनऊ में 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, वहीं गाजियाबाद की 3, हापुड़ की 2, अयोध्या, प्रयागराज और कानपुर की 1-1 परियोजना शामिल है। प्रदेश में कल फिर से बारिश का दौर शुरू हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। 25 और 26 को कई इलाकों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों और राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान की तारीखें घोषित। 23 और 16 अक्टूबर को पड़ेंगे वोट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 3,500 से अधिक अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, अगले 6 महीने में 1,00,000 युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वर्चुअली लखनऊ के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर की रखी आधारशिला, नई वेबसाइट का किया शुभारम्भ। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में परखी चुनावी तैयारियां। कहा, 2027 में प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी भाजपा की सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम, संस्कृत कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुना रहे हैं डॉक्टर हरिदत्त शर्मा का काव्य पाठ।

पमरे सुदेशा वैर प्रतिबद्धा विरोधा प्रतिद्वीपमरे सुदेशा वैर प्रतिबद्धा कलह निरता जना सर्वे कलह निरता जना सर्वे न मित्रं कमपि मन्यन्ते न मित्रं कमपि मन्यन्ते विवादा वही वितन्यन्ते इतो हीरान देशोयम् इतो हीरान देशोयम् ततश्चेज्राइलो देशः इतो हीरान देशोयम् ततश्चेज्राइलो देशः विपक्षे स्थितो ह्यमरीका मिथो मनुजा विहन्यन्ते मिथो मनुजा विहन्यन्ते जना योद्धुं प्रवर्तन्ते जना योद्धुं प्रवर्तन्ते भृशं बमवर्षणं विहितं भृशं बमवर्षणं विहितं नगर जन भवन विध्वंस भृशं बमवर्षणं विहितं नगर जन भवन विध्वंस मिसाइल शस्त्र संपातई मिसाइल शस्त्र संपातई रहो गेहा विदीर्यन्ते विवादा वै वितन्यन्ते जना योद्धुं प्रवर्तन्ते यतो जनजीवनं भर्तुं भवति बहु तैल संपूर्ति भवति बहु तैल संपूर्ति समेते तैल रस पूरा समेते तैल रस पूरा विघातैर्बहु विखण्ड्यन्ते विघातैर्बहु विखण्ड्यन्ते जना योद्धुं प्रवर्तन्ते विवादा वै वितन्यन्ते निरुद्धो होर्मुजो मार्गो निरुद्धो होर्मुजो मार्गो न लभ्यं तैल सौविध्यं सुवाहन यानमवरुद्धं सुवाहन यानमवरुद्धं न यन्त्राण्यपि प्रचाल्यन्ते विवादा वै वितन्यन्ते विवादा वै वितन्यन्ते न तैलं जलडमरुमध्ये न तैलं जलडमरुमध्ये सुमार्गोद्घाटनं नोचेत् न तैलं जलडमरुमध्ये सुमार्गोद्घाटनं नोचेत् जनानां जीवनं तैले समैस्तैलानि याच्यन्ते समैस्तैलानि याच्यन्ते विवादा वै वितन्यन्ते ऋते गैसं न दाहकता ऋते गैसं न दाहकता तु भोजन पाचनं रुद्धं ऋते गैसं न दाहकता तु भोजन पाचनं रुद्धं जनानां पङ्क्तयो दीर्घा स्थिता पूर्तिं प्रतीक्षन्ते

हीना वही कुचौर्यं यापणे वृद्धं कुचौर्यं यापणे वृद्धं कुधूर्तै धनपिशाचैरे कुधूर्तै धनपिशाचैरे सुलोका बहु प्रपीड्यन्ते विवादा वै वितान्यन्ते विवादा वै वितन्यन्ते उभौ पक्षौ तु मदमत्तौ उभौ पक्षौ तु मदमत्तौ न विरतौ युद्धतो जातौ सुभीषण बम्ब विस्फोटैर्जना धूलिषु निपात्यन्ते सुभीषण बम्ब विस्फोटैर्जना धूलिषु निपात्यन्ते जना योद्धुं प्रवर्तन्ते विवादा वै वितन्यन्ते इतो हूतिस्ततो हूतिर् इतो हूतिस्ततो हूतिर् युवेत सिंहनादा वै द्विराष्ट्राध्यक्ष हुंकारा द्विराष्ट्राध्यक्ष हुंकारा सकल दिग्भ्यो

वीक्ष्य वही हृदयानिकम्पन्ते विवादा वही वितन्यन्ते। भयंकर ड्रोन राकेटई मिसाइल बॉम्ब विस्फोटई भयंकर ड्रोन राकेटई मिसाइल बॉम्ब विस्फोटई सभ्यता ध्वंसमाप्नोति सभ्यता ध्वंसमाप्नोति। सुदेशा नाशमाप्यन्ते जना योद्धुं प्रवर्तन्ते विवादा वही वितन्यन्ते। विनष्टा यंत्रशाला वही विनष्टा यंत्रशाला वही विदग्धा रुचिर गृहशाला। हा विद्यालया ध्वस्ता चिकित्सालया पात्यन्ते हा विद्यालया ध्वस्ता चिकित्सालया पात्यन्ते जना योद्धुं प्रवर्तन्ते विवादा वही वितन्यन्ते। युयुत्सूनां मदान्धानां सकल संगारिणी नीति न जाने किं करिष्यति रे न जाने किं करिष्यति रे। प्रलय मेघा प्रसार्यन्ते जना योद्धुं प्रवर्तन्ते युयुत्सा वर्धतेऽत्यन्तं जना योद्धुं प्रवर्तन्ते विवादा वही वितन्यन्ते। पुनः रपरम गीतमेकं प्रस्तौमि निवृत्तिर्भवेत् इति शीर्षकेण। नो सुखं नैव दुःखं मनां मानसे नो सुखं

वृत्तिर्भवेत् सानुभूति समानी समेषां सदा सानुभूति समानी समेषां सदा।

लेखने या पिता वैक्षणा पाठने लेखने अक्षय कोश आप्तो निधिर्वार्जितो अक्षय कोश आप्तो निधिर्वार्जितो नैव शिष्टा स्पृहा वै धनस्यार्जने चातकानां वियुक्तेस्तु भाव्या ध्रुवम् शुक्लराका भवेत् कृष्णरात्रिर्भवेत् शुक्लराका भवेत् कृष्णरात्रिर्भवेत् मेनुवृत्तिर्भवेद्वाभवेत् पापकर्म प्रयोगैरनेकैस्त्वया यद्य राज्यं बृहस्थापितं भ्रामकं ध्वंस्यते तत्कदाचारकार्यै स्वयं भाविकालेन भूयो हितं नामकं पातयिष्यत्यवश्यं तु पापं तवा धोगति शोभवेद्वा परशोभवेत् नो सुखं नैव दुःखं मनां मानसे मेनुवृत्तिर्भवेद्वा निवृत्तिर्भवेत् दुष्पते गच्छता नो त्वया चिन्तितं मेनुयाने पराणां गति स्यान्नु किं ते स्खलिष्यन्ति मध्ये पथं रे ध्रुवं तद्व्रणस्यौषधं न त्वया शोचितम् दुर्वहो गर्वभारो भृतो रे त्वया सद्गतिर्वा भवेत् दुर्गतिर्वा भवेत्।

0: निवृत्तिर भवेत्। कर्षको नो प्रमादं करोति श्रमात्, कर्षको नो प्रमादं करोति श्रमात्, दुर्गमे दुःखकालेऽप्यकालेऽपि वा लाभहान्योर्विघातं तु सोढ्वाखरं भूरिभुङ्क्ते फलं कष्टसाध्यं सदा। अन्नदातुस्तु धैर्यं प्रणम्यं सदा, अन्नदातुस्तु धैर्यं प्रणम्यं सदा, भूरिवृष्टिर्भवेद्वाप्यवृष्टिर्भवेत्, मेनुवृत्तिर्भवेद्वा निवृत्तिर्भवेत्। तीक्ष्णतापं ललाटं तपं बिभ्रता, सूर्यवत्स्वाधिराज्यं हि विस्तारितं, लाधकत्वं हिमांशोर्न सोढं हा, ज्वालितं सर्वदा सर्वमत्याहितम्। अस्तमेष्यत्यवश्यं तु सायं रवि, ग्रीष्मकालो भवेत् शीतकालो भवेत्, मेनुवृत्तिर्भवेद्वा निवृत्तिर्भवेत्। नैव कालप्रतीक्षाकरः कस्यचित्, नैव कालप्रतीक्षाकरः कस्यचित्, तस्य चक्रातिपाते तु कः स्यादलं, यौवनं यापितं चोत्कटत्वं धृतम्, वार्धकस्वागतार्थं मनो नो कृतं। भेत्स्यते कालचक्रेण सर्वं ध्रुवं, भेत्स्यते कालचक्रेण सर्वं ध्रुवं, कोऽपि पीनो भवेद्वातिजीर्णो भवेत्, नो सुखं नो सुखं नैव दुःखं मनां मानसे, मेनुवृत्तिर्भवेद्वा निवृत्तिर्भवेत्। सानुभूति समानी समेषां सदा, भोगवृत्तिर्भवेद् योगवृत्तिर्भवेत्।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरिदत्त शर्मा का काव्य पाठ। इसके साथ ही संस्कृत कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: अपनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं अनिल कुमार। लीजिए सुनते हैं रूप कुमार राठौर का लिखा गीत अनिल कुमार के स्वर में।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको जो पहला गाना सुना रहे हैं उसकी फिल्म का नाम है कभी हाँ कभी ना। गीत लिखा है मजरू ने, संगीत दिया है जतिन ललित ने और आवाज़ है कुमार सानू की।

अगला गाना फिल्म विधाता से, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है कल्याण जी, आनंद जी ने, और आवाज़ है लता मंगेशकर की।

अगला गाना फिल्म महबूबा से। गीत लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और आवाज़ है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

अगला गाना फिल्म चमत्कार से। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है अन्नू मलिक ने और आवाज़ है कुमार सानू और अलका याग्निक की।

अगला गाना फिल्म कर्तव्य से, गीत लिखा है कफील अंजर ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ है लता मंगेशकर की।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है सबरस कार्यक्रम। इसमें पहले आप सुनेंगे कविता पौडवाल और साथियों के स्वर में बलवीर निर्दोष की रचना।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। अब प्रस्तुत होगी समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें

0: देशवासियों को विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
0: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है, आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
1: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगी रेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वही तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडू ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म भ्रमयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वही निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
3: जब G20 हुआ था, भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस्ड टू द वर्ल्ड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि

0: पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में ला रही है।
1: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जेम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
2: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जेम पोर्टल जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जेम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
3: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है। और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में, और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार अपने पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं, और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
1: जेम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जेम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर

0: कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat, honors veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saheb Phalke Award. Yami Gautam, Kartik Aryan and Mammootty received Best Actor Awards. India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces, slams Islamabad for threatening regional peace and security. Home Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India by 2029. Centre inks deals with 21 states and union territories for next phase of Uran scheme, aims to develop 100 new airports and 200 helipads across the country. Red alert issued for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. At Asian Games, Indian women's cricket team delivers country's first gold in Japan, taking the medals tally to 7. Men's badminton team and Wushu star Roshibina Devi assure country of more medals. President Draupadi Murmu today conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw

0: क्षमता होती है जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: तख्लीकी सनत में ज्यादा से ज्यादा शमूलियत और नुमाइंदगी पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने फिल्मों की ज्यूरीज और फैसला साजी के इदारों में खवातीन की ज्यादा शिरकत की वकालत की। सदर जमहूरिया ने मेहनत करने वालों के वकार के तहफ्फुज़ और कैमरे के पीछे काम करने वाले अमले के साथ मुनासिब बर्ताव की अहमियत को भी उजागर किया जो फिल्म प्रोडक्शन की असल बुनियाद हैं। बाअसर फिल्मी शख्सियात से अपनी समाजी जिम्मेदारी को तस्लीम करने पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देते हुए और नुकसानदेह अशिया के इशारात से गुरेज करते हुए उन्हें नौजवानों के लिए एक मुस्बत मिसाली किरदार के तौर पर खुद को पेश करने का मशवरा दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स अता किए जिसमें साल 2024 के लिए सिनेमा में गना कदर खिदमात के लिए फनकारों को एजाजात से नवाजा गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुजरात के एकता नगर में मुजस्म

0: वालों के वकार के तहफुज और कैमरे के पीछे काम करने वाले अमले के साथ मुनासिब बर्ताव की अहमियत को भी उजागर किया, जो फिल्म प्रोडक्शन की असल बुनियाद हैं। बाअसर फिल्मी शख्सियात से अपनी समाजी जिम्मेदारी को तस्लीम करने पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देते हुए और नुकसानदेह अशिया के इशारात से गुरेज करते हुए उन्हें नौजवानों के लिए एक मुसबत मिसाली किरदार के तौर पर खुद को पेश करने का मशवरा दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स अता किए, जिसमें साल 2024 के लिए सिनेमा में गना कदर खिदमात के लिए फनकारों को एजाजात से नवाजा गया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुजरात के एकता नगर में मुजस्मा इत्तेहाद के अजीम शान पस मंजर में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क भर के कुल 92 अवार्ड याफ्तगान को एजाजात से नवाजा। सरकर्दा अदाकार अनंत नाग को 5 दहाइयों पर मबनी भारतीय सिनेमा में उनके गैर मामूली फिल्मी सफर के लिए 2024 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। फीचर फिल्म के जुमरे में आर्टिकल 370 को बेहतरीन फीचर फिल्म के लिए स्वर्ण कमल मिला। सरकर्दा अदाकार ममूती को ब्रह्मयुगम के लिए और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया गया। यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। गैर फीचर फिल्म जुमरे में मराठी फिल्म भंगार को बेहतरीन गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में नवे इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 का इफ्तिताह किया। इस 5 रोज़ा तकरीब में आबो हवा के लिए पायदार पानी के बंदोबस्त के मौजू पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। नेदरलैंड और जर्मनी इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 में शराकतदार ममालिक के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। इसका मकसद बैनुल अक्वामी इश्तराक को फ़रोग देना और पानी के पायदार बंदोबस्त के सिलसिले में आलमी महारत के तबादले को यकीनी बनाना है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान खिताब में नायब सदर ने कहा कि पानी जिंदगी और तहजीबों की बुनियाद है और उन्होंने इसके मुनसिफाना इस्तेमाल, बचत और मौसर बंदोबस्त की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई वाहिद इदारा, शोबा या सरकार अकेले पानी से मुतालिक चैलेंजों से निपट नहीं सकता और उन्होंने इस सिलसिले में ज़्यादा इश्तराक और तालमेल पर मबनी तरीक़ेकार पर जोर दिया।
2: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from All these countries.
0: नायब सदर जमहूरिया ने मजीद इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में कसीर फरीकी और कसीर रुखी तरीक़ेकार की ज़रूरत है, ताकि तकनीकी इख्तरा, माकूल पॉलिसी, साइंसी मालूमात, मकामी तजर्बात और कम्यूनिटी की शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि आबो हवा की तब्दीली के सबब बारिश की सूरत हाल ज़्यादा गैर यकीनी हो रही है और इसकी वजह से ज़्यादा बारिश और ज़्यादा तवील अरसे तक बिल्कुल भी बारिश ना होने से निपटने के लिए तरीक़ेकार की ज़रूरत पेश आ रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज़ेर ज़मीन पानी को रिचार्ज करना, बारिश के पानी को ज़खीरा करना और मौसर आबपाशी की पानी की बचत के जामे तरीक़ेकार लाजमी तौर पर हिस्सा होने चाहिए। इस मौके पर खिताब करते हुए जल शक्ति के वज़ीर CR पाटिल ने पानी की बचत की अहमियत को उजागर किया और कहा कि हुकूमत मुल्क के हर शहरी को महफूज और माकूल पीने का पार साफ पानी फराहम करने के लिए अहद बस्ता है। उन्होंने कहा कि पानी एक मुश्तरका वसीला है, लिहाजा सबके लिए पानी की यकीनी फराहमी भी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। आकाशवाणी न्यूज़ से खसूसी बातचीत में भारत में नेदरलैंड की सफीर मारिसा गेरेराड्स ने कहा कि पानी की बचत भारत नेदरलैंड कलीदी शराकतदारी का एक अहम सुतून है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि खुद मुख्तार हमसाये के खिलाफ जारहियत के ऐसे वाकयात इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। उन्होंने अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के साथ साथ उसके अवाम की फलाह व बहबूद के लिए भारत की फौरी मदद का इरादा किया है।

0: कान नहीं है। भारत की खवातीन क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में मुसलसल दूसरी मर्तबा सोने का तमगा जीतकर अपनी बरतरी बरकरार रखी है। भारत की टीम ने आज जापान के निशीन में फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 147 रन से हराया। इन एशियाई गेम्स में यह भारत का पहला सोने का तमगा है। अभी तक भारत ने कुल 7 तमगे जीते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर खवातीन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। भारत की मर्दों की बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल्स में मेज़बान जापान की टीम को हरा दिया और इस तरह उसने एक और तमगा यकीनी बना लिया है। भारत के मुक्केबाज जादूमणि सिंह मर्दों के 55 किलोग्राम जुमरे के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में साल 2024 के लिए 72वें कौमी फिल्म अवार्ड अदा किए। सरकर्दा कन्नड़ अदाकार अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। यामी गौतम, कार्तिक आर्यन और ममूती को बेहतरीन अदाकार के अवार्ड दिए गए। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फजाई हमलों की मजम्मत की है। उसने इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरे के लिए पाकिस्तान की तनकीद की। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुनशियात के खिलाफ सख्त और फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत 2029 तक भारत से मुनशियात की गैरकानूनी तजारत को खत्म कर देगी। मरकज ने उड़ान स्कीम के अगले मरहले के लिए 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ मुआहदे किए हैं। मुल्क भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड्स तामीर करने का हदफ रखा गया है। और एशियाई गेम्स में भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने मुल्क का पहला सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम कहकशा। समाप्त फरमाइए चंद गजलों का। आज के सफर में मैं आपकी हम सफर शिप्रा श्रीवास्तव। गुलकारों में एक नाम जगजीत सिंह का नाम, जो गजल की दुनिया में एक खास जगह रखता है। और जब बात उनकी गाई गजलों की हो तो ऐसा लगता है कि दर्द भी दुआ बन गया हो। उनकी आवाज़ में जैसे जख्म पर किसी ने रूह रख दी हो। जगजीत सिंह जब गाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक टूटा हुआ दिल खुद बोल रहा है। उनकी आवाज़ में जो गज़ल हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो शायरी नहीं, एक खामोश मोहब्बत का एहतराम है। और कोई गाता है गज़ल तो लगता है कि इबादत कर रहा हो। इतना सुकून और इतना दर्द एक ही आवाज़ में, ये इनायत सिर्फ गज़ल सिंह की आवाज़ में ही है। आइए समाअत फरमाते हैं इस खूबसूरत सी गज़ल का।

ये इनायतें गज़ब की हैं तो दिल का रोग बढ़ जाता है। मिताली सिंह की आवाज़ में अब आपको सुनवा रही हैं ये गज़ल। सुनो तो समझ आता है कि दर्द को भी सुर चाहिए होता है। जगजीत सिंह ने रोग को लिखा था और मिताली सिंह ने उसी रोग को जी लिया है अपनी आवाज़ में। उनकी आवाज़ में दर्द चीखता नहीं, बस चुपचाप आँखों से बहता है। ये गज़ल नहीं, एक अधूरी मोहब्बत की आखिरी चिट्ठी है जो मिताली की आवाज़ में और भी गहरी हो जाती है। मिताली सिंह गाती नहीं है, जैसे दिल के जख्मों को प्यार से सहरा रही हूँ। इतनी नज़ाकत, इतना दर्द, इतना सुकून मिताली की आवाज़ में है। आइए आप खुद महसूस कीजिए इस गज़ल को सुनकर।

कहकशा प्रोग्राम की अगली पेशकश चित्रा सिंह की आवाज़ में, एक और रूहानी आवाज़। चित्रा सिंह की आवाज़ में जो गज़ल हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका मतलब है ये हकीकत है। ये गज़ल नहीं, एक सच्ची मोहब्बत का एतबार लगती है। जगजीत सिंह ने इस गज़ल में दर्द दिया था और चित्रा सिंह ने उसी दर्द को सुकून बना दिया। उनकी आवाज़ में न शोर है न दिखावा, बस एक गहरी हकीकत है जो सीधा दिल में उतरती है। चित्रा जी गाती ही नहीं है, जैसे कोई अपने महबूब को तहज्जुब में याद कर रहा हो। इस गज़ल में चित्रा सिंह की आवाज़

अभी आप सुन रहे थे चित्रा सिंह की आवाज़ में गजल, और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश हरी हरन की आवाज़ में मजहर इनाम का कलाम।

हरिहरन की आवाज़ में इस गज़ल के साथ ही गज़लों की महफिल अब यहीं विराम लेती है। कहकशा कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, शिप्रा श्रीवास्तव को नमस्कार। ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारा अगला प्रसारण होगा बस कुछ ही पलों में, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
1: जापान का शहर नागोया 20वें एशियन गेम्स की मेजबानी करने के अलावा दो चीजों के लिए मशहूर है। पहले सामुराई, यानी जापान के वो पारंपरिक योद्धा जिनके शौर्य, शक्ति और संघर्ष की कहानियां इतिहास में दर्ज है, और आधुनिक जमाने में नागोया की विश्व प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहां सटीकता के साथ हर नई तकनीक नई संभावनाओं का रास्ता खोल देती है। शौर्य, संघर्ष, शक्ति, सटीकता और संभावनाएं। आज मंगलवार 22 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में ये पांचों रंग दिखे। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी के मैदान में भारत ने अपनी शक्ति का बखान किया, तो वहीं आज बॉक्सिंग रिंग में भी हमारे मुक्केबाजों ने अपना शौर्य दिखाया। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और सॉफ्ट टेनिस में सफलता और संघर्ष का मिला जुला खेल रहा। स्विमिंग और शूटिंग, जहां सेकंड के कुछ हिस्से और कुछ मिलीमीटर जैसी रेजर थिन मार्जिन्स का सवाल है, वहां भारतीय खिलाड़ियों की सटीकता की परीक्षा हुई। तो एक्वेस्ट्रिन, फेंसिंग, ई स्पोर्ट्स, सेपेक टकराव और वुशु जैसे खेल जो अभी भी भारत में अपनी पहचान तलाश रहे हैं, वहां नई संभावनाओं के द्वार खुले। पूरे दिन का लेखा जोखा ले मैं दर्पंती क्या आपके समक्ष मौजूद हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत महिला क्रिकेट की, जिसने भारत को दिलाया है एशियन गेम्स 2026 में उसका पहला गोल्ड। हरमनप्रीत कौर की महिला क्रिकेट टीम से सिर्फ पोडियम फिनिश की नहीं, गोल्ड मेडल की ही उम्मीद थी। एनीथिंग लेस वुड हैव बीन एन अपसेट। लेकिन दबदबा बनाने की इस अपेक्षा के साथ उम्मीदों का वजन भी आता है, और उसके साथ आता है दबाव, और कई बार इस दबाव में अच्छे खासे खिलाड़ी बिखर जाते हैं। लेकिन आज शेफाली वर्मा और स्मृति मानधना ने कहा आज नहीं। दोनों की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। 99 रन की सलामी साझेदारी, जिसने नींव रखी एक विशाल फर्स्ट इनिंग स्कोर की। जहां शेफाली ताबड़तोड़ 48 रन बनाने के बाद आउट हो गई, तो वहीं उपकप्तान मानधना ने अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर आई ऋचा घोष, जिन्होंने 222 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 49 रन बनाए और भारत ने श्रीलंका को 217 का टारगेट दिया। श्रीलंका की पारी शुरुआत में ही लड़खड़ाने लगी। बल्ले से अपने जोहर दिखाने के बाद शेफाली ने गेंद से भी दो विकेट लेने में योगदान दिया। अंततः भारत ने 147 रन के बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीता।

0: मेंस कबड्डी के ग्रुप ए मुकाबले में इंडिया ने अपने विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखते हुए दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। डिफेंडिंग चैंपियंस ने पूरे मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखी और ग्रुप ए में अपनी स्थिति मजबूत की। इंडिया ने शुरुआत से ही अटैक और डिफेंस दोनों में दबाव बनाया। हाफ टाइम तक इंडिया 34-14 से आगे था और उसने दो बार प्रतिद्वंदी को ऑल आउट किया। दूसरे हाफ में भी अर्जुन देशवाल, देवांग, अयान, राहुल और पवन कुमार जैसे रेडर्स ने स्कोरिंग जारी रखी, जबकि जयदीप, सुमित और सुनील कुमार ने डिफेंस में इंडिया की पकड़ बनाए रखी। आखिरकार इंडिया ने दूसरे हाफ में 29 पॉइंट जोड़ते हुए मुकाबला 63-31 से अपने नाम किया। पूरे मैच में इंडिया ने 3 ऑल आउट, 17 बोनस पॉइंट और 2 सुपर टैकल पॉइंट्स हासिल किए। दक्षिण कोरिया की तरफ से कैप्टन ली जांगकुन ने सुपर 10 जरूर दर्ज किया, लेकिन इंडियन टीम की लगातार अटैकिंग और डिफेंसिव प्रेशर के सामने कोरिया वापसी नहीं कर सका। इंडिया ने इस तरह ग्रुप ए में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब इंडियन मेंस टीम का अगला मुकाबला 23 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा, जहां टीम जीत की इस लय को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगी।
1: हॉकी की भी यही कहानी है। वहाँ गोल्ड मेडल जीतना केवल शक्ति दिखाने और साख के लिए जरूरी नहीं, बल्कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ घटा आज हॉकी के मैदान पर, आइए सुनते हैं।
0: मेंस हॉकी में इंडिया ने आज अपने अटैकिंग अंदाज का शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 16-1 से करारी शिकस्त दी। इंडिया की हॉकी टीम से इसी तरह के हेवी परफॉर्मेंस की उम्मीद हमेशा रहती है और आज मैदान पर टीम ने उसी एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह जस्टिफाई किया। पूल ए में ये इंडिया की लगातार दूसरी जीत है और दो मैचेस में इंडिया अब तक 29 गोल कर चुका है। इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरे हाफ में भी अटैकिंग मोमेंटम बरकरार रहा और इंडिया ने कुल 16 गोल दागे। इस शानदार स्कोरिंग परफॉर्मेंस में जुगराज सिंह ने 4 गोल्स किए, जबकि अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने भी 3-3 गोल्स के साथ हैट्रिक्स पूरी करी। और इंडिया के डिफेंसिव स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे मुकाबले में श्रीलंका को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला। यानी इंडिया ने सिर्फ गोल्स के सामने नहीं बल्कि अपने डिफेंस में भी श्रीलंका पर लगातार दबाव बनाए रखा। श्रीलंका के लिए सुरेश रत्नायके ने 50वें मिनट में एकमात्र गोल किया, जो एशियन गेम्स में इंडिया के खिलाफ श्रीलंका का पहला गोल भी रहा। अब इंडिया का अगला पूल ए मुकाबला 24 सितंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ होगा।
1: अब चलते हैं बॉक्सिंग रिंग की तरफ, जहां आज चुनौती कड़ी थी। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय मुक्केबाजों से जो उम्मीदें हैं उनका वजन भी बढ़ गया है, लेकिन दबाव में भी दमखम दिखाते हुए इंडियन बॉक्सर्स ने अपना वर्चस्व कायम रखा। सबसे पहले महिलाओं की 51 किलोग्राम की कैटेगरी, जहां साक्षी चौधरी के सामने थी पेरिस ओलंपिक्स की मेडलिस्ट फिलीपींस की आयरा विलिगास, लेकिन साक्षी ने तो मानो प्रतिद्वंदी को मौका ही नहीं दिया। शुरुआत से ही बाउट को डोमिनेट किया और अंततः सर्वसम्मति से मुकाबला जीत प्री क्वार्टर्स में अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट वॉज जादुमणि सिंह इन द मेन्स 55 किलोग्राम कैटेगरी। ही वॉज अप अगेंस्ट नेपाल्स चंद्र बहादुर थापा एंड द सेम स्टोरी रिपीटेड। जादुमणि डोमिनेटेड द फाइट एंड इवेंचुअली वॉज हेल्ड एज द बेटर बॉक्सर ऑन ऑल 5 कार्ड्स। He won his bout by a unanimous decision and made it to the pre-quarterfinals. चलिए अब बात करते हैं नई संभावनाओं की। भारत का एक और मेडल सुनिश्चित हो चुका है वुशु में। वुशु चाइनीज मार्शल आर्ट्स कुंगफू से उत्पन्न हुआ एक खेल है और इसके सांडा इवेंट में दो फाइटर्स आमने सामने होकर एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश करते हैं। भारत की रोशबीना देवी ने इस इवेंट में 2018 में कांस्य पदक और 2023 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। 2026 में भी उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश पा कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर लिया है। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि सेमीफाइनल जीत वो सिल्वर और हो सके तो गोल्ड पर भी निशाना साधेंगी। इसी इवेंट में पुरुषों की 56 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के आर्यन ने भी उम्मीदें जगाई थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल्स में उज्बेकिस्तान के सेडुला अब्दुराशिटोव के खिलाफ उनको हार मिली। वुशु में ही एक परफॉर्मेंस इवेंट भी होता है जिसको नानकुआन कहा जाता है। उसमें आज भारत की लांगलिन टोम्बी देवी शिरकत कर रही थी। हालांकि 10 खिलाड़ियों में उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया और मेडल की रेस से बाहर हो गई।

0: फाइट स्पोर्ट्स की ही बात हो रही है तो जापान में ही उत्पन्न हुआ कराटे कैसे पीछे रह सकता है।
1: जी हाँ, कराटे में इंडिया के लिए आज का दिन मेडल के बेहद करीब पहुंचकर खत्म हुआ। सबसे पहले पुरुष कुमीते 84 किलोग्राम में चेतन भट्ट ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। चेतन ने पहले सेमीफाइनल में जॉर्डन के मोहम्मद अल जफारी का सामना किया लेकिन 0-8 से हार गए। इस रिजल्ट के बाद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल बाउट में जगह मिली। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने एक एक यूको स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। लेकिन इसके बाद फैसला सेंशू से हुआ। सेंशू उस एथलीट को मिलता है जिसने ओपोनेंट के स्कोर करने से पहले सबसे पहला अनकंटेस्टेड पॉइंट हासिल किया हो। चुंग ने पहला स्कोर किया था इसलिए टाई होने पर सेंशू के आधार पर उन्हें विनर घोषित किया गया और चेतन ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। अब महिला कुमीते 55 किलो की कैटेगरी में अलीशा चौधरी को राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया की चौक एस्त्री सानिस त्रयानी से 1-6 से हार मिली। अलीशा ने 1 यूको स्कोर किया जबकि सानिस त्रयानी ने 3 यूको और 1 इपोन के जरिए 6 पॉइंट्स हासिल किए। अलीशा का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 16 में समाप्त हुआ। इस तरह कराटे में इंडिया के दोनों एथलीट्स मेडल कंटेंशन में पहुंचे लेकिन चेतन भट्ट का बेहद करीबी 1-1 ब्रॉन्ज मेडल बाउट और सेंचू का फैसला आज के मुकाबलों का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा रहा।
0: संघर्ष और सफलता का ये मिला जुला खेल बैडमिंटन कोर्ट पर भी देखने को मिला। क्वार्टर फाइनल में जहां महिलाओं की टीम को हार मिली तो वहीं पुरुषों ने जापान की मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच अपने लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। डिटेल्स बता रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन बैडमिंटन द इंडियन वुमेन्स टीम कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर अ 1-3 लॉस टू जापान इन द क्वार्टर फाइनल्स। द फर्स्ट मैच वाज प्लेड बिटवीन पीवी सिंधु and Akane Yamaguchi of Japan, where PV Sindhu, despite having won the first game, went on to lose the next two to Akane Yamaguchi. In the next match, Unnati Huda of India lost to Tomoka Miyazaki. The third match was played between Trisa Jolly and Gayatri Gopichand of India, who beat Yuki Fukushima and Mayu Matsumoto of Japan. Yet, this victory was not enough for India to be able to defeat Japan in totality. Because the last match that was played between Tanvi Sharma of India and Nozomi Okuhara of Japan, we saw Tanvi Sharma losing to her Japanese opponent. We now move on towards the men's team event in badminton quarterfinals. The first match in this was played between Lakshya Sen of India, who beat Japan's Kodai Naraoka in a very thrilling 66-minute encounter to give India a 1-0 lead in the men's team quarterfinal tie. This victory thereby set the momentum and pace for the next shuttlers who were to represent India in the second match. Because in that match also we saw India's Chirag Shetty and Satwik Ranki Reddy up against Japan's Hoki Takuro and Kobayashi, whereby they pulled out a brilliant victory from the hands of Japan by defeating them in straight games to win the match 2-0 in favor of India.
0: It was a mixed bag overall in racket sports. In table tennis, the men's team lost to South Korea, while the women defeated Thailand and made it to the quarterfinals. However, their North Korea came in their way.
2: Let's now talk about table tennis. Indian women's table tennis team beat Thailand 3-2 in a hard-fought match at the Asian Games 2026, advancing to the quarterfinals. In a dramatic turnaround in table tennis, India's Srija Akula conceded the final three games after taking a 2-0 lead early on. In the second game, India's Yashaswini Ghorpade win against Suthasini Savitabu to keep India's hopes alive. The Achitale went down in another five-setter, losing to Jinepa Savitabut of Thailand. In the fourth game, Yashaswini Ghorpade defeated Orawan Paranang. And finally, Srija Akula won a crucial match against Suthasini, help India secure the overall victory. The final scoreline read 3-2 in favour of India.
0: टीटी और बैडमिंटन के अलावा एक और रैकेट स्पोर्ट एशियन गेम्स का हिस्सा है जहां पर भारत की पदक की उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट टेनिस की।
2: आद्या तिवारी सफर्ड 1-4 डिफीट टू थाईलैंड्स अलीशा जिलगर इन द वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी मैच। लेटर इन द डे इन इंडिया वर्स

0: Since Pakistan, Jemina took on Aryan Hussain in men's singles group D clash, where India beat Pakistan. Jemina simply was the better player against Pakistan's Aryan Hussain. The Indian took the match away from him completely, finishing the match with a scoreline of 4-2, 4-0, 4-2, 4-0, thereby completely outplaying his opponent.
1: इसके बाद रुख करते हैं फेंसिंग का।
2: फेंसिंग यानी तलवारबाजी में इंडिया के लिए दिन मिला जुला रहा, लेकिन वुमेन्स ईपी में तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 16 तक पहुंचकर सबसे लंबा सफर तय किया। चारों इंडियन फेंसर्स ने पहले अपने रिस्पेक्टिव पूल बाउट्स के जरिए नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 से आगे का मुकाबला हुआ। सबसे पहले वुमेन्स ईपी तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 32 में थाईलैंड की नाथपपात सांगनियो को 15-10 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। वहां उनका सामना हुआ साउथ कोरिया की रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सोंग सेरा से। तनिक्षा ने बड़ी चुनौती दी, लेकिन 9-15 से हार कर उनका कैंपेन समाप्त हुआ। यह भी खास है कि तनिक्षा इस साल सीनियर वुमेन्स ईपी में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीत चुकी हैं। इसी कैटेगरी में मितवा चौधरी का मुकाबला चाइना की योंग रिंगवेन से बेहद करीबी रहा। मितवा ने तीनों पीरियड्स में फाइट जारी रखी, लेकिन अंत में सिर्फ एक पॉइंट के अंतर से 14-15 से हार गई। अब अगर चले मेंस फॉइल स्पर्धा की तरफ, हिमांश सिंह और सचिन दोनों ने पूल स्टेज में 3 जीत और 2 हार के साथ राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई थी। राउंड ऑफ 32 में हिमांश ने कजाकिस्तान के गलीम नूरमूव के खिलाफ पहले पीरियड में 6-5 की बढ़त बनाई, लेकिन नूरमूव ने वापसी करते हुए मुकाबला 15-9 से जीत लिया। वहीं सचिन को कजाकिस्तान के टिमोफी ने भी 15-9 से हराया। इस तरह मेंस फॉइल में दोनों इंडियन फेंसर्स का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 32 में हुआ समाप्त।
1: जहां इन खेलों में मिला जुला रिजल्ट रहा, तो वहीं स्विमिंग और शूटिंग में पदक आते आते रह गया, और बता रहे हैं अभिनव।
3: Aryan Nehra was an action for India in the swimming competition in the men's 1500 meter freestyle final B. Aryan tried his best, strived hard, but unfortunately finished fourth and came so close in that men's competition. The Indian men's 4 into 100 meter medley relay team comprised of Utkarsh Patil, Danush Suresh, Benedict Beniston and Akash Mane. The men's team finished 7th and then qualified for the final, and there were huge expectations that they would show some outstanding performances in the pool. However, when it came to the final, the competition was fierce. It was really tough. While the Indian swimmers strived hard, they unfortunately finished last and 8th in the medley relay final. It was really tough competition for India, and it was a great experience for them, while China once again took the gold in the swimming pool.
1: फिर शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल हासिल कर लेने वाली एला वलेन वलारीवन के पास मौका था मिक्स्ड टीम में भी पार्थ माने के साथ पदक पर निशाना साधने का, पर वो चौथे पायदान पर रही।
3: द इंडियन शूटिंग पेयर ऑफ एला वलेन वलारीवन एंड पार्थ माने फिनिश फोर्थ इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल एट द एशियन गेम्स 26 in Aichi Nagoya, Japan. In the qualification round, Valarivan and Parthmane shot a strong combined score of 634.6, finishing second to qualify for the medal round. However, in the medal round, the duo scored 376.3 in the final, maintaining the fourth position from the opening series and missed out on a podium finish. And as usual, as we have seen in the Asian Games, China won the gold medal with a world record score in the event. The qualification round score of the Indian athletes was the best Asian Games record. Moving on to the men's and women's skeet competition. Talking about the men's team first, after 100 shots, the Indian men saw contrasting fortunes as the individual qualification rounds progressed. A.S. Naruka is currently in second place with a total of 96 points so far, putting himself in prime position to qualify for the individual finals. Miraj Ahmed Khan is positioned further down the order at 23rd place with a total of 91 points. While Bhavdev Singh Gill is ranked 35th following a tough run of series with a total of 86. Now when we talk about the skeet men's team finals, India stood at the end of day 2 in the 5th position with a total of 273 points. Meanwhile in the women's skeet standings, the Indian women remain in contention for the finals, led by a strong push from Raisa Dhillon. Raisa moved up significantly to 5th place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhaliwal was positioned just outside the top tier at 9th place with a total of 89 points, while Maheshwari Chauhan currently sits at 16th place with 85 points. The Indian women's team are in 3rd place with 260.

0: 26 points. A reminder that there are 125 shots in this event, and just 25 shots tomorrow will decide the team standing for both India men's and women's.
1: कुछ और खेल भी आज चर्चा का केंद्र रहे, उसके लिए चलते हैं विदुषी की तरफ।
2: आइए अन्य खेलों में सबसे पहले शुरू करते हैं सेपेक टेक रॉ में, जहां इंडिया के लिए आज का मुकाबला टफ रहा। मेंस टीम रीगू के ग्रुप बी में इंडिया को मलेशिया के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चलते हैं इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में इंडिया के प्रदर्शन के ऊपर, जहां इवेंटिंग टीम कैंपेन आज 7th पोजीशन के साथ खत्म हुआ है। टीम ड्रेसेज में इंडिया ने 112.40 पेनल्टी पॉइंट्स के साथ 7th प्लेस हासिल करा है। टीम जंपिंग में भी इंडिया का कैंपेन एलिमिनेशन के साथ समाप्त हुआ, और इस तरह टीम इवेंट में इंडिया मेडल कंटेंशन से बाहर रहा। लेकिन आशीष लिमाय का 6th प्लेस फिनिश आज इंडियन इक्वेस्ट्रियन कंटिंजेंट के लिए सबसे अहम प्रदर्शन रहा। ई स्पोर्ट्स के फुटबॉल में इंडिया का कैंपेन भी खत्म हो गया, जिनमें साहू और दानियाल शकील पटेल ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 0-0 ड्रॉ खेला, जबकि मंगोलिया के खिलाफ स्केड्यूल्ड मैच में ओपोनेंट के डीएनएस रहने से इंडिया को वॉकओवर

0: टूर्नामेंट में इंडिया मेडल कंटेंशन से बाहर रहा, लेकिन आशीष लिमाय का सिक्स प्लेस फिनिश आज इंडियन एक्वेस्ट्रियन कंटिजेंट के लिए सबसे अहम प्रदर्शन रहा। ई स्पोर्ट्स के ई फुटबॉल में इंडिया का कैंपेन भी खत्म हो गया, जिनमें साहू और दानियाल शकील पटेल ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 0-0 ड्रॉ खेला, जबकि मंगोलिया के खिलाफ स्केड्यूल्ड मैच में ओपोनेंट के डीएनएस रहने से इंडिया को वॉकओवर मिला। पॉइंट्स बराबर होने के बावजूद टाई ब्रेक में उज्बेकिस्तान आगे निकल गया और इंडिया नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गया। मेडल टैली की बात करें तो इंडिया इस समय 8th पोजीशन पर है, जहां उसके खाते में कुल 7 मेडल्स हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। मेडल टैली में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले स्थान पर है, जापान दूसरे एंड कोरिया तीसरे स्थान पर है।
1: कल एक बार फिर इसी समय हम पूरे दिन का हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। एडिटर स्वाति कपूर और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं दर्पण तिकिया।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत कर रहे हैं चंबल की कसम फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में इस गीत से।

कार्यक्रम का अगला गीत मिलन फिल्म से मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे थे मिलन फिल्म का गीत, किसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

मीटर वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम के आपको सुनवा रहे हैं ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित नारायण राव व्यास। तो आइए सुनते हैं राग हमीर में ख्याल गायन, कलाकार पंडित नारायण राव व्यास।

अभी आप सुन रहे थे राग हमीर में ख्याल गायन, कलाकार थे पंडित नारायण राव व्यास। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में लोग 100 दिनों से अधिक समय से इंटरनेट बंद होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे बैंकिंग, कारोबार, पढ़ाई और सूचना तक पहुंच प्रभावित हुई है। ग्रीस की वेबसाइट जियोपॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जून से POJK में मोबाइल डेटा और ब्रांडेड सेवाएं बंद हैं। यह स्थिति जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC के नेतृत्व में शुरू हुई विरोध प्रदर्शनों के बाद बनी। मानवाधिकार संगठनों ने संचार सेवाएं बहाल करने, स्वतंत्र पत्रकारों को वहां जाने की अनुमति देने और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने राजनीतिक मांगों का समाधान दबाव के बजाय बातचीत के जरिए करने की भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने आज महासभा में विश्व नेताओं के अपने अंतिम

0: संबोधन में परस्पर निर्भरता पर आधारित विश्व की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र के नेता लंबे समय से नेताओं से आग्रह करते रहे हैं कि वे बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग और साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया को न छोड़ें। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश उड़ीसा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर्ड बाय अपराजिता नायर। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives, and shared national aspirations."
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: स्पीकिंग एट द इवेंट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अनाउंस्ड दैट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स विल बी टेकन टू मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अक्रॉस द कंट्री। He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Mammootty, Kartik Aaryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "Such instances of aggression against a sovereign neighbour go against regional peace and security." Home Minister Amit Shah has called for a strong and decisive action against narcotics, saying drug trade poses a serious threat to the country and the world. Inaugurating the two-day National Conference of Anti-Narcotics Task Force, heads of states and union territories in New Delhi today, Mr. Shah said the government has prepared a roadmap for 2029 to protect the country's youth and make India drug-free. He said, government will collectively succeed in uprooting the drug trade from India by 2029. Prime Minister Narendra Modi today met Sri Sri Vishwa Prasanna Tirtha Swamiji of Sri Pejavara Adokshaja Matha, Udupi, along with other dignitaries in New Delhi. On the occasion of Mr. Modi unveiled the logo of the birth centenary celebrations of Padma Vibhushan Yatikula Chakravarti Sri Vishvesha Tirtha Swamiji. In a social media post, Mr. Modi said, "The life of devotion, learning and service of Sri Vishvesha Tirtha Swami continues to inspire countless people." He said, "The various initiatives taken under the run up to his birth centenary will further carry forward his noble ideals." At the Asian Games, the Indian women's cricket team delivered the country's first gold medal at the ongoing sporting spectacle in Japan. The triumph took India's medal tally to 7 at the end of day 3. The Women in Blue, reasserting its continental dominance, clinched a second successive gold medal at the sporting event by thrashing Sri Lanka by 147 runs in the final at Nishan. Prime Minister Narendra Modi congratulated the women's cricket team on the feat. The men's badminton team and